मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम। इसमें आपको हम सुनवाते हैं डॉक्टर रणधीर कुमार की वार्ता, औषधीय और सुगंधित पौधों की वैज्ञानिक खेती।
1: बिहार की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपेण कृषि आधारित है, जो संभावनाओं से भरी है। राज्य की विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी एवं विविध टिकाऊ कृषि प्रणाली के विकास की विस्तृत संभावनाएं भी हैं। बिहार में बढ़ती जनसंख्या एवं संकीर्ण होते जंगलों के कारण प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जड़ी बूटियों का अभाव होने लगा है, परंतु कृषि प्रधान प्रदेश के नाते औषधीय एवं सुगंध पादप उत्पादों के गुणवत्ता युक्त कच्चे माल की आपूर्ति हेतु प्रदेश में इसके कृषिकरण के विस्तार की अनुकूलताएँ मौजूद हैं। कलिहारी एक बहुत ही अच्छा फसल होता है, जो जिसको ग्लोरियोसा सुपरबा भी कहते हैं। इसका भी कंद और बीज दोनों का इस्तेमाल होता है। इसमें कोल्चिसिन नामक पदार्थ रसायन पाया जाता है। यह फसल 6 से 7 महीने का होता है। जून से सितंबर के बीच में इसकी बीज बोई जाती है और इसका कंद का उत्पादन 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर, या फिर आप बीज यदि उत्पादन करना चाहते हैं तो 2 से 3.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें उत्पादन मिल जाता है और प्रति हेक्टेयर लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया की आमदनी इसमें प्राप्त हो सकती है। सफ़ेद मूसली, ये क्लोरोफाइटम बोरिविलियनम बहुत ही अच्छा, ये इसमें अंगुली नुमा कंद होता है और इसमें एस्पोनियंस और नामक एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जिसका बहुत सारे जिसको ताकत के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे औषधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह फसल 7 से 8 महीने का होता है और मई जून में इसकी रोपाई कंद के द्वारा की जाती है। यदि हम इसका उत्पादन क्षमता देखें तो ताज़ा जड़ का उत्पादन 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर या सूखा जड़ जो है 6 से 8

0: क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। इसमें 1.5 से 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर तक की कमाई हो सकती है। इसबगोल बहुत ही कम दिन का प्लांटेगो वाटा जिसका नाम है फसल होता है। इसका बीज और छिलका या बीज का छिलका जो होता है इसका इस्तेमाल होता है, और यह पेट की सफाई के लिए खास करके दस्तावर होता है जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसका फसल पूरे 4 से 5 महीने का होता है और ये नवंबर दिसंबर के महीने में इसकी बुआई होती है और 10 से 15 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर में इसका बीज का उत्पादन हो जाता है। और यदि प्रति हेक्टेयर आय की दृष्टि से देखें तो इसमें 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें उत्पादन क्षमता रुपये आमदनी मिल सकते हैं। सदाबहार जिसे हम लोग खास करके डायबिटीज पेशेंट में जो जिन्हें शुगर की परेशानी है ऐसे लोगों का इस्तेमाल की पत्तियां और जड़ का इस्तेमाल होता है। इसमें अजमेसिन और सरपेरिजर पाइन आदि नामक रसायन प्राप्त मिलते हैं। ये फसल 8 से 9 महीने का होता है और जून जुलाई में विशेष कर इसे लगाने का समय होता है। यदि हम पत्ता तुड़ाई करें तो पत्ता का उत्पादन 30 से 35 क्विंटल तथा 4 से 6 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर हमें जड़ प्राप्त हो जाता है और 1 हेक्टेयर से लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया प्राप्त हो जाता है। जापानी पुदीना की खेती आजकल बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें पत्ता और तना का इस्तेमाल होता है। पत्ता और तना से तेल निकाल करके इसमें से मेंथॉल निकालते हैं और इससे ये एक बहुवर्षीय फसल है, परंतु इसका हम वार्षिक खेती करते हैं। खास करके फरवरी महीने में इसकी रोपाई करते हैं और जून जुलाई तक इसकी कटाई कर लेते हैं। ये किसान को बीच में जब गेहूँ काटने के बाद और धान रोपने से पहले का जो बीज का समय होता है इस बीच में इनकी खेती करके इसमें से बहुत अच्छा तेल प्राप्त कर सकते हैं। 150 से 200 लीटर तक प्रति हेक्टेयर हम तेल का उत्पादन कर सकते हैं जिसका कि कुल आय लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त हो सकता है। यदि हम सगंध पौधों की बात करें तो सिट्रोनेला ये बहुत ही अच्छा सुगंधित पौधा होता है और इसके पत्ते एवं तना से तेल निकाल करके जिसमें जिरेनियाल और सिट्रोनेलॉल आदि नामक रसायन प्राप्त होते हैं। तो ये बहुवर्षीय फसल है, 5 साल तक एक बार आप लगा लें तो 5 साल तक इसमें से लगातार आप इसकी कटाई करते हैं। साल भर में 2 से 3 कटाई करके अच्छा खासा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: औषधीय और सुगंधित पौधों की वैज्ञानिक खेती विषय पर आप डॉक्टर रणधीर कुमार की वार्ता सुन रहे थे। इसके साथ ही संपन्न होता है खेत खलिहान कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया

0: के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। गढ़ में प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन। स्वर सहयोग सौरभ कुमार का है।
3: चरण सिंह। भारतीय राजनीति में सादगी और नैतिकता के प्रतीक ग्रामीण भारत और किसानों के उत्थान के लिए समर्पित अस्पष्टवादी, अनुशासन प्रिय और दूरदर्शी नेता। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं और आपका अनुमान बिल्कुल सही है। राजनीति में सादगी और नैतिकता का समन्वय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह में ही समन्वित है। नेता उसे कहते हैं जिसमें नेतृत्व का गुण हो। एक होता है समर्पित नेता, जिसका अर्थ होता है सही और मजबूत नेतृत्व। नेताओं का अंत नहीं, बल्कि एक नेताओं की लंबी भीड़ है और समर्पित नेता बस गिनती के, जिसका नेतृत्व इतिहास बनता है, जिनकी दिशा एक नई क्रांति का शंखनाद होता है। इसी आधार पर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह एक समर्पित नेता थे। इनका कृतित्व भारतीय राजनीति और कृषि सुधारों में एक मील का पत्थर है। किसानों की समस्याओं को संसद और सरकार तक पहुंचाना तथा कृषि को देश की अर्थव्यवस्था का आधार मानना और उन्हें पूरे किसान वर्ग का कल्याण करना चौधरी जी के दूरगामी सोच का ही एक बड़ा प्रमाण है। दूसरे शब्दों में अगर कहें, उनका किसान प्रेम

0: उनकी सादगी, ईमानदारी एवं खासकर ग्रामीण किसानों के प्रति उनके समर्पण ही उनके नेतृत्व की पहचान है। हम और हमारा देश इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि भारत गांव का देश है। हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं, अन्न ही जीवन है और अन्न ही ऊर्जा। हमारे किसानों की अटूट मेहनत और परिश्रम से हमें यह ऊर्जा प्राप्त होती है जो हमारे जीवित रहने का आधार है। किसानों की समस्या देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। देश को मजबूत करना है तो हमें कृषि व्यवस्था और मजबूत करनी होगी और इसके लिए किसानों को सशक्त, सबल एवं मजबूत करना होगा। ये प्रखर सोच ही चौधरी जी की नेतृत्व की आत्मा थी। चौधरी चरण सिंह का मानना था, नेता का ईमानदार होना और भ्रष्टाचार मुक्त रहकर भ्रष्टाचार से लड़ना नेतृत्व की पहली सीढ़ी है। चौधरी चरण सिंह का चिंतन मुख्य रूप से किसान, गांव, विकेंद्रीकरण और गांधीवादी अर्थनीति पर केंद्रित था। वे एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जहां देश के विकास का आधार किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो। उनका मानना था कि भारत की समृद्धि का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। उन्होंने औद्योगिकीकरण के बजाय कृषि को प्राथमिकता दी ताकि ग्रामीण स्तर पर रोजगार पैदा हो और गरीबी दूर हो। वे भूमि के केंद्रीकरण के सख्त खिलाफ थे। उनका चिंतन था कि जमीन उसी की होनी चाहिए जो उस पर हल चलाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। वे सत्ता और संसाधनों के विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि वास्तविक लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब पंचायतें और ग्रामीण संस्थाएं आर्थिक और प्रशासनिक रूप से आत्मनिर्भर हों। वे महात्मा गांधी के विचारों और सादगी से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने समाजवाद के उस मॉडल का समर्थन किया जो ग्रामीण भारत की वास्तविकता से जुड़ा हो। उनका चिंतन था कि देश की आर्थिक नीतियों के केंद्र में शोषित मजदूर और किसान होने चाहिए, तभी एक समतावादी समाज की स्थापना संभव है। उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए सहज ही एक घटना की स्मृति जेहन में उभर आती है जिसका चिंतन आज के नेताओं के लिए प्रकाश स्तंभ हो सकता है। चौधरी जी उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने ही प्रशासन के कई बड़े और प्रभावशाली लोगों को अनुचित कार्यों का समर्थन करने से साफ साफ मना कर दिया था। उन्हें किसी भी प्रकार की सिफारिश या गलत लाभ देने से स्पष्ट अक्षरों में उन्होंने मना कर दिया था। एक बार उनके किसी निकट व्यक्ति ने किसी अधिकारी के स्थानांतरण या उनसे अनुचित लाभ लेने के लिए नियम के विरुद्ध उन पर दबाव डालना चाहा, मगर चौधरी जी के शब्दों में उन्हें दो टूक उत्तर मिला, शासन नियम और न्याय से चलेगा, व्यक्तिगत संबंधी से नहीं। इतना ही नहीं, वे अपने परिजनों तक को सरकारी सुविधाओं का अनुचित लाभ नहीं लेने देते थे। चरण सिंह जी सत्ता से अधिक सिद्धांतों को महत्व देते थे। उन्होंने उस दौर में देश की बागडोर संभाली थी जब देश में अस्थिरता का दौर था। उनके संपूर्ण जीवन वृत्त का अवलोकन करने के बाद मन में विचारों की आंधी सी उठ खड़ी होती है। क्या चौधरी जी के व्यक्तित्व को जनमानस का उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए, उनके विचारों पर चलना चाहिए? यह युक्तिसंगत होगा। आइए कुछ पल स्थिर मन से इन सबों पर हम मनन करते हैं।
1: ये था आज का चिंतन मनन। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कहते हैं कि जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलता है, और जब संगीत में भक्ति का भाव जुड़ जाता है तो वह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि साधना बन जाता है। भक्ति संगीत हमें प्रेम, विश्वास, समर्पण और सकारात्मकता का संदेश देता है। भक्ति संगीत भारत की सांस्कृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा है। मंदिरों की आरती हो, गुरुद्वारे का कीर्तन, मस्जिद की अजान या चर्च की प्रार्थना, हर स्वर में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव छिपा होता है। भक्ति संगीत केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक शांति का भी माध्यम है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल भक्ति संगीत सुनना तनाव को कम करता है और मन को नई ऊर्जा से भर देता है। और जब बात मातृभूमि की हो, मातृ वंदना की हो तो फिर बात ही क्या है। मातृभूमि वह पावन धरा है जहाँ हमने जन्म लिया, पहली सांस ली, चलना सीखा और अपने सपनों को आकार देना सीखा। यह केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे स्वाभिमान का आधार है। हमारी मातृभूमि हमें भाषा, सभ्यता, परंपराएं और अनगिनत महान विभूतियां दी है इन्होंने। इसके रक्षा और सम्मान के लिए असंख्य वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। उनके त्याग और बलिदान की बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं और अपनी मातृभूमि के प्रति जो श्रद्धा होती है, जो भक्ति भाव होता है, वो हमारे एक एक सांस से ये पता चलता है। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि अपने देश की एकता, अखंडता और गौरव को सदैव हम बनाए रखें। एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करें हम और कर्मों का अपने मातृभूमि की अपने कर्मों से मातृभूमि का मान बढ़ाएं। तो आइए हम समर्पित करते हैं इस गीत को अपनी मातृभूमि के नाम।

सबसे सुंदर फूल चमन का भारत जिसका नाम है और हमारे देश की मिट्टी की खुशबू चमन के हर फूल से सुगंधित है। तो बहुत ही अच्छा लगा ये मातृ वंदना सुनकर हमें, और मन भक्ति भाव से सराबोर हो चुका है। जब हम भक्ति संगीत की बात करते हैं तो भक्ति संगीत की परंपरा हमारे देश में, इस दुनिया में सदियों पुरानी है। संतों और कवियों ने अपने भजनों के माध्यम से समाज को प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया। कबीर ने दोहों के माध्यम से ईश्वर की भक्ति का सरल मार्ग बताया है, तो मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को भजनों में भिरोया है। तुलसीदास जी ने श्री राम की महिमा का गुणगान किया है, तो सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को अमर बना दिया है। इन महान संतों की रचनाएं आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी की पहले थी। कभी ये रचनाएं पुरानी हुई ही नहीं, क्योंकि हमारे नस नस में भक्ति भाव भरा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे गीत हुए, बहुत सारे ऐसे भजन हुए जिसके माध्यम से हम ईश्वर की आराधना करते हैं। बहुत सारे फिल्मों में भी कई सारे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें कि हम देवी माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और भक्ति से परिपूर्ण भक्ति भाव से सराबोर ये गीत जब ईश्वर के तक पहुंचते हैं तो निस्संदेह हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, वो देवी माँ पूर्ण अवश्य करती हैं। तो आइए हम वंदना करते हैं माँ काली की इस भजन के माध्यम से।

जब माता रानी की कृपा हम पर बरसती है तो हम निहाल उठते हैं। माता रानी से यही अनुनय विनय है, यही प्रार्थना है कि पूरी सृष्टि पर अपनी कृपा बनाए रखें।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में हमने सुना ये सुंदर भजन। सचमुच धन्य हो वो फूल और फूलों की मालाएं, जिन्हें माता रानी के चरणों में समर्पित होने का अवसर मिला। कहते हैं कि वैज्ञानिक शोधों में भी पाया गया है कि मधुर और शांत संगीत सुनने से तनाव कम होता है, मन एकाग्र होता है और सकारात्मक सोच विकसित होता है। जब भक्ति संगीत सुनते हैं हम, तो मन में आशा, विश्वास और आत्मबल बढ़ता है।

0: भक्ति संगीत केवल ईश्वर की आराधना का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को सुंदर बनाने की प्रेरणा भी है। जब भी मन अशांत हो कुछ पल भक्ति संगीत के साथ बिताएं। यकीन मानिए मन हल्का हो जाएगा और नई ऊर्जा का अनुभव होगा। आप अपने जीवन में मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में भक्ति प्रेम और संगीत का मधुर संगम बनाए रखिए। इन्हीं बातों के साथ हम आज के वंदना कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:35 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अंतर्गत संजय ब्रह्मचारी की वार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं। विषय है योग से रोगों का उपचार।
1: बीमारी इस बात का सूचक है कि कहीं हम गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। गलतियां चाहे खान पान से हो, गलत जीवन शैली से या गलत रहन सहन से हो, यही रोगों का मुख्य जन्मदाता है। हम स्वाद का भोजन चाव से लेते हैं पर स्वास्थ्य के लिए भोजन के प्रति लापरवाह हैं। बढ़ती महंगाई में अंग्रेजी दवाइयों का सेवन जहां एक रोग का निवारण करती है, साइड प्रभाव के रूप में दूसरा रोग मुंह बाए खड़ी रहती है। आज योग पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज मधुमेह, हृदय रोग, साइनस, थायराइड, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसा रोग पूरे विश्व को परेशान कर रही है। ऐसी ही अवस्था में हमारी भारतीय संस्कृति की देन है योग अभ्यास। योग के क्रियाओं में आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं बंद आते हैं। शरीर को निरोग रखने हेतु इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। आसन शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मांसपेशियों को प्रभावित करती है। योग में शरीर को एक यंत्र माना गया है जिसे नियमित अभ्यास द्वारा इस यंत्र को निरोग रखा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र समस्त ऊर्जा का भंडार है। शरीर में कई प्रकार के अप्रकट केंद्र भी हैं जो निष्क्रिय हैं, उन्हें सक्रिय करने हेतु योगाभ्यास आवश्यक है। योग का नियमित परिभाषा है स्थिरम सुखानम आसनम, यानी वह क्रिया जो आसान तरीके से किया जाए। योग के प्रारंभिक चरण में पवन मुक्तासन भाग एक महीना करना आवश्यक है। इसमें 24 अभ्यास आते हैं जो पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक का अभ्यास है। इसे गेठिया निरोधक सीरियल भी कहा जाता है। दूसरा पवन मुक्तासन भाग दो, ये थोड़ा सा कष्टप्रद है लेकिन इसको एंटी गैस्ट्रिक सीरियल के रूप में जाना जाता है। इसमें 5 अभ्यास आते हैं। चित लेटकर पैर को वृत्ताकार रूप में घुमाना, पैर को उठाते हुए साइकिल चलाना, तीसरा आता है रॉक एंड रोल एवं चौथा नौकासन आते हैं। तीसरा अभ्यास तालिका में शक्ति बन सीरियल आता है। इसमें सभी रोगों के निवारण में रामबन काम करता है। इसमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन आते हैं। इस सीरीज को पानी पिलाकर भी पेट साफ करने की क्रिया में संघ प्रक्षालन में काम आता है। उच्च अभ्यास हेतु आसन में पीछे की ओर झुकने वाला आसन जैसे शलभासन, भुजंगासन, धनुरासन, आगे की ओर झुकने वाले आसन पश्चिमोत्तासन, सर्वांगासन, हलासन आते हैं जो मेरुदंड को लचीला बनाते हुए हमें निरोग बनाती है। यौगिक संरचना का प्रमुख नाड़ी सुषुम्ना है जो मेरुदंड से होकर निकलती है। 14 प्रमुख नाड़ियों में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। यही 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। शरीर शुद्धि के बाद आता है मन की शुद्धि। इसके लिए प्राणायाम के द्वारा विभिन्न रोगों पर विजय पाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम नाड़ी शोधन, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम आते हैं। उज्जयी प्राणायाम गले का समस्त रोगों का इलाज है। टॉन्सिलाइट, थायराइड जैसे रोगों के लिए रामबाण है। नाड़ी शोधन प्राणायाम शरीर के संपूर्ण नाड़ी को शोधन कर शारीरिक औषधियों को दूर करता है एवं शरीर को हल्का करते हुए भूख को तीव्र करता है। भ्रामरी प्राणायाम सबसे आसान एवं उपयोगी प्राणायाम स्मरण शक्ति में वृद्धि, मानसिक शांति प्रदान करता है। कंठ नलिका को मजबूत बनाती है। विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति में वृद्धि के लिए 10 राउंड करना आवश्यक है। निरोग जीवन शैली अपनाने के लिए 30 से 45 मिनट तक नित्य योग अभ्यास आवश्यक है। यह साधक को अपने शरीर के क्षमता अनुसार निर्धारित करना है कि आप अपने 24 घंटे का सदुपयोग में योग के लिए कितना समय निकालते हैं। तो आइए संकल्प लें इस महापावन दिन में योगम शरणम गच्छामि।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अंतर्गत आप सुन रहे थे संजय ब्रह्मचारी की वार्ता योग से रोगों का उपचार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान पाठ श्रीकांत पारगवकर के स्वर में।
2: एपिसोड नंबर 257

विलाप करती सीता को रावण अपने रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चला। मार्ग में एक स्थान पर गिरिशृंग पर बैठे वानर समूह को देख सीता ने अपना एक वस्त्र खंड गिरा दिया। उधर मारीच वध के स्थान पर अनुज लक्ष्मण को आया देख श्री राम ने चिंता प्रकट की। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर लक्ष्मण वहां क्यों चले आए? गोदावरी तट पर आश्रम सूना पाकर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। विलाप करते वन में भटकते दोनों भाइयों की तब जटायु से भेंट होती है, जो रावण से युद्ध में परास्त होकर जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। श्री राम के दर्शनों के लिए अब तक उनके प्राण टिके हुए हैं।

आप सुन रहे थे रामचरित्र मानस गान पाठ श्रीकांत पारगवकर के स्वर में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उनका प्रसारण समय। अब से कुछ देर बाद प्रातः 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला का प्रसारण समय है प्रातः 7:00। इसमें आप जानेंगे मौसम का मिजाज, रसरंग कार्यक्रम सुनेंगे, कानून की बातें आप जानेंगे और समाचार पत्रों की सुर्खियां और आज का इतिहास। ये विषय हैं आज के मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन विक्रमशिला प्रोग्राम के। दिल्ली से समाचार आप सुन सकते हैं प्रातः 8:00। सुबह 9:06 पर आप सुनेंगे नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनते हैं, गायिका होंगी निशा कुमारी। सुबह 10:30 पर लोकगीत कार्यक्रम की कलाकार होंगी खुशबू कुमारी। दिन में 11:00 आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम फोन इन आपकी पसंद, प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। दिन में 12:00 आप सुनते हैं नारेलोक कार्यक्रम, प्रस्तुत करता होंगी श्री पार्वती के। सुर संगम कार्यक्रम का प्रसारण समय है 12:30 पर। कलाकार होंगे हरि प्रसाद चौरसिया, आप इनसे सुनेंगे इनका बांसुरी वादन। दिन में 1:00 लोकरंग की गायिका होंगी सरिता भारती। प्रादेशिक समाचार रांची से आप सुनेंगे दिन में 1:10 पर। जीवन झरना कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:30 पर, प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 2:15 पर आप सुनते हैं दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 2:30 पर आप सुनते हैं चित्रपट से कार्यक्रम और प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे अपराह्न 3:25 पर। आप सुनेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 23वीं किस्त का तारकेश्वर हुगली में जारी होने वाले प्रसारण का आप प्रसारण सुनेंगे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

युवाणी कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज संध्या 5 बजे। ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण समय है शाम 6 बजे। प्रादेशिक समाचार रांची से आप सुनेंगे संध्या 7 बजे। लोकगीत कार्यक्रम आप सुनते हैं संध्या 7:10 पर।

0: संध्या 7:52 पर सुरलहरी की गायिका होंगी कुमारी सुवर्णा घोष। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय रात्रि 8 बजे। रजनीगंधा आप सुनेंगे आज रात 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर चित्र भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, इसे हम अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे। आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण एवं उनका प्रसारण समय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः 68वें जन्म दिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारो ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारंभो भविष्यति। पश्चिम बंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80+8,18,000 रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोशेषु स्थानान्तरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य 150+500 नगरेषु, विदेशस्य च 14 नगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यन्तराले एनटीए संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थम् एकाम् आधिकारिक व्हाट्सएप वाहिनीमपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः सन्देशाः केवलं तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279802877 इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रत्यपादीत् यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबंधाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मञ्चस्य गोष्ठ्याः सत्रं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतासु सत्सु अपि भारतामेरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानम् अस्ति। तेन सविशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति तथा तथा तस्य राष्ट्रीय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्य अंतर्गतं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनायां 400+2,000 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति एएस चंद्र चंद्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्व कप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलम 1-0 अंकान्तरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोर्मध्ये तृतीया अंतिमा च एकदिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चितंबरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम में आप सबों का हम करते हैं बहुत बहुत स्वागत। आज के गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम में है बहुत कुछ खास आप सबों के लिए। हम जानेंगे मौसम का मिजाज, रेल से जुड़ी सूचनाएं भी हम सुनेंगे, समाचार पत्रों की सुर्खियां तो हैं ही, और आज जानेंगे आज के इतिहास के बारे में, और रसरंग कार्यक्रम जो इसके अंतर्गत हम आपको सुनाएंगे, इसमें आज के कलाकार होंगे शैलेश कुमार। कानून की बातें भी हम करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम मौसम से आधारित जानकारियों से। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 जून से 24 जून के दौरान ज़िले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावनाएं हैं। आंधी में हवा की जो रफ्तार होगी वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान भी है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। तो हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमें इस चिलचिलाती गर्मी से, जो ये बहुत ही पकाने वाली उबाऊ सी गर्मी है, उससे हो सकता है कुछ राहत मिलने के आसार हैं। सापेक्ष आर्द्रता की अगर हम बात करते हैं तो सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी तो रहेगी मित्रों, तो आप रहें थोड़ा सावधान, और समय समय पर आप पानी का सेवन करते रहें, समय समय पर पानी पिएं, और जितना हो सके जिसमें कि जो भी आहार लें उसमें पानी प्रचुर मात्रा में हो उसका आप ख्याल रखें, और आप जहां भी जाएं तो अपने आप को धूप से बचाने का, अपने आप को हाइड्रेट करने का साधन अपने साथ रखें। पानी का बॉटल आप अपने साथ लेना ना भूलें, और छाते भी लेके निकलिएगा मित्रों, क्योंकि हो सकता है बारिश आपका रास्ता रोके। तो पूर्वानुमान अवधि में 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है। तो ये थी मौसम से जुड़ी सूचनाएं, और हम रुख करते हैं रसरंग की ओर, और आपके सुनाते हैं हम शैलेश कुमार के स्वर में ये सूरदास रचित भजन।

आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, और अब हम रुक करते हैं आज के इतिहास की ओर। आज 20 जून है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और आज के तारीख में कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं, दिवस और जन्म दिवस शामिल हैं। आज यानी कि 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस हम मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 जून को यह दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है युद्ध, हिंसा या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर लोगों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग का संदेश देना। आज के तारीख में का जो ये तारीख है आज का, वो इतिहास के पन्नों में कुछ अनमोल पन्ने लेकर आती है। 20 जून हमें मानवता, करुणा और इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं की याद दिलाता है। आज का दिन, जैसा कि हमने आपको बताया कि विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में पूरी दुनिया मना रही है, जो हमें यह संदेश देता है कि इंसान को सम्मान और सुरक्षित जीवन का अधिकार है। तो हम इस दिन को उन सबों के लिए कुछ खास बनाने की कोशिश करें। इतिहास के इस सुनहरे पलों को याद करते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि इंसानियत और उम्मीद का संदेश जो ये दिन हमें दे रहा है, उसके बारे में हम आशा और एकता के को साथ में लेकर चलने की कोशिश करें। और आज के दिन ही कलकत्ता की घेराबंदी हुई थी। जून 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी के बीच हुआ एक ऐतिहासिक युद्ध था। नवाब ने 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी कि काल कोठरे की त्रासदी की विवादास्पद घटना घटी थी। 20 जून यानी कि आज के दिन 1837 ईस्वी को क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी बनी थी, जो कि ब्रिटिश इतिहास में उनके शासन काल के सबसे लंबे और प्रभावशाली कालों में से एक है। 1963 ईस्वी में हॉटलाइन एग्रीमेंट के तहत अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधी हॉटलाइन स्थापित करने की सहमति भी आज के दिन ही बनी थी। और आज यानी कि 20 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव, जो कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके कार्यकाल में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। तो आज का जो दिन है वो है बेहद खास, क्योंकि इतिहास ये गवाह दे रहा है कि आज का दिन हमारे लिए कितना खास है। और सबसे जो खास है आज के दिन, वो है विश्व शरणार्थी दिवस जो हम मना रहे हैं। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि उन लोगों की पीड़ा और संघर्ष को समझने का हम अवसर दें दूसरों को भी, और खुद भी उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करें जिन्हें अपनी मातृभूमि छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी। शरणार्थी केवल अपना घर ही नहीं, बल्कि अपनी यादें, रिश्ते और कई बार अपनी पहचान भी पीछे छोड़ाते हैं। फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते हैं और एक नई शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह दिन उनके साहस, धैर्य और उम्मीद को सलाम करने का दिन है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम मानवता, करुणा और सहयोग की भावना को बढ़ावा दें। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके देश या भाषा से पहले उसकी इंसानियत होती है।
आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम एक जरूरतमंद के प्रति संवेदनशील रहेंगे और ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें हम उनका जरूरतमंद लोगों को अपना योगदान दे सकें, किसी हर व्यक्ति को सम्मान दे सकें, सुरक्षा और समान अवसर प्रदान कर सकें। इंसानियत कोई सीमा नहीं होती मित्रों, दया और करुणा की दुनिया को ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आइए विश्व शरणार्थी दिवस पर उम्मीद, शांति और मानवता का संदेश फैलाएं।

0: A diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km, and running costs of under ₹1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
1: Nexa.
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत अब हम आपको ले चलते हैं कानून की बातें की ओर और आपको सुनवाते हैं नूतन कुमारी की वार्ता ग्राम न्यायालय।
5: भारत के लोग आपसी प्रेम भाव व विश्वास से अपने बीच के विवाद को सुलझाते आ रहे हैं। समस्याएं चाहे जितनी हो जैसी हो, लोगों का प्रयास आपसी भाईचारे का ही रहा है। समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गईं, लेकिन आज भी लोगों में आपस का विश्वास ही है। वही विश्वास भारत की न्याय व्यवस्था का मूल आधार है। भारत लगभग 120 करोड़ वाला देश है, जहां पर अधिकांश आबादी गांव में रहकर अपना जीवन यापन करती है। अशिक्षित, परंपरावादी, रूढ़िवादी होने के कारण इसमें आपस में विवाद होते रहते हैं। प्राचीन परंपराओं के चलते गांव के मामले आप गांव में निपट जाते हैं। गांव में पंचायत व्यवस्था थी, पंच को परमेश्वर मानकर विवादों का निपटारा हो जाता था। पंच भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अंतर नहीं रखते हुए जाति, धर्म, भाषा, भेदभाव को न्यायोचित फैसला देते थे। लेकिन गांव शहर से दूर होने के कारण वह न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे। इस कारण न्याय तक आम व्यक्ति की पहुंच सरल बनाए जाने हेतु एवं साधारण जन स्तर पर सामान्य व्यक्ति को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराए जाने हेतु भारत के विविध आयोग ने ग्राम न्यायालय की स्थापना की, जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के रूप में पारित हुआ। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद अधिसूचना द्वारा किसी जिले में माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक पंचायत या पंचायतों के समूह या ग्राम स्थापित करती है, जिसका मुख्यालय उस पंचायत में स्थित होती है। प्रत्येक न्यायालय के लिए न्याय अधिकारी के रूप में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी को नियुक्त किया जाता है। धारा 5 के अनुसार प्रत्येक ग्राम न्यायालय में 7 सदस्य होते हैं, जो जनपद पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से नाम निर्देशित किए जाते हैं, जिनमें से एक विधि का जानकार व्यक्ति होता है, जिसे न्याय मित्र कहते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के लिए

एक एक स्थान ऐसी जाति, जनजाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहता है। एक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होता है।

यदि धारा 4 के अधीन सर्वसम्मति से नाम निर्देशित नहीं करती, ग्राम पंच न्यायालय में किसी पद के रिक्त होने की दशा में 60 दिन की अवधि के भीतर किसी सदस्य का नाम निर्देशित नहीं कर पाती, तब राज्य सरकार को यह अधिकार होता है कि धारा 5(1) के प्रावधानों के अधीन हुआ नाम निर्देशित करती है। ग्राम न्यायालय के माध्यम से लंबित पड़े मुकदमे को बगैर तारीख के शीघ्र से शीघ्र निस्तारित कराए जाते हैं तथा वाद कार्यों के घर के आसपास ही न्याय मिल सकता है। निर्धन को उनके घरों के नज़दीक न्याय प्रदान करना और उस स्थान पर पहुंचकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को त्वरित, वांछनीय और सुलभ न्याय प्रदान करना है। गांव के लोग गांव में ही न्याय प्राप्त कर सके और उन्हें न्याय पाने के लिए अपने दिन भर काम धंधा छोड़कर शहर के चक्कर नहीं लगाना पड़े तथा नागरिकों को उनके घरों तक न्याय उपलब्ध हो सके। किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य निःशक्तता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए। न्याय अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के अंदर दौरा करे, ऐसे स्थान पर विचारण या कार्यवाही संचालित करे जिसे वह उस स्थान से निकट समझते हों जहां पक्षकार निवास करते हों। ग्राम न्यायालय को मुख्यालय के बाहर चलित न्यायालय लगाने की भी शक्ति प्राप्त है। ग्राम न्यायालय को सिविल और दांडिक दोनों प्रकरणों की अधिकारिता प्रदान की गई है। ग्राम न्यायालय में अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुसार दिए गए दांडिक प्रकरणों का है, दूसरी अनुसूची में दिए गए सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। ग्राम न्यायालय के विचारण की शक्ति के अंतर्गत दांडिक मामलों का विचारण करते समय ग्राम न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करती है और संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हुए मामले का निपटारा करती है। सरकार की तरफ से ग्राम न्यायालय में दांडिक मामलों का संचालन करने के लिए सहायक लोक अभियोजन अधिकारी कार्य कर सकेंगे और न्यायालय की इजाज़त से परिवादी अपना अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। ग्राम न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पक्षकार को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराती है तथा निर्णय की निःशुल्क प्रति दोनों पक्षकारों को दी जाती है। निर्णय विचारण समाप्ति के 15 दिन के अंदर सुनाया जाता है। ग्राम न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कठोरता से लागू नहीं की जाएगी। साक्षियों के साक्ष्य विस्तार से न कर संक्षेप में लिपिबद्ध की जाती है। औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य को शपथ पत्र पर प्रकट किए जाने की अनुमति दी जाती है। ग्राम न्यायालय द्वारा प्रत्येक सिविल विवादों में विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। 100 रुपये कोर्ट फीस के साथ दावा ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम न्यायालय के निर्णय, ग्राम न्यायालय सिविल वाद का निराकरण 6 माह की अवधि के अंदर किया जाता है और तर्क सुनने के ठीक 15 दिन के अंदर निर्णय पारित किया जाता है। निर्णय की प्रतिलिपि 3 दिन के अंदर निःशुल्क दी जाती है। ग्राम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री का निष्पादन सिविल प्रक्रिया के तहत होता है, लेकिन इसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। ग्राम न्यायालय प्रथम 2 अवसर पर प्रयास करेगी कि प्रत्येक वाद या कार्यवाही समझौता से निपटाई जाए। पक्षकारों के बीच समझौता कराए जाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए सुलहदारों की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से की जाती है। ग्राम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी भाषा से भिन्न राज्य भाषाओं में से एक राजभाषा होगी। अगर व्यक्ति ग्राम न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो ग्राम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील

0: राम न्यायालय के किसी भी निर्णय दंडाज्ञा या आदेश के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय में 30 दिन के अंदर कर सकता है। अपील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगी। सिविल मामलों में यदि कोई आदेश पक्षकारों की सहमति से पारित किया गया तो विवादित विषय वस्तु का मूल्य 1,000 रुपये से कम है तो वहां अपील नहीं होगी। यदि विवादित वस्तु का मूल्य 5,000 रुपये से कम है तो विधि के प्रश्न पर अपील होगी। ग्राम न्यायालय पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेगी। अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए राजस्व अधिकारी सरकारी सेवक की सहायता प्राप्त कर सकती है। न्यायाधिकारी और कर्मचारी को लोक सेवक समझा जाएगा। प्रत्येक 6 माह में एक बार ग्राम न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण करेंगे। इस प्रकार न्याय प्रणाली को मजबूत करने और जन स्तर तक न्याय पहुंचाने के लिए तथा समाज के व्यक्तियों को त्वरित और सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके, इसके लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई।
1: कानून की बातें, इसके अंतर्गत आप सुन रहे थे नूतन कुमारी की वार्ता ग्राम न्यायालय। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला को अब हम बढ़ाते हैं थोड़ा और आगे और जानते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। समाचार पत्रों की सुर्खियां जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ विशेष खबर जो हम देख पा रहे हैं, दैनिक भास्कर के पत्र की कुछ सुर्खी इस प्रकार से है। इजरायली हमले में लेबनान में 18 की मौत, 66,000 एकड़ में बसेगी पाटलिपुत्र टाउनशिप, शहर से बाहर शिफ्ट होंगी कोचिंग संस्थाएं, पाटलिपुत्र एजुकेशन हब बनेगा। सीईटी बीएड का रिजल्ट जारी हो चुका है। वैशाली के हिमांशु और कटिहार के रवि रहे स्टेट टॉपर। अमेरिका की पूर्व खुफिया प्रमुख तुलसी गवार्ड ने यह बताया कि शीर्ष अमेरिकी वैज्ञानिक ने वुहान लैब को फंडिंग दी जिससे कोविड फैला। जिले में जमीन की रजिस्ट्री होगी महंगी, MVR में वृद्धि की गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई है जिसमें बेगूसराय भागलपुर के गिरोह के बीच कनेक्शन की बात है। PMVBIRY योजना से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। भागलपुर में 32 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। इस योजना के अंतर्गत टाउन हॉल भागलपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ था। गेस्ट फैकल्टी बहाली का विज्ञापन रद्द हो चुका है, जो कि बहाली ये आई थी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से। सर्विस रिन्यूअल प्रक्रिया भी बंद हो चुकी है। और नीट यूजी की परीक्षा 15 केंद्रों पर होगी और इस परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई है और परीक्षा में गड़बड़ी की अगर पाई गई तो होगी सख्त कार्रवाई। केंद्रों की तैयारी जांचने पहुंचे DM और SSP। छुट्टियों के बाद स्कूलों में बच्चों का किया जाएगा स्वागत। और ये हम जो अगले पृष्ठ पर देख पा रहे हैं कि सैंडीज कंपाउंड में कल मनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सुबह 6 बजे से आयोजन, योग प्राणायाम और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करेंगे योग गुरु धीरज। और ये महिला U19 ट्रॉफी में टीम बी ने टीम डी को 82 रन से हराया, जो कि ये जो मैच खेला जा रहा था वो हमारे स्थानीय सैंडिस कंपाउंड में खेला गया था। और अब हम आगे समाचार पत्रों की ओर बढ़ रहे हैं और देख पा रहे हैं कि ये जो आपके लिए खबर

आई है कि शिक्षकों को ट्रांसफर की नियमावली 24 को जारी होगी, 30 तक स्कूलों में तैनाती की जाएगी। श्रावणी मेला से जुड़ी खबर भी हम देख पा रहे हैं। गांवरिया पथ पर हर 2 किलोमीटर पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं अपने अगले पृष्ठ की, तो इसमें जो सामने हमारे पास ये खबर है कि नेपाल में बारिश से उफनाई महानंदा और मेची, निर्माणाधीन पुल का सामान बह चुका है इसमें। और ये खबर है फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी कि मैक्सिको राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। बैडमिंटन में इस साल के पहले सेमीफाइनल में पहुंची अश्मिता। भारत के खिलाफ सांत्वना जीत की तलाश में अफगानिस्तान। और ये जो हम अगला खबर आपको दे रहे हैं वो है खेल जगत से ही जुड़ी हुई कि T20 बांग्लादेश में पहली बार सीरीज जीता ऑस्ट्रेलिया। और अब हम एक एक करके पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पृष्ठ पर, और उस पर जो खबर आई है वो है 42 दिन में 16 और जलाशय गंभीर श्रेणी में, गोवा मुंबई में 1 माह का ही स्टॉक बचा है। तो आज बहुत सारी खबरें हैं तरह तरह की, जिससे आप बहुत सारी जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो ये थी आज के समाचार पत्रों की सुर्खियाँ, और अब हम लुत्फ उठाते हैं एक और भजन का।

0: आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: A diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth silent drives on every road with ADAS level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
2: Nexa.
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
7: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
8: बन गया बजट?
7: हाँ,
8: 5,000 बच गए।
9: तो नई साड़ी ले ले।
8: ना, पिछले महीने तो ली थी।
9: एक और
8: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
9: बढ़िया,
8: जाओ भाई।
10: आरबीआई कहता है,
11: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब वक्त है रेल से जुड़ी सूचना सुनने का। तो आइए जानते हैं भागलपुर से आने वाली, भागलपुर को आने वाली, भागलपुर से जाने वाली और भागलपुर से खुलने वाली ट्रेनों का क्या समय रहेगा और कौन सी गाड़ी सही समय पर चल रही है और कौन सी गाड़ी चल रही है अपनी नियत समय से देरी से। तो हम अब नज़र डालते हैं आज के जो ट्रेन्स हैं उसमें कौन सी गाड़ी कब आ रही है। गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस अपने नियत समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 130 हावड़ा क्यूल, हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस अपने नियत समय सुबह 7:45 पर जमालपुर स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 12368 आनंद बिहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस जिसका सही समय है 8:15 पर अपने सही समय से चल रही है। ये गाड़ी 7:31 पर सुल्तानगंज स्टेशन को छोड़ चुकी है। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्रा मेल का जो सही समय है वो है 8:05। ये गाड़ी आधे घंटे लेट से चल रही है और 8:31 पर भागलपुर आने की संभावना है। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर जिसका नियत समय है 8:37 इसे ट्रेन का जो परिचालन है वो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट जमालपुर स्टेशन से 7:10 पर रवाना हो चुकी है। गाड़ी संख्या 22311 गोड्डा लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का निर्धारित समय है 8:35 पर भागलपुर आने का। ये गाड़ी अपने सही समय से चल रही है। ये और गाड़ी संख्या 12335 भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 7:35 पर माथेला से रवाना हो चुकी है और इसे इसके भागलपुर आने की संभावना 8:55 पर है। गाड़ी संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस अपने नियत समय से चल रही है। ये गाड़ी 7:38 पर शिवनारायणपुर स्टेशन को छोड़ चुकी है और सुबह 9:00 भागलपुर स्टेशन आने की संभावना है इसकी। और गाड़ी संख्या 13229 गोड्डा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस जो कि अपने नियत समय से चल रही है और 7:33 पर पोरैया हाट से रवाना हुई है और भागलपुर आने की इसकी संभावना सुबह 10:15 पर है। और भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस जिसकी गाड़ी संख्या है 12367 अपने नियत समय से भागलपुर स्टेशन से खुलने की संभावना है। इस गाड़ी के भागलपुर स्टेशन को छोड़ने का जो समय है वो है सुबह 11:55। और अब ये ट्रेनों के बारे में तो हमने जान लिया, तो आप अपने यात्रा का प्लान इन गाड़ियों के समय को देखते हुए करें और ज़्यादा भाग दौड़ ना करें और नियत समय से अपने घर से निकलिए और पहुंच जाइए स्टेशन। और अब हम आपको सुनवाते हैं एक और गीत जिसे गाया है शैलेश कुमार ने।

शैलेश कुमार की गाय निराला रचित गीत आप सुन रहे थे। और अब वक्त हो गया है आज के कार्यक्रम को समेटने का, तो आप जुड़े रहिए आकाशवाणी भागलपुर के साथ और आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। सुबह के 7:55 हुए हैं। आइए शामिल होते हैं अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग,
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय

योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम।
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
5: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
5: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
9: We have been able to achieve that in the first
10: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
9: They are all designed in India now.
8: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
11: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
8: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा

0: launched that will soon enable police and agencies to carry out instant fingerprint-based verification of criminal records using scanners linked to a database of over 1.3 crore suspects and convicts, reports The Hindu. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Subhadra. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installments of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। एनटीए नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्क गैर सतह पर मशक करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। सेबी ने फौत शुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्सा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर चेन्नई में सीरीज के तीसरे और आखिरी ओडीआई में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से उनके आबाई जिले मयूरभंज में मिलेंगे। जनाब मोदी का यह दौरा सदर जमहूरिया के 68वें यौम पैदाइश और ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वजीर आजम मोदी आज देर गए मगरबी बंगाल के शहर हुगली से पीएम किसान स्कीम के तहत 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों के लिए 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेंगे। इसमें मगरबी बंगाल के 45,00,000 से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे जाने वाले 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी शामिल है। पेश है वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दो रोजा दौरे पर मगरबी बंगाल पहुंच रहे हैं। रियासत में बीजेपी के इख्तदार के बाद ये उनका पहला दौरा है। अपने क्याम के दौरान वो हुगली में ताराकेश्वर में मगरबी बंगाल के दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर बैन अल-अक़वामी योग डे प्रोग्राम की क्यादत करेंगे और मुल्क ही में तैयार किए गए 3 जंगी जहाजों INS दोनागरी, INS संशोधक और INS एग्रे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो बहुत से अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी ज़राअत के शोबे के लिए मगरबी बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी बाकायदा आगाज करेंगे, जिसके तहत तकरीबन 50,00,000 किसानों को बीमा फराहम किया जाएगा। कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस रोज एक ऐसी रियासत का जश्न मनाया जाता है जिसमें अदब, मौसीकी, आर्ट, रूहानियत, साइंस, तिजारत और समाजी इसलाह की शक्ल में मुल्क की तारीख में जबरदस्त किरदार अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि मगरबी बंगाल की तारीख में इस दिन की खास अहमियत है। भारत भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की फलाह और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खुसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदाम का जिक्र कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बाख्तियार भारत के दो सबसे अहम सुतून सेमी कंडक्टर इको निजाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की जबरदस्त तरक्की है। इस ताजा तरीन पॉलिसी से सेमी कंडक्टर इको निजाम की उमंगे मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग में बदल गई है। सेमी कंडक्टर्स कौमी सलामती इकतसादी इस्तेकाम डिजिटल खुद मुख्तारी और मुस्तकबिल के मुकाबला जाते रुझान की बुनियाद है। ये मिशन दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमी कंडक्टर मिशन बोयम का आगाज किया जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहला मिशन इस पेचीदा सनत के लिए बुनियाद के तौर पर कायम किया गया था और मिशन दोयम के तहत इको निजाम में गहराई लाई जाएगी। भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत दी गई जिसमें सैटेलाइट खला में भेजा जाना भी शामिल है। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। 2014 में महज एक स्टार्टअप था जबकि अब इनकी तादाद 400 से ज्यादा हुई है। इसकी वजह से मुल्क की प्राइवेट खलाई मईशत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं। भारत का पहला सेफ स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई टू एरोस्पेस इस परिवर्तन का प्रमाण है।
1: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी और सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी का दौरा करेंगे। वो महालक्ष्मी मंदिर के अहाते में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और मंदिर के इलाके में मगरबी महाराष्ट्र मंदिर तरक्याती मनसूबे के तहत शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। जनाब शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। बाद में जनाब शाह इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। जनाब शाह इमदाद बाहमी चीनी मिल को नया नाम दिए जाने और तौसीकारी से मुतालिक एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। जनाब शाह इचलकरंजी में कलपना अवाडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत को बहरान से दो चार दुनिया में अपने कौमी मफादात दिफाई खुद मुख्तारी और कसीर खुदबियत को बरकरार रखते हुए ताल्लुकात को मुस्बत बनाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने बहुत से शोबों में भारत अमरीका शराकतदारी को गहरा करने के बारे में इजहार ख्याल किया जैसा कि दोनों ममालिक अपने मामलात और पेचीदगियों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है इसके मफादात में भी तौसी और तनव्वो पैदा हो रहा है। ये आकाशवाणी है। भारत के सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक अग्रवाल को मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF का 2026-27 की मुद्दत के लिए नायब सदर मुंतखब किया गया है। वो इंग्लैंड के जिल्स थॉमसन की जगह लेंगे। जनाब अग्रवाल इस वक्त वजारत सकाफत में सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो FATF के लिए भारतीय वफ्द की क्यादत भी कर चुके हैं। 17 से 19 जून के दरमियान FATF के मुकम्मल इजलास के दौरान जनाब अग्रवाल को इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया गया। वजारत खारजा ने जनाब अग्रवाल का इंतखाब किए जाने को भारत की बड़ी कामयाबी करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने कहा कि जनाब अग्रवाल की तकरीरी से दहशतगर्दी की माली एयानत और गैर कानूनी माली नेटवर्क और गैर कानूनी मालियाती ढांचों के खात्मे के भारत के अजम को मजीद तकवीत हासिल हुई है। امتحانات کی قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ایک ملک گیر موک ڈرل کا انعقاد کرے گی۔ امتحانات کو خوش اسلوبی، محفوظ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو یقینی بنانے کے مقصد کے حصے کے طور پر ایسا کیا جا رہا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے بلا رکاوٹ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ امتحان کل ہونا ہے۔ ایک بیان میں این ٹی اے نے کہا کہ یہ امتحان ملک کے 551 شہروں اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں منعقد کیا جائے گا۔ تقریباً 22,79,000 امیدوار امتحان میں شریک ہوں گے۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ امتحان کو منصفانہ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو یقینی بنانے کے لیے کثیر سطحی سیکیورٹی نظام نافذ کیا گیا ہے۔ دوبارہ امتحان دوبارہ دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 پر قلم اور کاغذ کے طریقہ کار کے تحت کرایا جائے گا۔ شیوانگ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
2: اس کے علاوہ دلی ہائی کورٹ نے کل دوبارہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام کو عارضی طور پر بلاک کرنے کے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا اور کہا کہ پلیٹ فارم کا نظام غیر قانونی مواد کے تیز رفتار پھیلاؤ کو ممکن بناتا ہے اور یہ کہ محدود نوعیت کے دیگر اقدامات امتحان میں دھوکہ دہی کو روکنے میں ناکام رہے تھے۔ ہم اپنی سیریز آکاشوانی پر لوگوں کے پدم کی اگلی قسط میں ایک سماجی کارکن اور کاروباری جذبے کے حامل ایس کے ایم ملانندھن کا ذکر کر رہے ہیں، جنہیں پدم بھوشن سے نوازا جائے گا۔ آپ یہ پروگرام آج 100.1 آکاشوانی گولڈ پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ بھارت کے سیکیورٹیز اور ایکسچینج بورڈ سیبی نے کچھ اصلاحات کی منظوری دی ہے، جن کا مقصد مارکیٹ کی استعداد میں بہتری لانا، درکار دستاویزات کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنا اور مالی شعبے میں ضابطہ جاتی فریم ورکس کو مستحکم بنانا ہے۔ کل منعقدہ 214 میٹنگ میں سیبی بورڈ نے فوت شدہ سرمایہ کار کے قانونی جانشینوں اور دعوے داروں کے لیے سیکیورٹیز کی منتقلی کو آسان بنایا ہے۔ یہ فیصلہ چھوٹی رقم والے دعووں کو جلد نمٹانے کے مقصد سے کیا گیا ہے، تاکہ اس کے لیے کم سے کم دستاویزات درکار ہوں۔ سیبی نے کچھ معاملات میں پین کی لازمیت کو بھی ختم کر دیا ہے اور کیو آر کوڈ والے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو تسلیم کر لیا ہے۔ سیبی نے سٹاک ایکسچینجوں کے ذریعے کھلی مارکیٹ میں اپنے فروخت کیے گئے شیئرز کو واپس خریدنے کا نظام بھی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نظام اس سال 1 اگست سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے بینکوں، اثاثے کی تعمیر نو کرنے والی کمپنیوں اور قرضہ دینے والی کمپنیوں کے مابین بقول اس کے گہری سانٹ گانٹ پر شدید تشویش ظاہر کی ہے، جس سے اس طریقے پر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کے تحت قرض نادہندگی کے معاملات نپٹائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وی موہن پر مشتمل ایک بینچ نے کل کہا کہ بینک ٹیکس دہندگان سے حاصل کیا گیا پیسہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں، لیکن ان قرضوں کو واپس لینے کی اکثر مؤثر کوششیں نہیں کی جا رہی۔ عدالت نے کہا کہ اسے سرکاری پیسے کے غلط استعمال پر تشویش ہے، جسے عوام کی بہبود کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے۔ یوگا کا بین الاقوامی دن 2026 کل پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ یہ 12 یوگا کا بین الاقوامی دن ہوگا، جس کا موضوع ہے صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا، جو سبھی عمر کے لوگوں کے لیے یوگا کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس سلسلے میں تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک کے 100 اہم مقامات پر یوگا کے بین الاقوامی دن کے تعلق سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کرے گی۔ اصل تقریب وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوگی، جہاں وزیراعظم کامن یوگا پروٹوکول میں ملک کی قیادت کریں گے۔ مغربی بنگال میں خلیج بنگال سے اٹھنے والے مانسون کے سرگرم بادلوں اور شدید رطوبت کے سبب ہمالیہ سے متصل اضلاع میں آج سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ کولکتہ اور مضافات کے کئی علاقوں نے اس مغربی بنگال کے کچھ جنوبی ضلعوں میں کل موسلادھار بارش ہوئی، جس کے سبب لوگوں کو دن کے مصروف دفتری اوقات میں پانی بھر جانے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج دوپہر چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 شروع ہوگا۔ میزبان بھارت پہلے ہی سیریز میں 2-0 سے سبقت حاصل کیے ہوئے ہے اور اب وہ سیریز کے تینوں میچ کو جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
5: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت دی ہے۔
3: रोना प्रताप ने वजी अजम नरेंद्र मोदी के मगरबी बंगाल दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाया किया है, जिसके मुताबिक जनाब मोदी आज वहां के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो मगरबी बंगाल दिवस के साथ साथ योगा डे की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में बैन अवी सिकल सेल डे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के मिशन के तहत 7 करोड़ अफराद की स्क्रीनिंग हुई है। इस खबर पर रोना प्रताप

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन करेगा। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से मिली भीषण गर्मी से राहत। वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम से श्री मोदी 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह नई ट्रेन राजस्थान और मिथिला क्षेत्र के बीच रेल संपर्क को और सुदृढ़ बनाएगी। सप्ताह में 6 दिन संचालित होने वाली यह ट्रेन खातीपुरा से शाम 5:45 पर प्रस्थान करेगी और लगभग 25 घंटे की यात्रा के बाद अगले दिन शाम 6:30 पर दरभंगा पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन दरभंगा से रात 9:15 पर रवाना होगी और अगले दिन रात 10:30 पर खातीपुरा पहुंचेगी। अपने मार्ग में यह ट्रेन अलवर, मथुरा, कानपुर, बाराबंकी, गोरखपुर, बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल और सीतामढ़ी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने निलंबित आईएएस अधिकारियों योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के आवासों समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। साथ ही एसवीयू ने एक निर्माण कंपनी के निदेशक पवन कुमार के आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान दोनों आईएएस अधिकारी अपने आवास पर नहीं मिले। यह कार्रवाई ठेकेदार रिशो श्री से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर की जा रही है। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने रिशो श्री की कंपनियों को टेंडर दिलाने में मदद की थी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रिपोर्ट और एसवीयू में दर्ज प्राथमिकी के बाद राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इधर नीट परीक्षा को देखते हुए पटना के बापू परीक्षा परिसर के आसपास आज विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। कुम्हरार मार्ग पर ऑटो, ई रिक्शा और भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं परीक्षा के मद्देनजर बेली रोड पर मेट्रो कार्य के लिए आज से प्रस्तावित ट्रैफिक ट्रायल भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी टीएसपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2026 के तहत यह अनुशंसा की गई है। गोपालगंज निवासी मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने कई अहम मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। गृह विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियुक्ति की तिथि से अगले 5 साल तक दोनों खिलाड़ियों को सक्रिय रूप से प्रतियोगिताओं में भाग लेना अनिवार्य होगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल मुख्य समारोह कोलकाता में आयोजित होगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न भागों में भी योग शिविरों और योग जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल होंगे। पटना उच्च न्यायालय में भी इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्य के प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में योगाभ्यास सत्र का आयोजन होगा। लोक आस्था के महापर्व छठ का पारंपरिक प्रसाद ठेकुआ का स्वाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया स्लोवाकिया दौरे के दौरान वहां की संसद के स्पीकर रिचर्ड राशि को उपहार स्वरूप ठेकुआ प्रदान किया। प्रधानमंत्री के इस कदम को बिहार और पूर्वांचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ठेकुआ उपहार स्वरूप दिए जाने से राज्य के पारंपरिक खान पान को नई वैश्विक पहचान मिली है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, साथ ही राज्य के दक्षिणी भाग में लू की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के पूर्वी भाग एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर होने चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। वैशाली में 3, शेखपुरा में 2 तथा नवादा और जमुई में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के निकटतम परिजन को 4,00,000 रुपये अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने सबौर हर्षित नामक धान की उन्नत किस्म विकसित की है, जो कम बारिश और सीमित सिंचाई की परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सबौर हर्षित धान की फसल लगभग 115 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि अनुकूल परिस्थितियों में इससे 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यह किस्म सूखा सहनशील होने के साथ साथ कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता वाली मानी जाती है। प्रदेश में पिछले 7 महीनों में रोजगार के 63,115 नए अवसरों का सृजन किया गया। वहीं बिहार रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 68,822 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में 7 निश्चय 3 की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश दिए। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा के 1,799 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा में 10,759 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों के लिए अब शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह परीक्षा 27 मई को आयोजित की गई थी। 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा के लिए नोडल संस्थान भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की ओर से जारी परिणाम के अनुसार वैशाली के हिमांशु अजनबी और कटिहार के रवि कुमार ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया है। दोनों ने 120 में 117 अंक प्राप्त किए हैं। छात्राओं में सीतामढ़ी की अंजना और बेगूसराय की प्रियंका पासवान संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहीं। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 12 जुलाई को होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों के ई प्रवेश पत्र 22 जून से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में थानाध्यक्ष राजीव रंजन को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पुलिस पदाधिकारी पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। इधर बिहार राज्य महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक से अब तक कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन मांगा है। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 30 लाख रुपए मूल्य की 304 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद की है। छापेमारी के दौरान 2,02,000 रुपए, 5 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 54,84,000 रुपए, सोने चांदी के आभूषण, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल पक्कैया नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। गया जिले के नक्सल प्रभावित लटुआ थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 5 किलो का आईईडी बरामद किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बिहार दौरे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, रेल मंत्री और सीएम ने छपरा से आनंद विहार नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, 5 वर्षों में बिहार को मिलेंगी 200 नई ट्रेन। प्रभात खबर नीट यूजी पुनर्परीक्षा पर लिखता है, एनटीए का परामर्श, डाउनलोड करें नया एडमिट कार्ड, बदल सकते हैं परीक्षा केंद्र। दैनिक भास्कर ने लिखा है, दारोगा भर्ती, अब एक पद के लिए 6 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। राष्ट्रीय सागर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पटना शहर से बाहर होंगे सारे कोचिंग सेंटर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन करेगा। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से मिली भीषण गर्मी से राहत, वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।

0: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म आन मिलो सजना से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी एवं साथी। गीत आनंद बख्शी के हैं। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

वाजिद एवं श्रेया घोषाल के युगल स्वर में प्रस्तुत है बुलेट राजा फिल्म का गीत। गीत कौसर मुनीर ने लिखे हैं, संगीतकार हैं साजिद वाजिद।

0: easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: सुनो ना,
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है, हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
5: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं येसुदास एवं हेमलता की आवाजों में। फिल्म है चितचोर, गीत एवं संगीत रविंद्र जैन का है।

आशिकी फिल्म के इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं निशा कुमारी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इनके गाए तुलसीदास रचित भजन से।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम की गायिका हैं निशा कुमारी। इनके स्वर में अब आपको हम सुनवाते हैं तुलसीदास रचित भजन।

निशा कुमारी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे विद्यापति रचित भजन। एक और भजन अब आपको हम सुनवाते हैं, निशा कुमारी का ही स्वर है और ये भजन, इस भजन की रचना ब्रह्मानंद ने की है।

निशा कुमारी के गाए इस भजन के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म आनंद से।

आप सुन रहे थे आनंद फिल्म का गीत मुकेश के सुर में। गीतकार थे योगेश और संगीतकार सलील चौधरी। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हेमलता के सुर में। फिल्म है अखियों के झरोखे से।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700001-4242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001-4242।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दोस्ताना फिल्म से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार एवं आशा भोसले।

कल की आवाज़ फिल्म का गीत आपको हम सुनवा रहे हैं कुमार सानू एवं साधना सरगम के सुर में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

और कार्यक्रम के आखिरी में आपको हम सुनवा रहे हैं सेहरा फिल्म का गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार रामलाल और गायिका हैं लता मंगेशकर।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। आज लोकगीत कार्यक्रम की गायिका हैं खुशबू कुमारी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इनके गाए मनोन गीत से।

0: पर बुआई भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम। गायिका है खुशबू कुमारी, इनसे हम आपको सुनवा रहे हैं देवी गीत।

खुशबू कुमारी के गाए इस झूमर के साथ ही संपन्न होता है लोक गीत कार्यक्रम आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 11 बजने ही वाले हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले कार्यक्रम का।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:01 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम फोन इन आपकी पसंद। इस कार्यक्रम को आपके लिए पेश कर रहे हैं सौरभ कुमार।

0: फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने मन पसंदीदा गानों की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में करवा सकते हैं। साथ ही आप अपनी फरमाइश प्रत्येक शनिवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच में सुन सकते हैं। तो लेते हैं हम अपने पहले कॉलर को। नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो जी, मैं शहादत अली बात कर रहा हूँ। सर,
0: शहादत जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, बहुत दिनों बाद कॉल लगाया।
0: जी, बहुत दिनों बाद कॉल लगाया। और अभी आप घर वगैरह जा रहे हैं?
1: हाँ, जी अभी घर में हैं सर।
0: क्या बात है, क्या बात है, तब तो बहुत अच्छा लग रहा होगा अभी घर में।
1: जी बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मुझे राज
0: फिल्म का कौन सा गाना?
1: जी, कितना प्यारा।
0: क्या बात है, तो ये गाना खुद सुनेंगे अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: दोस्तों के साथ सुनाएंगे, घर वालों से।
0: जी, तो ठीक है, आपकी पसंद पे आपके तमाम चाहने वालों और अपने तमाम श्रोताओं को ये गाना हम जरूर सुनाएंगे। और इस तरह आप हमें कॉल करिएगा।
1: जी।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: सौरभ जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: जबलपुर एमपी के अशोक जी, फोन ही नहीं मिलता सर।
0: अशोक जी, काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है और ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत खराब है।
1: तबीयत नहीं खराब सर, फोन ही नहीं मिलता है लगातार।
0: कोई बात नहीं, आज तो लग गया। और कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? आकाशवाणी की
0: जी जी सभी अच्छी है। और बताइए, आपकी तरफ मानसून आया है या नहीं आया?
1: नहीं आया, उम्मीद कर रहे हैं एक दो दिन में आने, 20 तक बताने
0: जी जी। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे है और वर्षा वन का जो ये दिवस मनाया जाता है, और हमारा जो इकोसिस्टम है उसके लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, आपको जो इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हमको मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी से, वो सब के लिए ये वर्षा वन का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए यह दिन मनाया जाता है। और आप रहते हैं जबलपुर मध्य प्रदेश में, वहाँ पे कई सारे वन हैं, जंगलों का वो इलाका है पूरा, तो इसलिए आपके लिए तो और इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है। और मानसून आया नहीं है, इसके कारण से तो बहुत समस्याएं आ रही है, गर्मी भी काफी लग रही है जी। तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुन लीजिए, पर्वत से काली घटा टकराई चांदनी मूवी।
0: क्या बात है, तो गाना खुद सुनेंगे या दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो सर आप ही हो, और सब सुनने वाले यहाँ भी है, मनोज कुमार यादव है, नारायण सिंह है, तो सुनने वाले
0: जी। तो सभी श्रोताओं को और आपके तमाम दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रोमेश पत्रो बेतनती स्थित गोलाघाट असम से बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, इतनी दूर से आप फोन कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं आप लोग?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए, असम के हाल कैसे हैं?
1: असम के हाल, अभी बारिश चल रहा है।
0: क्या बात है,
1: धान का खेत हो रहा है अभी।
0: जी जी, तो आप कहाँ के रहने वाले? असम में
1: गोलाघाट।
0: गोलाघाट जानते हैं, तो आप असम के हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर है आपके, और आपका और भी क्या क्या घूमने लायक जगह है आपके यहाँ पे?
1: हमारे डिस्ट्रिक्ट में काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है
0: जी,
1: और गोगम पानी है
0: जी जी,
1: और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है
0: जी जी जी जी जी जी जी। बहुत अच्छा लगता है आप इतनी दूर से फोन करते हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि हम लोग जो है, जो 22 तारीख को हम लोग मना रहे हैं वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, विश्व वर्षा वन दिवस, और ये पूरी 22 तारीख को मनाया जाता है। अब चूंकि असम पूरी तरह से प्रकृति और जंगलों का प्रदेश है, तो वहाँ की जो एक सुंदरता है वो आपको प्रकृति में ही है, तो इसीलिए ये दिन जो है वो लोगों में एक जागरूकता फैलाने का है कि आपके जो जंगल हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, वहाँ पे जितनी बायोडाइवर्सिटी है, जैसे आपने बोला काजीरंगा, काजीरंगा में कितने प्रकार के जो जीव जंतु रहते हैं, कितने तरह के पौधों की प्रजातियां हैं, वो सब उसको एक अपने आप में विशेष बनाती है। तो उस सभी का हम लोगों को फायदा है, तो इसी लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि रेन फॉरेस्ट को आप बचा के रखिए, काटिए नहीं, ये सब हमारे मित्र ही हैं। और ऐसे भी जो नॉर्थ ईस्ट में तो सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ये काफी अच्छी बात लगती है देख के। जी, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मेरा फिल्म रहेगा दलाल।
0: अच्छा, दलाल फिल्म का, मिथुन चक्रवर्ती। जी,
1: गाने के बोल होगा ठहरे हुए पानी में,
0: कंकर नमार सांवरे। क्या बात है, तो गाना आप खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: मेरा दोस्त है, दोस्तों का नाम बताऊं?
0: जी जी,
1: भाईकोन मुंडा है, अमोल बसुमतारी है, बिमोल बसुमतारी है
0: जी,
1: चंद्रकांत साइड है
0: जी,
1: और एकता ग्रुप का
0: रेडियो श्रोता,
1: श्रोता ये भगवान सिंह परमार, पूरन वर्मा, रमेश प्रजापति, राकेश है, और मेरा श्रीमती भी है रुनु पात्र
0: जी,
1: और अंजलि बसुमतारी
0: जी जी,
1: और संध्या रानी गोगोई डिब्रुगढ़ का
0: जी जी जी,
1: और बाकी सब सुनने वालों को ये डेडिकेशन रहेगा
0: जी,
1: और आपको भी
0: जी, बिल्कुल धन्यवाद। और आपकी पसंद पे आपके तमाम दोस्तों को, आपके परिवार के सदस्यों को और अपने तमाम श्रोताओं को ये गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: थैंक यू,
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: हम धुरैया गंगदूरी से सांदेव हरी बोल रहे हैं।
0: सांदेव जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हैं सर।
0: और बताइए, क्या चल रहा है अभी?
1: अभी तो खेती बाड़ी का समय है सर।
0: और बारिश हो रही है कि नहीं?
1: जी, बारिश तो आज ही हुई।
0: हुई है जी। काफी अच्छी बात है तब तो, क्योंकि बहुत इलाकों में बारिश नहीं हुई है। बहुत सारे लोग बारिश नहीं होने से परेशान है गर्मी से, तो अभी आपके यहाँ गर्मी का तो थोड़ा सा प्रकोप कम हुआ होगा।
1: जी
0: जी, और अभी बारिश होना आपके फसल के लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है?
1: नहीं, ठीक है सर।
0: जी, तो बहुत जरूरी है बारिश, क्योंकि अभी जो गर्मा धान लगाते हैं ना आप लोग, तो गर्मा धान के लिए आपको इसकी जरूरत है।
1: जी,
0: तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सुहाग फिल्म का गाना सर।
0: सुहाग फिल्म का गाना कौन सा?
1: 18 बरस के होने को आई।
0: क्या बात है, तो गाना खुद सुनेंगे, घर वालों के साथ सुनेंगे?
1: अपने घर वाले के साथ सुनेंगे।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा। धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: अरे सौरभ जी, सौरभ प्रेम प्यार है, नमस्कार
0: जी। नमस्कार नमस्कार, और कैसे हैं आप?
1: मानवर, मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मक्सर से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, और बताइए क्या हो रहा है अभी?
1: मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रहा हूं और आपको फोन लगाने का प्रयास कर रहा था। अभी अभी जाके सफलता मिली, मुझे बेहद बेहद खुशी प्रसन्नता हो रही है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बताइए कि अभी मौसम कैसा चल रहा है?
1: मानवर मौसम बहुत ही गर्म है, भीषण गर्मी हो रही है और प्रचंड धूप चिलचिलाती हुई दिन में रहती है, शाम को थोड़ा सा हल्का तापमान कम हो जाता है। दिन में तापमान 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस रहता है, जबकि रात में 29-30 के आसपास रहता है, मतलब लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ जाता है।
0: जी जी, इससे बीमार होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है।
1: जी जी
0: जी, आपको बताना चाहेंगे कि 23 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल विडोज डे, यानी जो विधवा औरतें हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और इसका उद्देश्य जो है वैश्विक स्तर पे जो मानवाधिकार का उल्लंघन होता है विधवाओं के साथ, उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना है, और मतलब सशक्त करने के उद्देश्य से, ताकि उनके अगेंस्ट जो अत्याचार है वो सब नहीं हो, वो सब बंद हो, और उनके जो कानूनी लीगल राइट्स वगैरह हैं वो सारी बातें बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है।
1: जी जी, बहुत ही ये तो सही अच्छी जानकारी आपने दी। विधवाओं को सम्मान दिलाने के लिए सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय कदम उठाए थे, और विधवाओं को सम्मान देने, उनको पुनर्विवाह करने के लिए और समाज में एक अच्छी सम्मान के साथ उनके जीवन यापन की उन्होंने एक मुहिम चलाया था, आंदोलन चलाया था, और जिसका कि आज ये विश्व विडो दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी।
0: जी बिल्कुल, और विधवा विवाह में एक और नाम जो सबसे पहले आता है वो है ईश्वरचंद विद्यासागर का।
1: जी जी बिल्कुल, उन्होंने भी ये इनके इसके विधवाओं के लिए बहुत ही प्रयास किया था, बहुत ही प्रयत्न किया था, एक आंदोलन उन्होंने चलाया था। मानवर, अभी 21 जून को हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ विश्व योग दिवस की।
0: जी, आपकी माध्यम से हम अपने तमाम श्रोताओं को 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और लोगों से ये अपील करते हैं कि आप योग को अपनाएं, और योग कोई हमारा बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे ही संस्कृति का एक हिस्सा है, और योग के जो फायदे हैं वो अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारी जो भाग दौड़ की भरी जिंदगी है और वो कहीं ना कहीं हमको अपने स्वास्थ्य से दूर कर रही है, हमारा जो खान पान का हैबिट वगैरह जो भी है, तो इस समय योग की जो प्रासंगिकता है वो काफी गुना बढ़ गई है।
1: जी बिल्कुल, निसंदेह आपकी बातों से सहमत हूँ, और कहते हैं कि करे योग रहे निरोग।
0: जी,
1: योग को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोग रखें।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मानवर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है गीत
0: मीत।
1: जी
0: मीत फिल्म का कौन सा गाना?
1: तो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं, ये गीत सुनना चाहता हूँ।
0: जी, तो

0: आपके पसंद का ये खूबसूरत सा गाना आपको हम जरूर सुनाएंगे, ये गाना आप खुद सुनेंगे अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी, मैं अपने दोस्तों को शामिल करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम सर्व कुमार साहब को, आकाशवाणी भागलपुर परिवार को, और साथ में हमारे हैं लोकेंद्र वर्मा है, राजू यादव है, और टेक चंद अग्रवाल और अविनाश जी, आशुतोष जी, राकेश कुमार, पूरन वर्मा, पुरुषोत्तम जी, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी भागलपुर को सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: जी, तो आपकी पसंद पे ये गाना आपको हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मेरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से आपका निवेश होता है इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी, कैसे हैं आप?
1: आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा। बहुत ऐसा प्रयास कर रहा था सर, लग गया है, बहुत अच्छा लगा सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बताना चाहेंगे कि 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम लोग मनाते हैं, और ओलंपिक गेम हमें मतलब खेल भावना से प्रेरित करता है। और दुनिया में कई सारे खेल हैं जो ओलंपिक में आते हैं, तो सभी खेल प्रेमियों के लिए और लोगों को खेल की जो अहमियत है प्रत्येक लोगों के जीवन में, वो आपको इसके बारे में प्रेरित करता है कि खेलना भी जरूरी है। और हमारे देश में अभी बहुत सारे लोग फिर खेलने के प्रति भी जागरूकता आई है, तो उसी हिसाब से सब लोग कर रहे हैं। तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज सर पुराना पिक्चर है, फिल्म का नाम है मेरा साया, गीत की बोल है नैनो में बदरा छाए, गायिका लता मंगेशकर, आकाशवाणी भागलपुर, सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, आकाशवाणी भागलपुर सभी सबसे बड़ी अच्छा जानकारी आपसे मिलता है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके तमाम दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: जरूर करेंगे कॉल सर।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: चाय बजरंग रेडी को श्रोता संघ बस तेन बंडा वेली से लक्ष्मण को चाय वाले बोल रहे चाय की लोग।
0: लक्ष्मण जी कैसे हैं आप?
1: अच्छे, बस भगवान की कृपा है, आप लोग की कृपा है।
0: क्या बात है, और बताइए कि आजकल क्या हो रहा है?
1: बस बहुत धूप हो रही और गर्मी हो रही, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है
0: जी। तो
1: तपों में नहीं भाई है, इतनी गर्मी लग रही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और सभी लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं ताकि मानसून में रिमझिम बारिश हो और सभी लोग इस प्रचंड गर्मी से थोड़ा सा राहत का अनुभव करें।
1: हाँ हाँ सर
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज सुना दी नदी के पार का।
0: कौन सा गाना?
1: का है, मोरिया मन से अंगना में आई बाहर।
0: क्या बात है, तो गाना खुद सुनेंगे अपने दोस्तों घर वालों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: हमारे दोस्त रहेंगे गजराज लोडी, मांगेलाल चंद्र, बसंती लाल, सुरवन बिपिन कटारी, ऋषि किश्तवारी, अमित तिवारी हैं, ये सब दोस्त हैं, ये सुनना चाहिए।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद पे आपके तमाम दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को ये खूबसूरत सा गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: ठीक है सर, नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, आपका नियमित श्रोता धीरज अबारी बात कर रहा हूँ गुजरात।
0: धीरज जी, केम छो?
1: मजा में। आप केम छो?
0: हाँ, अभी मजा में। अभी बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, और बताइए कि अभी गुजरात का मौसम कैसा चल रहा है?
1: मौसम ने करवट ली है, और आज रात को बूंदाबांदी हुई थी, यानी जो गर्मी में त्रस्त लोग थे उनके लिए राहत की सांस है, और इसमें मैं भी शामिल हूँ सर।
0: क्या बात है, और क्या चल रहा है?
1: बढ़िया चल रहा है सर। 21 तारीख को योग दिन है
0: जी,
1: और हम योग दिन अगर नहीं मना पाते तो उसके लिए हमें समय का यानी टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा
0: जी।
1: और थोड़ा बहुत समय अगर हम योग में दे तो हमारे शरीर में कभी रोग नहीं आएगा
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और दूसरी बात, अगर कभी कभार आप योग नहीं कर पाते तो उसका उपाय ये है कि अगर आप खेत में जाते हैं, नजदीक खेत है, तो आप साइकिल लेकर भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप शहर में और अपना कार्यस्थल यानी रोजगारी यानी व्यवसाय नजदीक है तो आप पैदल भी जा सकते हैं। अपना योग का समय अगर नहीं किया है तो वो उसमें भी हो सकता है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, योग का अर्थ ही है जुड़ना, और आप जुड़ किसी भी तरह से सकते हैं। अपने आप को आपको योग से जोड़ना है। कई सारे काम हैं जो घरेलू काम है, अगर वो भी करेंगे तो उसमें कई सारे आसन हो जाते हैं।
1: सर सही बताया आपने। और जो हमारे यंत्र आए हैं कपड़े धुलने के लिए, खेती के लिए, तो उसमें भी थोड़ी हम कमी करके उसमें से भी हमें शारीरिक कसरत बहुत मिलता था, और हम अभी भी उसमें थोड़ा बहुत कमी करके बहनों के लिए, भाइयों के लिए, तो हमको शारीरिक कसरत मिल सकती है सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी का संश्लेषण शरीर खुद करता है, वो
1: बिल्कुल
0: प्राकृतिक रूप से, और उसके लिए आपको धूप में जो होता है वो थोड़ी देर रहना पड़ता है। तो पहले जो हमारे लोग मतलब बाहर में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, तो वहाँ से उनको विटामिन डी का संश्लेषण हो जाता था। अब काफ़ी सारे लोग घर में बैठे रहते हैं, बाहर जाते नहीं हैं, तो सनलाइट उन लेते नहीं हैं प्रॉपर जितना लेना चाहिए। आधे से एक घंटे ज़रूरी होते हैं सनलाइट प्रतिदिन, जो आपके प्रतिदिन का विटामिन डी का संश्लेषण करने के लिए मददगार है। और फिर हमने फूड हैबिट्स में कुछ कुछ चेंज किया, जिसके कारण से कुछ ऐसे भी फूड हमारे हैं या जो भी तेल वेल भी जो भी चीज़ें, वो हमारा विटामिन डी का संश्लेषण को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं शरीर में। तो हम लोग को ज़रूरी है कि खाद्य पदार्थ भी अपना उसी तरह से खाएं जिससे विटामिन डी का संश्लेषण हो, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी बीमारी होती है तो वहाँ पे विटामिन डी, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह जो भी होते हैं, उसमें विटामिन डी एक तरह से आपके उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है, बल्कि वो उसको शांत करने का कार्य करता है। तो विटामिन डी का संश्लेषण वहाँ से रुक जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके प्रॉपर ब्लड फ्लो के लिए ज़रूरी है, आपके जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनते हैं तो उसका, या वसा जो हो रहा है संचित अतिरिक्त रूप से, और खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अतिरिक्त रूप से वसा का संचयन करते हैं, तो उन सबों पर भी मतलब दो तीन स्तर से हमें कार्य करने की, योग तो करना ही साथ साथ अपने फूड हैबिट को भी हमको सुधारना होगा। पहले का जो हमारा ट्रेडिशनल फूड हैबिट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा।
1: बिल्कुल सर, आपने जो बताया उसमें हमको थोड़ी बहुत समझ आई, और शुद्ध आहार और शुद्ध हवामान और हमारा शारीरिक कसरत, अगर आप ये तीनों सक्सेस हो तो कोई रोग भी नहीं आ सकता और हमें शारीरिक रूप से हम सशक्त बना सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इन्फ्लामेशन जो है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को इन सब चीजों को ध्यान में देना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज नूरी फिल्म का गाना सुनना है, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, आजा रे सर।
0: क्या बात है, तो गाना खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: हाँ सर, हमारा एक आकाशवाणी फोन इन एकता ग्रुप है, इसमें लोकेंद्र वर्मा जी, गौतम राय बोले जी, तुकाराम जाधव जी, गुणवंत भाई कड़ू, गंगाधर सावंत जी, पूरा भारत भर के श्रोता इसमें जुड़े हैं, और सर आप भी ये गाना सुनोगे?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनेंगे, और इसी तरह आप हमें फोन करते रहिएगा।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी भैया, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया भी, अच्छे हैं।
0: और बताइए क्या चल रहा है अभी?
1: अभी बस ये मानसून बारिश का इंतजार है भैया, फिर उसके बाद खेती बाड़ी का काम करेंगे।
0: क्या बात है, यही बात सभी लोग बोल रहे हैं, सभी को मानसून का इंतजार है। और इस बार
1: जी
0: मानसून लुका छुपी का खेल खेल रहा है,
1: हाँ
0: कभी
1: जी,
0: बारिश
1: हाँ
0: दे दे रहा
1: जी
0: है फिर, लेकिन पूरी तरह से आया नहीं है
1: जी जी जी
0: जी।
1: जी
0: और 21 जून आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 21 जून
1: हाँ
0: को ही
1: जी
0: सबसे बड़ा दिन होता है
1: जी जी
0: जी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप लोग इस बार कुछ प्रोग्राम वगैरह कुछ कर रहे हैं या योगा का कुछ अभ्यास वगैरह?
1: होते हैं भैया, ग्रामीण स्तर पर पंचायत वगैरह के माध्यम से
0: जी
1: जागरूक करने के लिए तो थोड़ा प्रयास होता ही है।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: प्यासा सावन से सुनवा देंगे, मेघा रे मेघा रे।
0: क्या बात है, सभी को मानसून का इंतजार है, तो आप प्यासा सावन का एक खूबसूरत सा गाना सुनना चाहते हैं, तो गाना खुद सुनेंगे या
1: जी
0: अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: हाँ, कुछ साथी हैं। श्रीपाल गोयल जी, लोकेन्द्र वर्मा जी, दिलीप आहूजा जी, रोशन देवांगन जी, तुकाराम जाधव जी, बाहुबली फुरसुले जी, भगवान सिंह, प्रेम सिंह जी, जगदीश रायगर जी, केसरी सिंह राजपूत जी, और तमाम साथी, किसी का नाम छूट गया हो तो।
0: जी तो ठीक है, आपकी पसंद पे आपके तमाम चाहने वाले दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को ये गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है, यानी वक्त है आपसे विदा लेने का। पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि फोन इन आपकी पसंद की रिकॉर्डिंग आप प्रत्येक शुक्रवार को 11:30 से 12 बजे के बीच में करवा सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शनिवार को 11:00 से 12:00 बजे के बीच में किया जाएगा। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता यानी मुझे सौरभ कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम फोन इन आपकी पसंद। इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया सौरभ कुमार ने और प्रसारण किया गया आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक।

नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को मनीषी का प्यार भरा नमस्कार। पता है बहनों, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ये बात समझ में आ रही है कि खुशी का मतलब बस एक शांत सुबह, अच्छी हेल्थ, टाइम पर भरे हुए बिल और एक सुरक्षित घर और फालतू ड्रामा ना करने वाले लोग हैं। लेकिन लोग खुशियां पैसों में, चीज़ों में या कहीं झूठी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढते हैं और इस खोज में वे बस ढूंढते रह जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जीवन की असली खुशी अपनों के साथ है, अपने घर में, अपने देश में। और जो लोग अपनों से, अपने देश से दूर रहते हैं, उनकी व्यथा तो वो ही जानते हैं। बहनों, आज है विश्व शरणार्थी दिवस, जिसमें हम जानेंगे शरणार्थियों के संघर्ष, उत्पीड़न, उनके संघर्ष के बारे में, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पैनो विश्व शरणार्थी दिवस दुनिया भर के शरणार्थियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उन लोगों के साहस और दृढ़ता को उजागर करता है जिन्हें संघर्ष, उत्पीड़न या संकट के कारण अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शरणार्थियों को अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कई को नौकरी, संपत्ति, शिक्षा और सामाजिक संपर्क छोड़कर नए स्थान पर बसना पड़ता है। शरणार्थी शिविरों में या किसी नए देश में पहुंचने पर भी उन्हें अक्सर भाषाई और सांस्कृतिक बाधाओं, भेदभाव और अलगाव या बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, स्वच्छ पानी, आश्रय, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा की कमी जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो बहनों, संघर्ष, उत्पीड़न और राजनीति के बीच फंसे शरणार्थियों की असुरक्षा को देखते हुए ये दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम शरणार्थियों के प्रति एकजुटता दिखाएँ।
5: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए

0: मैंने जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी है और इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए नियमित व्यायाम योग करना आवश्यक है। योग एक ऐसी जीवन शैली है जिसका उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन को बनाए रखना है। मनुष्य शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक प्राणी है। भारत के आयुर्वेद के अनुसार योग इन तीनों के बीच संतुलन विकसित करने में सहायक होता है। एरोबिक्स जैसे अन्य व्यायाम केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही लाभ पहुंचाते हैं लेकिन योग हमें शारीरिक मानसिक हर रूप से लाभ पहुंचाता है। खासकर महिलाओं में जब हार्मोनल इम्बैलेंस और प्रजनन स्वास्थ्य की बात आती है तो इसमें योग बहुत सहायक होता है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे हमारी भेंटवार्ता में जिसका विषय है हार्मोनल असंतुलन और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए योग। भेंटवार्ताकार हैं ऋतु कुमारी, भेंट करता है श्रीनाग गुप्ता।
1: बड़ा मुश्किल भाई, तो बड़ा

0: बहनों, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने के साथ साथ हार्मोनल असंतुलन और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भी कारगर उपाय है। कैसे, जानने के लिए आज की भेंट वार्ता में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है भागलपुर की जानी मानी योग शिक्षिका रितु कुमारी जी को, जो पिछले कई वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्य कर रही है। आपने अनेक लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की दिशा में प्रेरित किया है और योग को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रितु जी हमारे स्टूडियो में।
1: जी धन्यवाद। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी योग के विषय में, उसके बाद मैं चर्चा करूंगी जो हार्मोनल जो हमारा असंतुलित होता है और जो प्रजनन की क्षमता है उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं या कैसे हम एक स्वस्थ जीवन उसके आधार पर जी सकते हैं, हम इस पर पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सभी बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार है। आप सब इसे सुने और सिर्फ योग दिवस के दिन नहीं, बल्कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके घरों तक पहुंचाया है, जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि 15 से पहले इस तरह से योग दिवस हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता था जी। लेकिन अभी जो है 15 से 14 में ये पारित हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में, जहाँ तक मेरी जानकारी है माननीय प्रधानमंत्री ने जब अपना प्रस्ताव रखा था तो 177 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और लगभग 98 देशों में एक साथ 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, ये जानकारी हम सबको है।
0: रितु जी, आप काफी समय से योग के क्षेत्र से जुड़ी है, आप हमें बताएं कि क्षेत्र को आपने अपने करियर के रूप में चुनने के पीछे क्या प्रेरणा थी और क्या कोई विशेष अनुभव या टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया?
1: तो बचपन से मेरी रुचि खेल कूद में थी
0: जी।
1: हम लोग बिल्कुल सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, आजकल लोग सरकारी स्कूल में नहीं देखते हैं, लेकिन वहाँ खेल कूद को उस समय
0: काफी
1: महत्व दिया जाता था उस टाइम। उसके बाद जो लाइफ होता है हम लोगों का, हम गांव से थे, शादी उदी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए
0: जी।
1: अचानक से वेट बहुत ज्यादा मेरा बढ़ गया। अगर प्रेरणा की बात करूं, मुझे लगने लगा मतलब अगर नीचे कुछ गिरता था मैं झुक के देखती थी तो मैं देख नहीं पाती, इतना वेट बढ़ गया था कि मुझे लगने लगा कि आप करें तो क्या करें। ये बहुत दिनों की बात नहीं है, ये 2013 की बात
0: जी।
1: उसके बाद मैं बहुत परेशान अंदर से रहती थी, मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को बदलना है और मैंने योगा शुरू किया। उस समय मुझे उतना लोगों के हाथों में उतना मोबाइल भी नहीं था, उतनी जानकारी भी नहीं थी, मैंने टीवी पर देखा और योग की शुरुआत की। हर रोज 3 बजे सुबह उठना, घूमने जाना, योगा करना
0: जी।
1: जब से जॉब में आई तो घूमने जाना थोड़ा ब्रेक लग गया है, वॉक नहीं कर पाती हूँ। फिर योगा का जर्नी मेरा वहीं से शुरू हुआ और लगभग मैंने 30 किलो मैंने अपना वेट जो है कम किया और वहां से शुरुआत हुई मेरा योग का। फिर देखते देखते मैंने ऑनलाइन किसी सेशन को ज्वाइन किया था कि मुझे उसमें योगा करना है खुद के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि लोग जो योगा कर रहे हैं उससे अच्छा मैं कर सकती हूँ, तो मैंने उस सेशन के जो ऑनर थे मैंने उससे बात की और मैंने उनसे कहा कि सर मुझे एक मौका दीजिए आप अपने सेशन में योगा कराने का। तो जब मैंने वहां पर योगा कराया तो सभी लोग, लगभग 100 आदमी का वो सेशन था जूम पर और देश के कोने कोने से आदमी थे, तो उन्होंने बहुत मेरी तारीफ की। तो एक चीज निकल के ये आती है कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनने जाता तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि जब मैं ठीक हो सकती हूँ
0: तो मैं
1: लोगों को भी ठीक कर सकती हूँ।
0: तो ये तो बात रही आपकी अपनी पर्सनल कि आप मोटी थी, फिर आपने योग के द्वारा खुद को फिट किया। अब हमें ये बताएं कि योग किस तरह से लोगों को फिट कर सकती है, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, हमारे खान पान में, हमारे जीवन शैली में किन किन बदलाव को लाना जरूरी है?
1: देखिए, बदलाव कुछ लाना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक संकल्प की जरूरत है
0: जी।
1: तो सिर्फ हम खुद को समय दे दें, हम करते हैं वही काम, हम खाना खाते हैं, हम अगर हमें 8 बजे नाश्ता करना चाहिए तो हमें 11 बजे करते हैं,
0: जो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है।
1: 1 बजे खाना खाना चाहिए तो हम 3 बजे खाते हैं, उस चीज को करते हम वही काम है, बस थोड़ा सा हमें समय का पाबंद हो जाना है और एक संकल्प कि कुछ हो जाए, बारिश हो, घर में कितना भी काम हो, हमें अपने लिए 24 घंटे में अपने लिए 40 मिनट निकाल लेना है। उसमें हम कोई एक्सक्यूज ना डालें, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और मैं बता दूं कि मैं सुबह 5 बजे घर से निकलती हूं, क्योंकि मुझे बच्चों को योगाभ्यास कराना है कॉलेज में
0: जी।
1: 5 बजे निकलती हूं और मेरा बेटा भी स्कूल जाता है, मेरी बेटी भी है, मेरे हस्बैंड भी जॉब में है, उन सब के लिए मुझे तैयारी करके निकलना पड़ता है
0: जी,
1: है ना। तो अगर हम ठान लें, संकल्प ले लें, तो हम कुछ भी कर कुछ सकते भी हैं
0: जी। तो रितु जी, जैसे कि आज की हमारी भेंटवार्ता का विषय है हार्मोनल असंतुलन और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए योग, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि हार्मोनल असंतुलन क्या है।
1: देखिए, हार्मोनल असंतुलन की जो बात कर रहे हैं, इम्बैलेंस जो हार्मोन होते हैं
0: जी
1: हमारे शरीर में, जैसे हम बात कर लें थायराइड की
0: जी,
1: तो थायराइड एक नेचुरल सिक्रेशन है, ठीक है। होता क्या है, कभी कम और कभी ज्यादा, और जब वो कम या ज्यादा हुआ तो आप बीमार हो गए। अगर नॉर्मल है, जैसे हम और आप अभी नॉर्मल, सिक्रेशन तो अभी भी हो रहा है
0: जी।
1: अगर हम थायराइड पे थोड़ा सा एक दो लाइन बोलना चाहेंगे कि अगर थायराइड का सिक्रेशन नहीं होगा सही ढंग से, तो हमारा खाना जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो नहीं होगा
0: जी।
1: फिर वो फैट का रूप लेता है। हार्मोनल असंतुलन वही है कि या तो आपका कम हो रहा है या तो आपका ज्यादा हो रहा है। तो उस स्थिति में सबसे पहले जो है आप अपने खान पान को आपको कंट्रोल करना हो।
0: तो ये कैसे लोग समझेंगे कि हम हार्मोनल प्रॉब्लम के,
1: जैसे हम लोगों का जो एज, उसमें हम देखते हैं कि महिलाएं खासकर थायराइड, डायबिटीज, इन सबसे जूझ रहे हैं और अनियमित पीरियड्स, और जब थायराइड बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिक होता है अनियमित जो पीरियड्स है। तो जब आपका शरीर ऑटोमेटिक सूखने लगता है
0: जी,
1: भूख कम लगना, नींद कम आना, तो इसमें आपकी थायराइड क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है। और जब आप बहुत ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं, चेहरा फूल रहा है, गले में सूजन जैसे ये सब, हाथ पांव फूलने लगते हैं, तो इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हमारा थायराइड जो
0: गड़बड़ है,
1: हाँ वो गड़बड़ हो रहा है
0: और स्किन में प्रॉब्लम, ये सारे जो है हार्मोनल बिगड़ने के कारण
1: जी। बिल्कुल, जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, आपका बालों का झड़ना, नींद नहीं आना, या चिड़चिड़ापन
0: लगना,
1: भूख नहीं लगना, और समय पीरियड्स, जो मासिक धर्म, गुस्सा, इरिटेशन, ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन हो जाती हैं।
0: आजकल ये समस्या लोगों में खासकर ज्यादा बढ़ रही है, और खासकर हम देख रहे हैं कि महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, ऐसा क्यों?
1: अगर आप इस दृष्टिकोण से भी देखें कि महिलाओं में क्यों आ रहा है, महिलाएं सबके लिए सब कुछ करती हैं और खुद को सबसे पीछे रखती
0: रहती है।
1: अगर काम करना है तो लगातार कर रही हैं। अगर मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं कह सकती हूँ कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो इसका रीजन ये है कि मैं खुद को समय देती हूँ।
0: हाँ, हर महिलाएं नहीं दे पाती है। उठती तो वो 5 बजे ही है, लेकिन चूंकि वो अपने लिए नहीं उठती है, वो उठती है पति के लिए, बच्चों के लिए,
1: और
0: तो वो खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती।
1: तो एक बात मैं उन सबसे जो प्रार्थना, रिक्वेस्ट, जो भी कहिए, करना ये चाहूंगी जो भेंट वार्ता के माध्यम से हम खुद के लिए भी जिए, क्योंकि अपने परिवार को, अपने घर को घर बनाने में मेरी सबसे ज्यादा अहमियत होती है, महिलाओं की सबसे ज्यादा अहमियत होती है, और इसे हमें समझना चाहिए।
0: और अब हम बात करेंगे प्रजनन स्वास्थ्य के लिए, तो ये साधारण सी भाषा में हमें बताएं कि प्रजनन स्वास्थ्य क्या है।
1: देखिए, प्रजनन स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो प्रजनन स्वास्थ्य एक संतुलित, शांतिपूर्ण और खुशहाल जिंदगी। आजकल सभी को पता है कि आप पार्टनर के साथ किस तरह से अपना सेक्सुअल लाइफ जी रहे हैं, वो सही तरीके से आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो जज करता है आपके प्रजनन स्वास्थ्य को, पहली बात। दूसरी बात, समय से आप बच्चे अगर पैदा करना चाह रहे हैं तो वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, प्रजनन स्वास्थ्य को दर्शाता है कि आप किस तरह से। दूसरी, अगर हम कुछ कम उम्र के बच्चों की बात करें तो जैसे PCOD और PCOS की प्रॉब्लम है, जैसे अनियमित पीरियड्स, बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे 13-14 के उम्र के बच्चों को देख लीजिएगा, लड़कियों को, कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं जब उनका मासिक धर्म आता है, तो वो भी आप कितना उसके लिए आप कंसस हैं, कितना जागरूक हैं, इस चीज पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।
0: और हार्मोनल अगर प्रॉब्लम हमें हो रही है तो प्रजनन स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है।
1: आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, अगर आपका डायबिटीज बढ़ा हुआ है, अगर आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है, प्रोस्टेरोन की कमी है, तो आप मासिक धर्म में जो पीरियड्स हैं वो अनियमित होंगे
0: जी।
1: और वहां से शुरू होती है परेशानियां, जो प्रजनन क्षमता को भी बहुत हद तक, बच्चे कंसीव नहीं कर पाते हैं आजकल, बहुत हद तक उसको प्रभावित करता है।
0: तो योग के द्वारा हम इसे कैसे दूर करें, कैसे निजात पाए, ये हमें बताइए।
1: योगा सबसे उत्तम, सबसे सरल, और वैल्यू जो कहते हैं ना कि उसमें 1 रुपया हमारा खर्च नहीं होता है, अगर हम खुद को जागरूक करें, योग के द्वारा बिल्कुल संभव है। मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी प्रकार का जो असंतुलित हमारा जीवन शैली है, हम उसको, चाहे वो प्रजनन से रिलेटेड हो, हार्मोन से रिलेटेड हो, हम उसको बिल्कुल संतुलित कर सकते, और योग जो है इसका सबसे अच्छा जरिया है।
0: तो योग के द्वारा ही हम इसे दूर कर सकते हैं कि हमें दवाई लेने की भी जरूरत है?
1: देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हमारे लक्षण जो हैं वो शुरुआती हैं, तो आपको योग बिल्कुल आपको 100% दे सकता है कि आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर वो परेशानी बहुत ज्यादा हो गई है तो आपको दवाई के साथ योग अभ्यास करना पड़ेगा। फिलहाल दिल्ली एम्स की घटना है
0: जी।
1: वहाँ की डॉक्टर ने लोगों को, लगभग 50 लोगों को अपने अंदर में रखकर, ये प्रजनन से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, उनको, महिलाओं को उनको अपने अंदर में रखा, उनको मेडिसिन दिए, उनमें से महिलाओं को दो भागों में बांट दिया। कुछ महिलाओं को उन्होंने योग का जो व्यक्ति, हाँ, प्रशिक्षण पर्सनली उन्होंने उसको अपनी देख रेख में योग के प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनको मेडिसिन भी दिए जो अप्लाई होता होगा उन पर, और कुछ महिलाओं को उन्होंने दूसरे श्रेणी में रखा जो सिर्फ मेडिसिन ले रहे थे। कुछ ये भी बोल देते हैं मैम मेरे पास समय नहीं है, तो उनको उन्होंने उस श्रेणी में, दो श्रेणी में बांटा। जो महिलाएं योग के साथ मेडिसिन ले रही थी उनका जो रिजल्ट था वो 80% बेहतर था उन महिलाओं से जो योग नहीं कर रही थी। तो वो डिपेंड करता है कि जो सिम्टम आप में दिख रहे हैं, जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो किस हद तक आप पर हावी। इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप योग स्टार्ट कर देते हैं तो जो दवाई आप 100% तक ले रहे हैं, 3 टाइम मेडिसिन ले रहे हैं, वो आपके 1 टाइम
0: कम हो जाएगी।
1: आप 1 टाइम दवाई लेके, डिपेंड करता है कि आप कितना उसको अपना समय दे रहे हैं
0: जी। अब हमें ये बताइए कि पुरुषों में अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो क्या प्रजनन क्षमता में दिक्कतें आ सकती हैं?
1: बिल्कुल, पुरुषों में अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो बिल्कुल प्रजनन क्षमता में दिक्कत होती है, क्योंकि जो शुक्राणु बनने चाहिए वो प्रॉपर नहीं बनते हैं, तो आपके जो ओवरी में जाते हैं वो कंसीव करने में फिर दिक्कतें आती हैं, और वहां से आपको पता चलता है। तो डॉक्टर, कई बार पुरुषों को ये लगता है कि महिलाओं में ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बराबर मात्रा में पुरुषों में भी समस्याएं होती हैं, और जब वो कमजोर होता है तो फिर वहां पर आपको जो प्रेगनेंसी जो टाइमिंग रहता है वो कंसीव होता ही नहीं है
0: जी।
1: जो अंडाणु होते हैं वो फट जाते हैं।
0: तो योग के द्वारा इसे कैसे ठीक किया जाए, कैसे निजात पाया जाए?
1: देखिए, योग के द्वारा बिल्कुल हम इससे निजात पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें नियमित योगाभ्यास करना होगा
0: जी।
1: कि योगाभ्यास के साथ साथ आपको, आप अगर अल्कोहल पुरुष ले रहे हैं तो उनको छोड़ना पड़ेगा, अगर वो धूम्रपान कर रहे हैं तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा।
0: मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को,
1: खान पान का पूरा ध्यान रखना होगा, और नियमित, अगर आप प्रॉपर बेनिफिट चाहते हैं, जो फायदा कहते हैं ना कि हमें चाहिए 100%, तो नियमित, बहुत ज्यादा आपके समय पर, आपके पास समय नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी 30 मिनट अपने लिए तो निकाल ही सकता है।
0: मतलब 30 मिनट तक योगा करना, 30
1: मिनट तक
0: करना
1: है डेली,
0: और सुबह या शाम कौन सा
1: ज्यादा, अगर आप
0: बेहतर है,
1: बेहतर सुबह है
0: जी।
1: खाली पेट खुली हवा में कोशिश करें, अगर आपके आसपास पार्क है तो वहां जाएं,
0: अगर
1: मॉर्निंग वॉक जाएं, और वॉक नहीं भी कर सकते हैं 30 मिनट प्रॉपर योगा करें।
0: जो महिलाएं योग शुरू ही नहीं की है और वो शुरुआत, मतलब शुरू से शुरू करना चाह रही है, तो उसके लिए कोई सिंपल सा आसन बताएं।
1: हाँ, बिल्कुल सिंपल आसन है। जैसे देखिए, जब हम योग की शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि ये हमसे नहीं होगा, वो हमसे नहीं होगा, लेकिन मैं सारे बहनों से ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी उम्र में हम योग की शुरुआत कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपल आसन की बात करें तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि हम छोटे छोटे चीजों से शुरुआत करें
0: जी।
1: हम सबसे पहले थोड़ा प्राणायाम पे बात कर लेते हैं
0: जी।
1: जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किसी भी प्रकार के जो हार्मोन हमारे शरीर में इम्बैलेंस होते हैं, जो असंतुलित होते हैं, उसमें प्राणायाम सबसे मुख्य भूमिका निभाती है। तो पहले मैं प्राणायाम की बात कर लेती हूँ। प्राणायाम में आप कपालभाति एक क्रिया है जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: दूसरे अगर प्राणायाम में मैं बात करूँ तो आप अनुलोम विलोम करिए,
0: भ्रामरी
1: करिए और उद्गित करिए, जो ओम का उच्चारण होता है, ठीक है। ये 3 प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकता है। जो अभी आपने बात की ना कि पुरुषों में क्या पुरुषों में भी कमी आ सकते हैं अगर हार्मोन असंतुलित है, तो हर हार्मोन को संतुलित कर सकता है।
0: करने का यह बेहतर तरीका,
1: बेहतर तरीका है कि आप नियमित, अगर आपके पास 30 मिनट समय है तो 15 मिनट आप अगर आपको लग रहा है कि ये हार्मोन असंतुलित है, हमें बच्चे चाहिए, हमारे अंदर प्रजनन की क्षमता कम है, तो 15 मिनट आप पहले प्राणायाम को दें। प्राणायाम में अभी तो लोग काउंट करते हैं कपालभाति को प्राणायाम में ही, लेकिन हमारे योग शास्त्रों में इसे क्रिया का नाम दिया गया है। तो कपालभाति आप 3 से 5 मिनट करें, अनुलोम विलोम भी 3 से 5 मिनट करें, 10 मिनट हो गया, और ढाई ढाई मिनट में आप भ्रामरी और उद्गीत को, जो ओम की चैंटिंग है, और भ्रामरी आपने जो कान और नाक को बंद करके गले से जो हमिंग बी की तरह आवाज निकालते हैं ना, वो भ्रामरी है, वो मन को एकाग्र करता है, हार्मोन को असंतुलित करता है। किसी बहन को अगर थायराइड है, किसी भाई को अगर थायराइड है, तो वो इसको कर सकते हैं।
0: तो ये सिंपल सिंपल सी आसन, ये जो आसान पहले की
1: जैसे
0: आसन
1: हाँ, अब बचते हैं हमारे पास 15 मिनट, तो सिंपल आसान आसनों में मैं कहूंगी कि आप कैट और डॉग का जो पोज होता है, अच्छा, उसको ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सामने की तरफ घुटने और हाथों को रख के आसमान की तरफ देखें, पीठ को गड्ढा करके और झुक के अपनी नाभि की तरफ देखें, इस तरह से एक आसन ये हो गया जो बहुत

जी है, और ये आपके शरीर को लचीला भी बनाता है। पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, इन सब में भी फायदेमंद है। थायराइड है, वहाँ भी फायदेमंद है। दूसरे अगर मैं आसान आसनों की बात

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरसंगम में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुन रहे थे राग मधमाद सारंग में। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे साबिर खान। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 1 बजा है। नीचे सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं सरिता भारती। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं ये शिव भजन।

आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोक रंग कलाकार हैं सरिता भारती। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद, जिसके लिए आइए शामिल होते हैं रांची की प्रसारण सभा में।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। एनटीए आज देश भर में नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए कर रही है मॉक ड्रिल। झारखंड में भी खास मुस्तैदी। रांची के नामकुम सैन्य अस्पताल में सेना और वायुसेना का 5 दिवसीय मेगा नेत्र शिविर संपन्न किया गया। 300 से अधिक सफल ऑपरेशन, रक्षा राज्य मंत्री ने सराहा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए 1 जुलाई से बंद हो जाएंगी विमान सेवाएं। देवघर दिल्ली नाइट फ्लाइट भी होगी निरस्त। राज्य में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। लोहरदगा में ट्रक की टक्कर से 3 भाई बहनों और गुमला में कार दुर्घटना में दूल्हे के पिता की मौत। और जमशेदपुर में टाटा स्टील ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप विजेता टीम के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोई को किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह मॉक ड्रिल की जा रही है। इधर नीट परीक्षा को लेकर रांची समेत राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तैयारी की गई है। रांची में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। इस बीच झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के SP को हाई अलर्ट जारी किया है। इसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और आसपास की फोटोकॉपी दुकानों, साइबर कैफे तथा कोचिंग सेंटरों की कड़ी निगरानी की जाएगी। उधर धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। धनबाद जिले में कुल 7 केंद्रों पर नीट की पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि नीट यूजी पुनर्परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: लास्ट बार भी नीट एग्जाम हुआ, बहुत फेयरली हुआ और हम लोग इस बार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे सेंटर्स में जो प्रोटोकॉल आया है NTA की तरफ से, कुछ गोपनीय प्रोटोकॉल भी है, वो सब फॉलो हम लोग कर रहे हैं। सेंटर्स बहुत ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ, फिर भी हम लोग सतर्क हैं और हम लोग की सभी पदाधिकारी सभी केंद्रों पर स्वयं जाकर एक बार विजिट करके देखेंगे कि कोई कमी नहीं रह जाए और त्रुटि रहित परीक्षा को इस बार निभाएंगे।
0: भारतीय सेना और वायुसेना ने रांची के नामकुम सैन्य अस्पताल में ऑपरेशन दृष्टि के तहत 9वें मेगा नेत्र चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया। 5 दिनों तक चले इस विशेष शिविर में 2500 से अधिक मरीजों की जांच की गई। एक रिपोर्ट।
2: रांची के सैन्य अस्पताल में आयोजित 9वें मेगा शिविर में आंखों की रोशनी लौटाने वाली 300 से अधिक जटिल सर्जिकल प्रक्रियाएं की गई, जिनमें 260 से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन शामिल हैं। इस मानवीय पहल का सीधा लाभ क्षेत्र के 100 से अधिक वंचित आदिवासी मरीजों को मिला। शिविर के समापन समारोह में पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सेना चिकित्सा कोर की सराहना करते हुए इसे सेवा परमो धर्म के संकल्प का जीवंत उदाहरण बताया। उन्होंने जानकारी दी कि ऑपरेशन दृष्टि के तहत अब तक देश भर में 75,000 से अधिक मरीजों की जांच और 3,000 से अधिक सफल सर्जरी की जा चुकी है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए 1 जुलाई से विमान सेवाएं बंद हो जाएंगी, जिनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की रांची हैदराबाद और रांची दिल्ली उड़ाने तथा इंडिगो की रांची कोलकाता और रांची हैदराबाद सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली की रात वाली फ्लाइट भी 1 जुलाई से बंद होगी, जबकि देवघर बंगलुरु फ्लाइट अब सिर्फ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही चलेगी, जो पहले प्रतिदिन उपलब्ध थी। गिरिडीह पहुंचे राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर केंद्र सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने पिछले 12 वर्षों को देश के लिए विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता का काल बताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X handle @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के शहीद चौक स्थित झारखंड राज्य सहकारी बैंक परिसर में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव की भव्य शुरुआत हो चुकी है। कल तक चलने वाले इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य राज्य के जनजातीय और ग्रामीण किसानों को सीधे शहरी बाजार उपलब्ध कराना है। नाबार्ड झारखंड के मुख्य महाप्रबंधक दीप माला घोष ने बताया कि जनजातीय विकास परियोजना के तहत 50,000 परिवारों की आजीविका को इस पहल से सुदृढ़ किया जा रहा है।
3: आम महोत्सव का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है तो बाजार से इनको जोड़ना है ताकि उनका बिक जाए, लेकिन यहाँ की जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो कंपनियां हैं जो कि मैंगो जूस, मैंगो पल्प या मैंगो रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनकी नजर में झारखंड आए कि यहाँ भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है और उनकी क्वालिटी गुणवत्ता बहुत जरूरी है, चाहे एक्सपोर्ट करना चाहे या उसको प्रोसेस करे।
0: लोहरदगा और गुमला जिलों में हुए 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। लोहरदगा के मिशन चौक के पास तेज रफ्तार बॉक्साइट ट्रक की चपेट में आने से शादी समारोह में जा रहे 3 सगे भाई बहनों की मौत हो गई। वहीं गुमला के पालकोट में बारात से लौट रही कार के पेड़ से टकराने से दूल्हे के पिता समेत 2 लोगों ने दम तोड़ दिया और 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कल यानी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य के सभी 24 जिलों में उत्साह का माहौल है। विस्तृत विवरण के साथ रांची से हमारी संवाददाता।
4: इस बार योग दिवस पर राज्य में एक विशेष व्यवस्था की गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के आदेशानुसार कल रविवार की छुट्टी होने के बावजूद राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल सामान्य कार्य दिवस की तरह खुलेंगे। इस सामूहिक आयोजन में प्रदेश के लगभग 50 लाख विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक साथ योग प्रोटोकॉल से जुड़ने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य के सभी ग्रामीण व शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष निःशुल्क योग शिविर लगाए जाएंगे, जहां प्रशिक्षित योग गुरु आम लोगों को सामान्य योग प्रोटोकॉल के तहत प्राणायाम और आसनों का अभ्यास कराएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। लातेहार के टाउन हॉल में आयोजित 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2026 का समापन हुआ। लातेहार जिला पुलिस की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। समापन समारोह में मौजूद पलामू प्रक्षेत्र के DIG किशोर कौशल ने कहा कि इस ड्यूटी मीट का मूल उद्देश्य पुलिस की पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देना है।
5: 3 दिवसीय पुलिस ड्यूटी मीट पे पलामू क्षेत्र की थी, उस समापन हुआ जिसमें कि तीनों जिले के हमारे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मीगण शामिल हुए। ड्यूटी मीट का उद्देश्य यही होता है कि जो पुलिस की पेशेवर दक्षता है वो किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो दोनों ने सीखा है, किस प्रकार से वो क्षेत्र में भी लागू कर पा रहे हैं।
0: टाटा स्टील ने जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी के कैडेट्स आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोई को मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए सम्मानित किया है। जापान के काकामिगाहारा में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर पूरे 10 साल बाद इस प्रतिष्ठित खिताब पर दोबारा कब्जा जमाया। और अब अंत में मुख्य समाचार। NTA आज देश भर में नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए कर रही है मॉक ड्रिल। झारखंड में भी खास मुस्तैदी। रांची के नामकोम सैन्य अस्पताल में सेना और वायुसेना का 5 दिवसीय मेगा नेत्र शिविर संपन्न किया गया। 300 से अधिक सफल ऑपरेशन रक्षा राज्य मंत्री ने सराहा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए 1 जुलाई से बंद हो जाएंगी विमान सेवाएं। देवघर दिल्ली नाइट फ्लाइट भी होगी निरस्त। राज्य में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। लोहरदगा में ट्रक की टक्कर से 3 भाई बहनों और गुमला में कार दुर्घटना में दूल्हे के पिता ने गंवाई जान। और जमशेदपुर में टाटा स्टील ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप विजेता टीम के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोई को किया सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग का शेष भाग। आज के हमारे कलाकार हैं सरिता भारती। कार्यक्रम के इस भाग में आइए सबसे पहले सुनते हैं ये झूमर।

आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज की हमारी कलाकार थी सरिता भारती। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक संताली पत्रिका कार्यक्रम जीवन झरना।

0: जितकर जितकर सिदो कन्हु हुल हुल गरिय मयामते संताल परगाना सिदो कन्हु हुल हुल गरिय मयामते संताल परगाना गुहा सकी रे उस्कूर हुल तिलक मंझी परगाना जो जीत जितकर जितकर जुम्मिद दाड़ी हो अरंग जितकर जितकर सिदो कन्हु हुल हुल गरिय मयामते संताल परगाना गुहा सखी रे उस्कूर हुल तिलक मंझी परगाना जो जीत जितकर जितकर जुम्मिद दाड़ी हो अरंग जितकर जितकर कलम दाड़ी दो साय के साय तारवारी खन हो दाड़ी कलम दाड़ी दो साय के साय तारवारी खन हो दाड़ी खियो पैसा ते जनम दिसम गनंग बनु हासा धुड़ी खियो पैसा हेड़ते हुयूर साँच रे उतकर जुमिद दाड़ी हो अड़ंग जितकर जितकर कलम दाड़ी दो साय के साय तारवारी खन हो दाड़ी खियो पैसा ते जनम दिसम गनम बनु हासा धुड़ी खियो पैसा हेड़ते हुयूर साँच रे उतकर जुमिद दाड़ी हो अड़ंग जितकर जितकर जितकर सीन चांदू निंद चांदू बार साबात बागे बार दिसंबर सीन चांदू निंद चांदू बार साबात बागे बार दिसंबर बैरी खतीर सार कपी सौता कलम कोले सुनर जनम दिसम गो परसी ओल चिकी जितकर जितकर जुमित दाड़ी हो अड़ंग जितकर जितकर सीन चांदू निंद चांदू बार साबात बागे बार दिसंबर बैरी खतीर सार कपी सौता सौता कलम कोले सुनर जनम दिसम गो परसी ओल चिकी जितकर जितकर जुमिन दाड़ी हो अड़ंग जितकर जितकर दोसारा अनोड़े तीन दो बजल डुंगरी दिसम गो अमा कुखी खोनगी हिमालय हिमाचल दिसम गो अमा कुखी खोनगी हिमालय हिमाचल धरती गो अमा कुखी खोनदो बुरु राजमहल तुआ दारी बजल डुंगरी कुखी कोन बीर बंटा बजल गो कुखी दाड़ी ते भारत दिसम फुरगल फुरगल दिसम गो अमा कुखी खोनगी हिमालय हिमांचल धरती गो अमा कुखी खोनदो बुरु राजमहल तुआ दारी बजल डुंगरी कुखी कोन बीर बंटा बजल गो कुखी दाड़ी ते भारत दिसम फुरगल फुरगल भारत दिसम झारखंड पनोत जिले गोड्डा भारत दिसम झारखंड पनोत जिले गोड्डा जति मार्शाल चय चंपा सोनोत ससांग बेडा बजल डुंगरिम होहयेत साप पे सार कपी खंडा भंडा भारत दिसम सधिन लगीद अतोयबुन मयाम गाडा भारत दिसम झारखंड पनोत जिले गोड्डा जति मार्शाल चे चंपा सोनोत ससांग बेडा बजल डुंगरिम होहयेत साप्पे सार कपी खंडा भंडा भारत दिसम सधिन लगीन अतुयबुन मयाम गंडा राजमहल राजमहल बुरु लुदाम बोलोक सुंदर पहाड़ी जनम हसागी धीरी दुलान हिहिड़ी पिपिड़ी बजल डुंगरी रेम लासेर लेद सार कपी तरवाड़ी बजला तिरिय अड़ंगते तोपागो सिहुड़ी जेल सिकड़ी राजमहल बुरु लुदाम बोलोक सुंदर पहाड़ी जनम दिस हसागी धीरी दुलान हिहिड़ी पिपिड़ी बजल डुंगरी रेम लासेर सार कपी तरवाड़ी बजला तिरिय अड़ंगते तोपागो सिहुड़ी जेल सिकड़ी दमिन सिमना आतु बरिस्टल कलहाजर दमिन सिमना आतु बरिस्टल कलहाजर बजल डुंगरी मिना हुल उइहर संताल हुल रेन हुल रसिक रायबार बीर बंटा बजल बाम सहावलेत नाहचार दमिन सिमना आतु बरिस्टल कलहाजर बजल डुंगरी मिना हुल उइहर संताल हुल रेन हुल रसिक रायबार बीर बंटा बजल बाम सहावलेत नाहचार नाहचार गोबोलते पेरेज अंग्रेज शासन नाहचार गोबोलते पेरेज अंग्रेज शासन जिल जांग हडाब लगीद कोचलोन पुलिस गांजोन हेलेज लिदियाम रूपू सिंह तामोली चिंपस महाजन बीर बजल उटी उटी समा कातेम सोत किदा वेरहन नाहचार गोबोलते पेरेज अंग्रेज शासन जिल जांग हडाब लगीद कोचलोन पुलिस गांजोन हेलेज लिदियाम रूपू सिंह तामोली चिंपस महाजन बीर बजल उटी उटी समा कातेम सोत दा बेरहन हुल हुलगरिय मिद ठोप मयाम ते भर हुल हुलगरिय मिद ठोप मयाम ते भर बजल डुंगरिम उदुल लेत सधिन हर सिधो कनु हुल मयाम ते संताल दिसम चेहर बेहर বীর বজল আতংমে হুল জুহার আর বিনতি নেহর হুল হুলগরিয় মিথ মায়ামতে ভর বজল ডুংরিম উদুক লেত সধীন হর সিদো কানহু হুল মায়ামতে সন্তাল দিশম চেহর বেহর বীর বজল আতংমে হুল জুহার আর বিনতি নেহর হুল জুহার আর বিনতি নেহর
1: অনড়হে বন আঞ্জম কিদা মানুতান মঞ্চন হাসদা সে খন সেরিং বন আঞ্জমা ববিতা মুরমু আর সাউতেন কোয়া সাজাও সাপড়াও রে নোয়া

आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक संताली पत्रिका कार्यक्रम जीवन झरना, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। आइए शामिल होते हैं पटना के प्रसारण सभा में प्रादेशिक समाचारों के लिए।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। अब से कुछ देर बाद पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम से श्री मोदी 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि अंतरित की जाएगी। इस अवसर पर पटना के बामेती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत राज्य के प्रमुख केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसे लेकर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा के मद्देनजर बेली रोड पर मेट्रो कार्य के लिए आज से प्रस्तावित ट्रैफिक ट्रायल भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इधर राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग विशेष बसों का परिचालन करेगा। साथ ही रेलवे की ओर से नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए कल विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होकर नेतृत्व प्रदान करेंगे। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में भी योग शिविरों और योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल होंगे। वहीं प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में भी योगाभ्यास सत्र का आयोजन होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2026 के तहत यह अनुशंसा की गई है। गोपालगंज निवासी मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने कई अहम मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। शेखपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले वायरल वीडियो के मामले में आरोपी युवक को कुसुम्बा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र से रफीगंज गोह मुख्य मार्ग पर पिकअप वैन और ऑटो रिक्शा की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। अररिया जिला अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए LIA की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला प्रशासन, SSB और अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप तस्नीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज PM किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की रकम जारी करेंगे। अब से कुछ देर बाद मगरबी बंगाल के हुगली में मुनाकिद प्रोग्राम से जनाब मोदी 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में DBT के जरिए 18,880 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम मुंतकिल करेंगे। बिहार के 73,00,000 से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में इस स्कीम की रकम मुंतकिल की जाएगी। इस मौके पर पटना के बामिती ऑडिटोरियम में मुनाकिद होने वाली तकरीब में वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत कई मौजूद शख्सियात मौजूद रहेंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कल होने वाले NEET UG री एग्ज़ाम से कबल आज कौमी सतह के मॉक ड्रिल का इनेकाद कर रहा है। इम्तहान से कबल मियारी तैयारी के जायजा के लिए ये मश्क किया जा रहा है। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत रियासत के अहम मराकज पर इम्तहान का इनेकाद का कबल अज वक्त मश्क किया जा रहा है। इसके पेश नज़र ट्रैफिक निज़ाम में भी तब्दीली की गई है। नीट री एग्ज़ाम के लिए रियासत के 34 अजला में 331 मरकज बनाए गए हैं। इम्तहान में 1,56,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों के शरीक होने का इम्कान है। इम्तहान के मद्देनज़र बेली रोड पर मेट्रो काम के लिए आज से मुजवजा ट्रैफिक ट्रायल भी फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है। इधर रियासती हुकूमत ने बदनवानी से पाक माहौल में इम्तहान मुनाकिद कराने के लिए हिफाजत के बेहतर इंतजाम किए हैं। इम्तहान दहिंदगान की सहूलत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट खसूसी बसें चलाएगा। साथ ही रेलवे की जानिब से कल नीट इम्तहान उम्मीदवारों के लिए खसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 12वें बैन अल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर कल मुल्क भर में मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में बैन अल-अक़वामी यौम योगा के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगी। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोलकाता में मुनक़द होने वाली मरकज़ी तकरीब में क़यादत करेंगे। इस साल यौम योगा का थीम है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा। राजधानी पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में योगा कैंप और योगा बेदारी के प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक़द होने वाली मरकज़ी तकरीब में वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत रियासती काबीना के कई अरकान शरीक होंगे। वहीं रियासत के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी योगा की मशक के सेशन का इनेकाद किया जाएगा। राजधानी पटना समेत रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भभुआ, भोजपुर और बक्सर अजला में लू चलने के इम्कान के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आज रियासत के शुमाल और जनूब मशरक़ी हिस्सों में कुछ मकामात पर तेज़ आंधी के साथ बारिश हो सकती है। शेखपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर असलाह लहराने वाले वायरल वीडियो के मामले में मुलविस मुलजिम नौजवान को कुसुम्भा थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। औरंगाबाद ज़िला के रफ़ीगंज थाना इलाके में रफ़ीगंज गोह शाहराह पर पिकअप वैन और ऑटो रिक्शा के दरमियान होने वाले तसादुम में दो अफराद हलाक हो गए, जबकि दो दीगर ज़ख्मी हुए हैं। अररिया ज़िला के सरहदी इलाकों में अमन व अमान और सिक्योरिटी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए LIU का एक इजलास मुनक़द किया गया। इसमें ज़िला इंतज़ामिया SSB और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान ने शिरकत की। इसके साथ ही इलाकाई ख़बरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

0: लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब के डंडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवती परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कामाख्या का कॉरिडोर बनना है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 2,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन,

0: और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र चालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाइब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों से कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कल और देश के उत्तर पूर्व हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने फिक्स डोज नेशन दवाओं के उत्पादन बिक्री वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। इस कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेमिसाल का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: लीजिए अब सुनिए फिल्म काला पत्थर का गीत, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मेरा साया से। आवाज है लता मंगेशकर की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जोली फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार से।

0: सुना है तुमने तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
4: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
6: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में फिल्म जंगली का ये गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको राजस्थानी लोक संगीत सुनवा रहे हैं। आज के हमारे कलाकार हैं डूंगर राम भाट और साथी। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं कुछ मांड।

आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको राजस्थानी लोक संगीत सुनवाया। कलाकार थे डूंगर राम भाट और साथी। इसी के साथ प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। डीजे सुनिए देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत मीडियम वेव 205.7 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:25 हो चुके हैं। अब से लेकर दोपहर बाद के 3:54 तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इसके लिए आइए शामिल होते हैं विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं और मैं अब झूठ मूठ चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ?
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश।
0: हाँ?
1: आहिस्ता इधर इस तरफ।
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी। हमारे यहाँ पहुंचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जाओ आगे।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
3: जुडू, बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
4: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी?
3: नहीं, फिलिप्स गलत इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
4: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
3: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
4: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
5: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
3: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ?
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
3: ठहरो।
0: हाँ?
3: कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
3: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से। और अब इस सांझ ठेले तक?
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
4: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग? नहीं तो, नहीं देखी।
3: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
3: हाँ हाँ, जाओगी?
0: जी।
3: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
3: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइश की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
3: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे?
4: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कभी नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं?
3: हाँ जाओ जाओ।
4: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
3: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
4: ओह,

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। माँ,
1: क्यों रे बेंट, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूँ माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास, कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास, इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है, हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: ओ राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मालवीय की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे अब छोड़ भी, पागल कहीं का।
2: मासी,
0: जीनी,
1: आ बेटी अंदर आ जा, बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे?

0: है ना?
1: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बैंक से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
0: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
1: जी अच्छा।
2: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
1: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
2: अच्छा, होगी कोई?
1: हाँ?

0: क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में। यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला। रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
1: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
1: हाँ
0: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
1: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
1: कुछ भी नहीं समझते।
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
1: सारी बातें मुंह से कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
1: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
1: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ ला देना। मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जिनी।
1: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जिनी।
1: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिनी हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही हैं।
1: अच्छा, तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: हाँ मौसी हो गई।
2: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है, जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: चरित्र। विल यू स्टॉप टू डू?
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन, मैं तो
1: कुछ नहीं जानते। तुम उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और उन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी गलत है। बेंजामिन मोलाइज भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं, इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप स्लेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत? तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो। कॉलिक

0: का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
1: ओके सर।
0: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों, सारा कुछ जलाकर राख का डालूंगा। कमान चढ़ो।
1: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूँ बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंच?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बापू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसकी कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझ में इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी।
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
1: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग, गुप्त समिति?
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
0: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
3: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
3: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उइसिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
0: कौन? कौन हो सकता है?
4: कौन है?
0: अरे, ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
2: अरे, कैसे हुआ ऐसा?
0: क्या बात है?
2: क्या हुआ?
0: खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने? यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया। चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दलबल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
2: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं कुछ ही दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
2: ठहरिए, पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
0: बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
0: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए,
6: पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
2: बापू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
6: अच्छा, आता हूं।
7: हैंड्स अप!
0: आप लोग
7: जुलूम अंदर देखो, ये जल्दी, क्विक, कहां है ये सब?
8: तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
6: जी हाँ सर।
8: ये कौन है? सर, लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
0: जी, जेम्स पिस्से।
9: वाले का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
6: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
8: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहां गया?
6: यहां तो कोई भी नहीं आया सर।
8: शट अप! झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
9: नहीं सर, कोई नहीं है।
0: मैं सच कह रहा हूं सर।
10: माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी पश्चिम बंगाल जिला के तारकेश्वर आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और साथ ही में कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 30वीं किस्त भी जारी करेंगे।

0: आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23 किस्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद एक अलग राज्य के रूप में हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले बाबा धाम या शिव शहर भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ में माननीय महोदय प्रधानमंत्री किसान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: सिद्धार्थ, ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स of the country, a Bikasit Bengal, a Bikasit Bharat, a developed Bengal, a developed India, the resolve of the country, a Bikasit Bharat, a developed India 2047, to make the lives of the people of our nation safe, successful and sustainable, to help and assist our brothers and sisters with their lives they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Ki, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also a special day because it was this day that the West Bengal state was founded from Tarkeshwar, located in Delhi district. Bengal. The event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly to the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the Prime Minister to the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा की संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री और जिसकी बात चल रही है ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज की अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसान बैंक में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात यहाँ की है कि इस किस्त से 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं वैभव या शक्तिकरण की बात करते भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 40 लाख से अधिक भारतीयों के खातों में 900 करोड़ रुपए की राशि जारी जा रही है जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहाँ पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में

0: योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double or triple, when the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in the execution, to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Minister of Punjab Raj, Fisheries, Animal Husbandry, Herring, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of State for Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests, and Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country, district and block levels, Gram Panchayat levels, with the support of the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the neck. They are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister come true.
0: बिल्कुल वैभव ने कहा कि जो मानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब कुछ ही देर सभा को भी संबोधित करेंगे और यहां तारकेश्वर गणमान अतिथियों के साथ विशाल प्रधानमंत्री जी सुनने और एक लक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि आपने कहा कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रवि, बंगाल के माननीय अधिकारी, पंचायती राज एवं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना साधारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री अश्विनी वैश्व, पथ परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शंतनु सहित कई अन्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: एब्सोल्युटली टू सी दीस मिनिस्टर्स दैट द पीपल वेट फॉर एंड पीपल हैव एक्चुअली वोटेड फॉर दीस for these ministers who will be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the benefit that is being transferred. It's not just the fact that the premier had made a vow, he had made a promise, and that promise is coming alive. That promise is, you know, moving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We, as a people, we are going towards the fact that we have make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect the main event by conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, the KVKs, IAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, primary agricultural cooperative society and state district, Gram Panchayat level, village level functions, release of the 23rd. Total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crores in inception on the 24th of February 2018. So we have to agree with the fact that yes, everything that might be happening around this promise never loses its importance.
0: So, we will start the conversation with you in English.

0: out all three points. And that's the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओ, हम लोग आपको से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय पहुंचे हैं। सभी को बेसब्री से इंतजार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। यह दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व। डॉक्टर प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाग की रूपरेखा और निर्णय से सभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव टू मेक इंडिया a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
2: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise. We see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.3 1.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
2: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है। और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है, ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Sri Suvindu Adhikari, people craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान निधि, द 23rd इंस्टॉलमेंट बीइंग डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड अ कॉन्फिडेंट हैंडशेक। Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: जी हाँ प्रधानमंत्री अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों

0: के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे, तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद

बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए, उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि

जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया।

जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ
सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन, और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट मानी शेष काज शुरू हो गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग,

0: अलीपुरद्वार और जारगाम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो, आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।
3: ఇంతవరకు గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి చేతుల మీదుగా 23వ విడత పీఎం కిసాన్ నిధుల విడుదల కార్యక్రమం ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే విన్నారు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ఇప్పుడు ఒక గీతం వింటారు.

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 5:39 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: कार्यक्रम का अगला गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में है, फिल्म है अंदाज़।

0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे और अब कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज की सभा में अब से थोड़ी ही देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण बंधुओं का कार्यक्रम होगा, ग्राम जगत खेती गृहस्थी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको शिवशंकर सिंह पारिजात की वार्ता सुनवाएंगे अंग क्षेत्र के पर्यटन स्थल। साथ ही किसान भाई राजेश कुमार से पशुओं में कृमि एवं बचाव विषय पर वार्ता सुनेंगे। शाम 7:10 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा, कलाकार होंगे कन्हाई प्रसाद गुप्ता। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज की कलाकार होंगी कुमारी सुवर्णा घोष। रात्रि 8 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र भारती, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आज आप ठुमरी और दादरा गायन का आनंद ले सकेंगे।

श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम, और अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल की सभा सुबह 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम के साथ आरंभ होगी। 6:05 पर आप सुनते हैं चिंतन मनन। 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना। कल सुबह 6:40 से आप सुनेंगे 12वें योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में एक साथ सामूहिक योग के समारोह का रेड रोड कोलकाता से सीधा प्रसारण। 7 से लेकर 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम में कल हम आपको सुशील कुमार ठाकुर के गाए कुछ गीत और भजन सुनवाएंगे। साथ ही साथ आप सुनेंगे मनीषा भारती की वार्ता, आधुनिक जीवन में योग की उपादेयता। 9:30 पर बच्चों का कार्यक्रम होगा बाल मंजूषा। 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में कल कलाकार होंगी रूपा सिंह। 11 फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं आप। 12 आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान वाणी। 12:30 पर सुर संगम की कलाकार होंगी गिरिजा देवी। इनका गायन आप सुनेंगे राग देवगंधार में। 1 लोकरंग कार्यक्रम में हम आपको गोपाल भगत के गाए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। 1:30 पर सुनिए अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण। और 2:30 पर फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम होगा फोन इन आपकी पसंद। शाम 5 युवा श्रोताओं का कार्यक्रम लेकर आते हैं हम युववाणी। 6 ग्रामीण बंधुओं का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 हैं, प्रस्तुत है ग्रामीण बंधुओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शंकर का नमस्कार
1: और सबका मन्नुक भी नमस्कार, अपनों को भी नमस्कार हो मन्नु भाई, शंकर भाई
0: नमस्कार। नमस्कार मन्नु भाई, कहिए कैसे हैं आप?
1: सब कुशल मंगल छौ, अपना सुनाबो।
0: बस सब चीज ठीक ठाक है, चला जा रहा है, लेकिन इस जेठ की चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से थोड़ी परेशानी तो हो रही है मनु भाई, पर प्रकृति और मौसम के आगे भला किसका चला है। ऐसे समय में हम सब अपना अपना कामकाज बड़ी सतर्कता पूर्वक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए करें तो इसी में भलाई है।
1: एकदम सही बात,
0: क्योंकि धूप के समय में हम लोगों को खास करके इन बातों का ध्यान रखना चाहिए मनु भाई, कि घर से जब भी बाहर निकलें तो अपने जरूरी कामों से ही निकलना पड़े तब निकलें, और जब निकलें तो साथ में एक गमछी, दुपट्टा, छाता, पानी का बोतल जरूर ले लेना चाहिए।
1: हाँ।
0: और जहां तक हो सके पूरे शरीर को सूती कपड़े से ढक लेना चाहिए, कहने का मतलब सूती कपड़ा पहनना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम सभी किसान हैं, खेतीबाड़ी के लिए तो हम लोग को निकलना ही पड़ता है बाहर, और खेतीबाड़ी के साथ साथ हम लोग पशुपालन भी करते हैं तो अपने पशुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। घर के पालतू पशु जो हैं उन्हें ठंडे जगहों पर बांधना चाहिए, समय समय पर पानी पिलाते रहना चाहिए, और हवादार वृक्षों के नीचे या यत्र जहाँ भी जो घर का जगह हो वहाँ पर ही बांधना चाहिए, ताकि वो भी खुशहाल जिंदगी जी सके।
1: एकदम सही बात कहलो शंकर भाई। देखो गर्मी के मौसम चारो एम जे छे आदमी से लेकर जानवर तक जे पालतू पशु खास करी छे ओकरा ध्यान देना बहुत जरूरी छे, कहना गर्मी में अखनी तो ज्यादा उमस वाला गर्मी छे आ धूप भी छे, ये वास्ते बची के रहना चाहिए, जे मौसमी साग सब्जी छे ओकरा जरूर खाना चाहिए, और गर्मी से जे बचाए वास्ते अपने कह लो सूती कपड़ा से पूरा शरीर ढकना चाहिए, पानी साथ में रखना चाहिए, जहाँ बाहर निकले आवश्यकता पड़े होना तो बाहर नहीं निकल तो अच्छा छे, जो को आवश्यक काम पड़ी गए तो धूप में निकलो, वरना घरों में सचेत से रह और मौसमी सब्जी खा फल खा और स्वस्थ रह और अपना पशु के भी आवश्यक सावधानी से रखो।
0: बिल्कुल मन्नू भाई, आज 20 जून है मन्नू भाई, और आज के दिन को हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस और विश्व उत्पादकता दिवस के तौर पे मनाते हैं।
1: जी जी।
0: तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में। तो इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 2000 ईस्वी में 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन की 50वीं सालगिरह पर इसे घोषित किया।
1: जी जी जी।
0: इस वर्ष यानी कि 2026 की शरणार्थी दिवस का थीम है मनो भाई कि शरणार्थियों के साथ एकजुटता। कहने का मतलब है कि युद्ध और हिंसा से भागे लोगों को सिर्फ खाना कपड़ा नहीं, सम्मान और मौका भी मिलना चाहिए।
1: मिलना चाहिए सही।
0: सवाल है आखिर कि कौन और क्यों बनता है शरणार्थी? तो इंसान जिसे अपने देश में युद्ध, हिंसा, धार्मिक या नस्ली भेदभाव के कारण जान बचाकर भागना पड़ता है,
1: जी जी।
0: वो अपना घर, खेती बाड़ी, नौकरी सब कुछ छोड़कर चल देता है सिर्फ जिंदा रहने की उम्मीद पर। इन्हें ही शरणार्थी कहते हैं।
1: जी।
0: इस प्रकार UNCHCR के अनुसार दुनिया में लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेवजह जबरदस्ती विस्थापित हैं, जिनमें 4.3 करोड़ लोग मनोभाई शरणार्थी हैं।
1: जी जी।
0: यानी कि हर 2 सेकेंड में एक इंसान को शरणार्थी बनना पड़ता है। युद्ध हो या संघर्ष की बात हो या फिर जलवायु संकट या फिर उत्पीड़न की बात हो, तो इन सारे कारणों से पड़ोसी देश उठाते हैं इनका बोझ। लगभग 70% शरणार्थी अपने देश के पड़ोसी देशों में शरण लेते हैं।
1: जी जी।
0: जैसे सीरिया के लोग तुर्की लेबनान में, रोहिंग्या के लोग बांग्लादेश में, और यूक्रेन के लोग पोलैंड में।
1: जी जी।
0: तो शरणार्थियों की सबसे बड़ी परेशानी ये है मन्नू भाई कि उसके पास कोई पहचान नहीं होता।
1: पहचान नहीं चाहिए।
0: और जब पहचान नहीं होता तो उन्हें पढ़ाई लिखाई, बोटिंग, इलाज, नौकरी हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
1: एकदम करल पड़े छे।
0: और कैंप जीवन बिताते हुए नरक भरी जिंदगी जीने को मजबूर, बेइज्जती को झेलते हुए जीना पड़ता है उन्हें। इसलिए यदि हम कोई शरणार्थी को देखें कि ये हुनरमंद हैं तो उन्हें हमें जरूर समझना चाहिए और उन्हें एक अच्छी रोजगार के लिए मौका देना चाहिए। हाँ। बल्कि उनके हुनर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जागरूक होना हम सबों के लिए बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर शरणार्थियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली पोस्ट शेयर से बचना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अपने शहर में जो शरणार्थी बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई में मदद करनी चाहिए।
1: हाँ।
0: क्योंकि शिक्षा ही उनकी भविष्य है।
1: जी जी।
0: और रही बात अब आज के विश्व उत्पादकता दिवस की, तो ये भी आज मनाते हैं हम लोग। इसकी शुरुआत 1958 ईस्वी में जापान में हुआ था और भारत एपो का संस्थापक सदस्य है। मतलब उत्पादकता के लिए नवाचार, कम समय में कम संसाधन से ज्यादा और बेहतर काम करना ही असली उत्पादकता है।
1: जी जी,
0: कहने का मतलब है कि कम पैसा लगा, कम पूंजी लगी और समय भी कम लगा और परिणाम बहुत ही अच्छा आया।
1: हाँ हाँ।
0: तो आलसी बैठना नहीं, फालतू मेहनत भी नहीं,
1: जी जी,
0: स्मार्ट काम करना। किसान एक एकड़ में 10 क्विंटल ले या 20 क्विंटल, सिर्फ फर्क उत्पादकता का है।
1: जी जी,
0: जनसंख्या का दबाव देखिए, आज के समय में 140 करोड़ लोग, कम उत्पादन यानी कि महंगाई और ज्यादा उत्पादन यानी कि समृद्धि। दुनिया को सस्ता और क्वालिटी वाला सामान तभी दे पाएंगे जब उत्पादकता ज्यादा होगी।
1: जी जी,
0: और फैक्ट्री की उत्पादकता तभी बढ़ेगी जब नई फैक्ट्री लगेगी, नई नई मशीनें लगेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी के चीज आएंगे।

0: जी जी
1: हम पढ़ाई करेंगे उस तरह से काम करेंगे तभी यह संभव है। तो भारत की लेबर उत्पादकता अमेरिका में से 6 गुना कम है, इसे बढ़ाना ही विकास समझा जाता है और विकास माना जाएगा। जैसे मैंने अभी बात की मनोभाई पुराने मशीनों की, तो किसान पुराने हल से, मजदूर पुराने औजार से काम करे तो कितना प्रोडक्शन हो सकता है। अब वो समय नहीं रहा, इसलिए आज मशीनी युग है, तकनीकी का युग है, काम तो आता है पर तरीका नहीं, तो उसके लिए ट्रेनिंग करना जरूरी है, शिक्षा लेना जरूरी है। और ऑफिस में बैठ के चाय गपशप मोबाइल कॉल में 3 घंटे चले जाते हैं, लेकिन समय की बर्बादी हो रही है। अरे भाई, काम करने आए तो काम कीजिए, तरीके से कीजिए, है ना। तो इन सारी चीजों पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बिजली पानी की कटौती की भी जरूरत है, मशीन चलेगी ही नहीं तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। तो बिजली को इस तरह से प्रयोग में लाएं, पानी को इस तरह से प्रयोग में लाएं ताकि उसकी बर्बादी ना हो। अब कहीं कहीं देखा जाता है कि नल खुला है, कोई देखने वाला नहीं। अरे कम से कम यदि नजर हमारी पड़ गई तो अगल बगल वाले को हम लोग बोल ही सकते हैं, भैया जरा इसे बंद कर दो।
0: हाँ, सही सही।
1: हम घर में काम कर रहे हैं या मान लीजिए नहाने गए, बाथरूम झरना खोल के बैठ गए हैं, ऐसा ना करें। 20 लीटर पानी में स्नान किया जा सकता है,
0: जी जी।
1: तो क्यों 100 लीटर 200 लीटर बर्बाद कर रहे हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी हमारा काम आगे चल सकता है और जल्दीबाजी और कम खर्च हो सकता है। चलिए हम लोग कार्यक्रम में और आगे इसी तरह से बात करेंगे अपने श्रोताओं के साथ। और आइए अब सुनते हैं एक लोक भजन।
0: हाँ।

0: हाँ शंकर भाई गजब एकदम बहुत सुंदर दशरथ के चारों ललनवा इतना सुंदर आपने लोक भजन सुनेला।
1: हाँ मनु भाई विवाह शादी जनेऊ का समय चल रहा है तो हमारी इच्छा हुई कि थोड़ा आज जनेऊ का गीत सुन लें
0: जी जी।
1: और देखिए मनु भाई अपने अंग क्षेत्र में भी एक से एक घूमने के स्थल हैं, घूमने के जगह हैं
0: जी जी।
1: इन गर्मी छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमे?
0: हम तो विक्रमशिला गए छलिए।
1: अच्छा
0: और जैन मंदिर भी घूम लिया।
1: वाह वाह
0: दो जगह। और मंदार पर्वत भी गेलिय। नया झूला लगलो झूला लिया हो जे पैसा दे कर पहाड़ चढ़े छे ना हो झूला लिया तो गर्मी छुट्टी एकदम बड़ा अच्छा से बितेलिया तीन तीन जगह घूमल छिया। और देखो एकरो अलावा भी भागलपुर के आसपास जे छे अपने जिकरा अंग क्षेत्र कहे छे ढेर ढेर छे पर्यटन स्थल वहाँ हमरा सिंह जाना चाहिए बच्चा बुतरू भी ले जाना चाहिए ताकि बच्चा बुतरू जे छे अपनो प्रदेश अपनो अंग क्षेत्र के जे महत्व छे पर्यटन स्थल के जे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छे ओकरो बारे में जानकारी प्राप्त हुआ छे कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: तो हमरा लगे छौ कि अपने कुछ विशेष सुनाना चाहे छौ श्रोता भाई बहनी का?
1: बिल्कुल बिल्कुल हम सुनाना चाहते हैं अपने श्रोताओं को तो आइए।

0: इस विषय पर एक हम लोग पूर्व प्रसारित वार्ता सुनते हैं,
1: जी जी
0: अंग क्षेत्र के पर्यटन स्थल।
1: आरो जानकारी दे रहे छे श्री शिव शंकर सिंह परिजात ने। अब सुने छेटा वार्ता।
2: जगदलपुर मुंगेर और संथाल परगना प्रमंडल का पूरा प्रक्षेत्र तथा इसके आसपास का इलाका प्राचीन काल में अंग देश के नाम से विख्यात था। भले ही समय के अंतराल में इसका गरिमा में इतिहास विस्मित सा होता जा रहा है, पर इसकी समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक व लोक परंपराओं से जुड़े पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र हैं। वहीं इसकी पुरातन गौरव गाथा का बखान करते से नजर आ रहे हैं। ऐतिहासिक नगरी चंपा, भागलपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंपा प्राचीन अंग देश की राजधानी चंपा नगरी थी, जिसकी गणना बौद्ध काल के प्रमुख 16 महाजनपदों में होती थी। अंग के साथ महाभारत कालीन योद्धा कर्ण का नाम जुड़ा हुआ। चंपक के सुगंधित वृक्षों से आच्छादित यह इलाका सुख समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण था। अपने उत्कृष्ट रेशमी वस्त्र उत्पादों के कारण सिल्क सिटी के नाम से विख्यात था। गंगा तट पर बसी इस पावन भूमि के व्यापारी चंपा नदी के मार्ग से विदेशी व्यापार करते थे। यहाँ के पुरातात्विक धरोहर आज भी आकर्षण के केंद्र हैं। विक्रमशिला बौद्ध महाविहार, भागलपुर जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर की दूरी पर कहलगांव अनुमंडल के अंतिचक गांव में स्थित विक्रमशिला बौद्ध महाविहार का भारतीय धर्म, इतिहास और संस्कृति में महती योगदान रहा है। 8वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित यह बौद्ध महाविहार करीब 4 शताब्दियों तक ज्ञान के एक उन्नत प्रकाश स्तंभ के रूप में दीप्यमान रहा और एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, विज्ञान, कला एवं संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित रहा, जो अपने आप में नालंदा और ओदंतपुरी विश्वविद्यालयों की तरह आज के कैम्ब्रिज व ऑक्सफोर्ड से कहीं अधिक उन्नत तथा महत्वपूर्ण था। विक्रमशिला धरोहर स्थल और यहाँ पर ASI के संग्रहालय में संग्रहित खुदाई से प्राप्त महत्वपूर्ण पुरा सामग्रियां आकर्षण के केंद्र हैं। सुल्तानगंज का अजगैवीनाथ धाम, भागलपुर से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम की प्रसिद्धि देश विदेश में है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष लगातार 1 महीने तक चलने वाला श्रावणी मेला यहीं की पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा के तट से प्रारंभ होता है। यहाँ से लाखों केसरिया वस्त्रधारी शिव भक्तगण अपने कांवरों में जल लेकर बोलबम की रट लगाते हुए 105 किलोमीटर की साधना युक्त पैदल यात्रा कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु इसे देवघर स्थित बैद्यनाथ द्वादश लिंग पर अर्पित करते हैं। यहाँ की अजगैवी एवं मुरली पहाड़ियों पर अर्धनारीश्वर, शेष साई विष्णु, चतुर्भुज व गरुड़ासन विष्णु, हरिहर, रेवंत, ब्रह्मा, सूर्य, शिव, पार्वती की उत्कीर्ण प्राचीन मूर्तियां यहाँ की धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्ता को स्थापित करती हैं। बटेश्वर स्थान, कहलगांव में विक्रमशिला महाविहार के निकट पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे पत्रघट्टा की पहाड़ी पर स्थित बटेश्वर स्थान एक प्राचीन देवस्थल है, जो सदियों से अपने शिव मंदिर, पुराकालीन गुफाओं, पुरातात्विक अवशेषों, मूर्तियों, चैत्यों, प्रस्तर फलकों और प्राकृतिक सुषमाओं के कारण सैलानियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। ऐसी मान्यता है कि वशिष्ठ मुनि ने इस स्थान पर तप साधना की थी, जिसके कारण यहाँ पर स्थापित शिवलिंग की प्रसिद्धि वशिष्ठेश्वर अथवा बटेश्वर महादेव के नाम से हुई। चंपानगर का जैन मंदिर, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज की जन्म एवं पंच कल्याणक स्थली होने के कारण भागलपुर नगर से 4 किलोमीटर पश्चिम स्थित चंपानगर का जैन मंदिर धर्मावलंबियों के लिए अत्यधिक महत्व है। इसके परिदर्शन के बिना उनकी धर्म यात्रा अधूरी मानी जाती है। विशिष्ट शैली में आकर्षक गुमजों संयुक्त यहाँ का भव्य जैन श्वेतांबर मंदिर, बारीक मीनाकारी से सज्जित शीश महल युक्त दिगंबर जैन मंदिर, मान स्तंभ, भगवान वासुपूज की विशाल खड़गासन में नवनिर्मित प्रस्तर प्रतिमा आदि न सिर्फ जैनियों के लिए परंतु सभी दर्शनार्थियों व पर्यटकों के लिए आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र है। बौसी का मंदार पर्वत, मंदार पर्वत भागलपुर से 50 किलोमीटर दक्षिण भागलपुर हसदिया मार्ग पर अवस्थित है, जिसका बिहार के धार्मिक सांस्कृतिक नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान है। मनोरम प्राकृतिक परिवेश के मध्य स्थित काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित करीब 700 फीट ऊंचे इस मंदराचल पर्वत के बारे में मान्यता है कि पौराणिक समुद्र मंथन में इसे मथानी के रूप में प्रयुक्त किया गया था और बासुकीनाथ नाग की नीति बनाई गई थी। मंदार के शिलाखंडों पर उत्कीर्ण भगवान नरसिंह, बावन अवतार, महासंघ, चक्र, हिरण्यन कश्यप वध, मधु असुर आदि की मूर्तियां इसके धार्मिक पौराणिक महत्व के साथ पुरातात्विक महत्व को उजागर करती हैं। 12वें जैन तीर्थंकर वासुपूज्य की निर्माण स्थली होने के कारण हिंदुओं के साथ साथ जैनियों के लिए भी इसका महत्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ प्रतिवर्ष विराट मेला लगता है। चंपानगर का विषहरी मंदिर, ऐसी लोक मान्यता है कि अंग जनपद की सुप्रसिद्ध बिहुला विषहरी की गाथा चंपानगरी में घटित हुई है, जिसका साक्षी आज भी यहाँ पर स्थित पुरातन विषहरी मंदिर दे रहा है। यह गाथा भगवान शंकर की मानस पुत्री देवी मनसा विषहरी और चंपानगर के हठी शिव भक्त चांदो सौदागर के संघर्षों की कहानी है, जो अपनी पुत्र वधु बिहुला के प्रयासों से मनसा की पूजा हेतु अंततः तैयार होते हैं। आज भी प्रत्येक वर्ष भाद्र मास में समस्त अंग जनपद में बिहुला विषहरी की पूजा धूमधाम से मनाई जाती है तथा चंपानगर के विषहरी मंदिर में विशेष अनुष्ठान के साथ विशाल मेला लगता है। बरारी सीढ़ी घाट का राधा कृष्ण मंदिर, नगर के बरारी गंगा तट पर सीढ़ी घाट के निकट टेम्पल रोड पर स्थित राधा कृष्ण मंदिर वास्तु शिल्प का एक अनूठा नमूना है, जो अपने निर्माण के 112 वर्ष बाद भी किसी का भी ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मीनारों, गुम्बदों व विशाल प्रवेश द्वारों से युक्त यह मंदिर विक्रमशिला सेतु से देखने पर पानी में तैरते किसी महल की तरह लगता है। तिल्हा कोठी, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के नीचे के निकट एक ऊंचे टीले पर स्थित तिल्हा कोठी शहर के नायाब भवनों में से एक है। इटालियन शैली में बने इस खूबसूरत भवन में भागलपुर के पहले कलेक्टर क्लीवलैंड का निवास था, इस कारण यह क्लीवलैंड हाउस के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने भागलपुर प्रवास के दौरान यहाँ अवस्थान किए थे तथा यहाँ पर अपनी विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि की कुछ एक पंक्तियाँ भी लिखी थीं। क्लीवलैंड मेमोरियल, यह मेमोरियल शहर के तिलकामांझी चौक से नगर निगम की ओर जाने वाली सड़क पर तिलकामांझी चौक से चंद कदम आगे बाईं ओर स्थित है, जो भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड का है, जिनकी मृत्यु 29 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। एक कुशल प्रशासक होने के कारण क्लीवलैंड की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल के आदेश से तिल्हाकोठी स्थित इनके आवास के सामने बनाए गए स्मारक के अलावा एक दूसरा स्मारक इनके प्रशंसकों व स्थानीय जमींदारों ने 1786 में तिलकामांझी चौक के पास बनाया था, जो अपनी वास्तुकला के कारण आकर्षण का केंद्र है। खानकाह सहबाजिया, यह स्थल भागलपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिम मौलनाचक मोहल्ले में रेल लाइन के बगल में स्थित है। खानकाह जहाँ न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग भी आकर जियारत करते हैं तथा भेंट चढ़ाते हैं। यहाँ हजरत पैगंबर मोहम्मद के वंशज व बुखारा शरीफ के सादात घराने के हजरत मौलाना शहबाज मोहम्मद का आस्ताना है, जिसके शाही मस्जिद और मदरसा अपने दामन में कई धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यादों को समेटे हुए हैं। फतेह जंग का मकबरा,

0: और खास वास्तुकला के कारण किसी को भी दूर से आकर्षित कर लेता है। फतेह जंग मलकाय बेगम नूर जहाँ की बहन के शौहर इब्राहिम हुसैन खां मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल थे। पीर शाहजंगी का दरगाह भागलपुर शहर के शाहजंगी मोहल्ले में एक ऊंचे टीले पर स्थित हजरत पीर शाहजंगी का दरगाह यहाँ के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों में से एक है। हजरत शाहजंगी एक सेनानी थे जिनका नाम हजरत लाल मोहम्मद होने के कारण लाल साहेब पीर के नाम से भी इनकी प्रसिद्धि है। अनुमानतः इन्हें अकबर या जहांगीर काल का बुजुर्ग बताया जाता है। यहाँ मुहर्रम में विशाल मेला लगता है। बाबा पीर दबड़िया का मजार भागलपुर रेलवे स्टेशन के निकट लोहिया पुल के नीचे रेलवे लाइन के बगल में स्थित बाबा पीर दमड़िया का मजार सदियों से सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश कर रहा है। मुगल काल में भागलपुर में तशरीफ लाकर इलाही नूर बिखेरने वाले में बाबा पीर दमड़िया सबसे पहले हैं। बाबा के अखलाक के कारण बादशाह अकबर सहित कई बादशाहों ने उन्हें जागीरें भेंट की थी। महमूद शाह का मकबरा, इनकी मृत्यु एक युद्ध के दौरान कहलगांव में 1539 ईस्वी में हुई थी। बंगाल के वर्चस्व की लड़ाई में महमूद शाह और शेर शाह के बीच हुए युद्ध में बादशाह हुमायूं ने महमूद की सहायता हेतु कहलगांव में आकर मोर्चा संभाला था। कहलगांव स्थित महमूद शाह का मकबरा आज उसकी दुखद मृत्यु और इतिहास के एक उपेक्षित महत्वपूर्ण घटना की मौन गवाही दे रहा है।
1: बेशक, बहुत ही सुंदर बात इन्होंने बताई, जानकारी भरी बातें। और मनु भाई, हम चाहेंगे अपने श्रोताओं से कहना कि जरूर अपने परिवार और बच्चों के साथ ऐसे स्थलों पर पहुँचें और बच्चों को अपनी संस्कृति से, धर्म से और ऐतिहासिक चीज़ों से अवगत कराएं। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कुछ जरूरी संदेशों को सुन लेते हैं।
2: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
3: तो रोका किसने है? हाँ,
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: The future feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just rupees 8,999 per month. Yes, rupees 8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TLC apply.
6: Nexa. चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
7: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: हाँ शंकर भाई, है चले आवश्यक संदेश।

0: वाह बहुत
1: हाँ शंकर
0: सुंदर।
1: राय है छले है ना पूर्वी काहे छोड़ी गेले पिया परदेश रे। देखो कि समय के वक्त के मांग होइ छे, परदेश भी जाहिल लागे छे ठीक ने, खेती गृहस्थी करी का आरो ग्राम भाई कनक समझौता करे लगा ठीक ने,
0: बिल्कुल
1: जीवन
0: बिल्कुल
1: छके गृहस्थ जीवन छके आरो काम धंधा के तलाश में यहाँ वहाँ लोग जेबे करे छे, लेकिन खेती बक्ती तो घर आवी जाए छे। तो ये अवस्था जैसे अब कुछ कृषि चर्चा हो जाए और मौसम सूचना भी है जाए ठीक ने,
0: जरूर जरूर
1: तो मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जे छौ पूर्वानुमान अवधि में 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले के और हल्का वर्षा हो के संभावना छे।
0: कहने का मतलब है कि अगले एक दो दिन तक यानी
1: हाँ
0: कल परसों
1: कल
0: तक।
1: परसों तक है, 17 से ही चल रहे, 21 तक चलते है रहा। अधिकतम तापमान जे छे 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान जे छे 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे की संभावना छे। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहे की संभावना छे। पूर्वानुमान अवधि में 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दक्षिण दक्षिण पूर्वी हवा चले की संभावना भी बतेलो गेलो छे। और देखो कुछ सामयिक सुझाव जे छे शंकर भाई, जेना कि धान जे हमरा सिर्फ अपना बढ़िया फसल होइ छे, ज्यादा उपज होइ छे, ज्यादा लोगों के खेती करे छे, धान रो लंबी अवधि वाला धान के किस्म जेना कि सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा और BPT 5204 के नर्सरी आसमान साफ रहने की स्थिति में ही कर लो जाए। स्वस्थ पौधा के नर्सरी में सड़लो गोबर के खाद का व्यवहार जरूर करो, जरा हम कंपोस्ट कहे छे। और नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर के तथा चौड़ाई लंबाई के अनुसार रख लो जाए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के नर्सरी तैयार करो। आ बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही उपलब्ध करना छे, जहाँ
0: बिल्कुल
1: तहाँ से नहीं खरीदना छे। बीज गिरेला के पूर्व बीज के बीजोपचार जरूर करो किसान भाई। आ जितना क्षेत्र में धान का रोपा करना छे ओकरो दशांश मतलब कि दसवां हिस्सा बीज हिस्सा में ही बीज गिराव। आरो बीज के गिरेला के पहला जे छे 1.5 ग्राम विवस्टीन प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित जरूर करो।
0: अच्छा
1: आरो मक्का जरा से मकई भी कहे छे, जन्नो भी कहे छे, एकरा खरीफ मकर बुआई जे छे आसमान साफ रहला के बाद ही करो। खेत की जुताई में जे छे 10 से 15 टन गोबर का सड़लो खाद प्रति हेक्टेयर के दर से जरूर व्यवहार करना छे। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फूर,

0: 10 किलोग्राम पोटाश व्यवहार करो। अनुशंसित जैसे मक्का के किस्म जना होले सुवान, देवकी, शक्तिमान एक, शक्तिमान दो, राजेंद्र शंकर, मक्का तीन, गंगा 11 इत्यादि छै। हैसनी फसल जो अपने लगाए छे,
1: बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात बताई मन्नू भाई। और अपने किसान भाइयों से ये भी कहना चाहेंगे, समय आ चला है लीची, आम, अमरूद, इस सब के पेड़ पौधे लगाने का,
0: बागवानी के,
1: हाँ बागवानी का, तो करें क्या, अभी के समय में गड्ढा खोद लें और उसमें नीम की खल्ली या नीम का बीज, गोबर, बकरी का भेनाड़ी, ये सारा चीज उसमें डाल के 15 दिन के लिए बंद कर दें, उसे मिट्टी को भर दें। और जब लगाने का समय है, बारिश जब अच्छी होने लगे, तब उस समय उसी गड्ढे में आप पौधे को लगाएं, निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा वो हलाहल करेगा और बढ़ेगा, अच्छी उपज भी देगा। और रही बात, अभी समय चल रहा है मूंग के तोड़ने का, तो समय समय पर मूंग तोड़ते रहें, और जब मूंग की तुड़ाई हो जाए तो उस पौधे को वो ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी पलटवा दें खेत के अंदर मिट्टी में, और वो फिर से पटवन करा दें, या बारिश के पानी से जब पट जाए तो खुद ब खुद सड़ जाएगा, तो वो आपका जैविक खाद का काम करेगा।
0: हरा जे खाद बड़ा सुंदर है।
1: जमीन कार्यक्रम में हम लोग और भी अच्छी चीजों की जानकारी श्रोताओं को देंगे, और एक बार फिर से हम लोग

0: आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग,
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर,
1: 8700001-4242।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
6: बन गया बजट?
5: हाँ,
6: 5000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना,
5: पिछले महीने तो ली थी।
6: एक और
5: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। जाओ भाई।
7: आरबीआई कहता है,
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: हाँ शंकर भाई, पिछले विज्ञापन और देखो कि शादी ब्याह के समय छे और परिछन गीत शादी ब्याह जैसे बड़ा सर है जैसे शादी ब्याह के समय छे, लेकिन खेती गृहस्थी भी चलिए रहलो छे कि नहीं? और देखो कृषि जे हमरा सिंह करे छे खेती गृहस्थी, ओकरा में पशु जे धन जे छे बड़ा ही महत्वपूर्ण होय छे।
10: किसानों के लिए खेती के साथ पशु पालन भी जरूरी है।
9: और देखो कि पशु धन जे छे बड़ा धन होय छे और कृषि के साथ साथ पशु के खेती, पशु के पालन भी जरूरी छे। तो हमरा सिंह एक वार्ता सुनै छे, पशुओं में कृमि एवं बचाव और जानकारी दे रहलो छौ श्री राजेश कुमार जी ने। अब सुने वार्ता।
11: पशुओं के कृमि या अंतः परजीवी एक कोशीय या बहुकोशीय जीव हैं, जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन संरक्षण करते हैं। इनका जीवन चक्र जलवायु, आर्द्रता, तापमान, पोषक तत्वों, जीवों की प्रचुरता तथा स्थानीय पशुपालन के तौर तरीकों पर निर्भर करता है। शरीर के अंदर पाए जाने वाले एक कोशीय परजीवी में प्रोटोजोआ या प्रजीवा प्रमुख है। यह दो प्रकार का होता है, पहला जो रक्त में पाया जाता है, जिसमें थलेरिया, बेबेसिया, ट्रिप्नेशोमा एवं ट्राइकोमोनस इत्यादि आते हैं। इनका संक्रमण किल्ली या टिक्स के द्वारा होता है। थलेरिया, बेबेसिया, ट्रिप्नेशोमा एवं ट्राइकोमोनस इत्यादि से संक्रमित टिक्स जब स्वस्थ पशुओं को काटते हैं, तब ये प्रजीवा स्वस्थ पशुओं के रक्त में प्रवेश पा जाते हैं और क्रमशः थैलेरियासिस, बेबेसियासिस या रेड वाटर, ट्रिप्नोसोमियासिस या सर्रा एवं ट्राइकोमोनियासिस या परजीवीय गर्भपातक नामक रोग उत्पन्न करते हैं। इन रोगों से बचाव हेतु किल्ली या टिक्स के प्रजनन वाले स्थानों को साफ सुथरा रखना, गौशाला के गोबर एवं अन्य गंदगों को गौशाला से दूर रखना चाहिए। कीटनाशक दवाओं जैसे डीडीटी, गैमेक्सिन, 1% मालाथियन या बुपारभाक्यून या साइपरमेथ्रिन इत्यादि दवाओं का प्रयोग कर इन टिक्स को नष्ट किया जा सकता है एवं इन रोगों से बचा जा सकता है। परंतु पशुओं के रोग ग्रस्त हो जाने पर निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क कर उपचार करवाना चाहिए। पेट में पाए जाने वाले प्रजीवा कोक्सीडियोसिस की कई प्रजातियाँ पशुओं में कोक्सीडियोसिस उत्पन्न करती हैं। कोक्सीडियोसिस या खूनी दस्त से ग्रसित पशुओं में उशिष्ट मल के साथ अपरिपक्व रूप में बाहर आते हैं। ये उशिष्ट 2-3 दिन में हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में परिपक्व हो जाते हैं तथा इससे दूषित चारा दाना, पानी या चारागाह के द्वारा ये उशिष्ट दूसरे स्वरूप में पशुओं के पेट में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार इनका संक्रमण हो जाता है। इससे बचाव हेतु पशुओं को सूखी जगहों पर रखना चाहिए तथा वैसे जगहों पर जहां खूनी दस्त की अधिकता पाई जाती है, वहां स्थान को 2% कार्बोलिक एसिड के घोल से उपचार करने पर कोक्सीडियोसिस के उशिष्ट नष्ट हो जाते हैं। परंतु खूनी दस्त हो जाने पर पशु चिकित्सक की सलाह से इनका उपचार करवाना आवश्यक है, अन्यथा पशुओं के बछड़ों की मृत्यु भी हो सकती है। प्रोटोजोआ या प्रजीवा के बाद दूसरा प्रमुख वर्ग

0: मेटाजोआ या बहुकोशीय परजीवी है। इसके अंतर्गत पेट में पाए जाने वाले कृमि आते हैं। इस वर्ग के कृमि का जीवन चक्र प्रायः एक समान होता है। मादा परजीवी अंडे देती है जो मल के साथ बाहर आकर लार्वा के रूप में फूटते हैं। अनुकूल वातावरण पाकर ये लार्वा विभिन्न संक्रमण अवधि के पश्चात खाने पीने के माध्यम से पशुओं के शरीर में प्रवेश पाकर अंग विशेष में अड्डा जमा लेते हैं। मुख्यतः यह परजीवी अपने आकार के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ट्रिमाटोडा या चपटे कृमि, सिस्टोडा या फीता कृमि एवं निमाटोडा या गोल कृमि। ट्रिमाटोडा या चिपटे कृमि पत्ते सा चौड़ा, कुछ लंबा, कुछ शंकु सा कृमि है जिसे फ्लुक्स भी कहा जाता है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरियों के पित्त नली, शिराओं, आमाशय एवं आंतों में पाए जाते हैं। इनमें प्रायः पतले दस्त की बीमारी होती है। इस वर्ग की कृमियों में फैसियोला, पारा एम्फिस्टोम एवं सिस्टोसोमा प्रमुख हैं, जिनसे क्रमशः फैसियोलोसिस या लिवर फ्लुक्स, पारा एम्फिस्टोमियसिस या छेरा एवं सिस्टोसोमियसिस या नकड़ा नामक रोग होता है। इस वर्ग की कृमियों के संक्रमण होने पर पशुओं के निचले जबड़े के नीचे सूजन हो जाता है। ट्रिमाटोडा वर्ग के कृमि के संक्रमण से बचाव हेतु अपने पशुओं को वैसे पोखर, तालाब या चारागाह में नहीं जाने देना चाहिए जहाँ घोंघे पाए जाते हों अथवा जहाँ की जमीन नीची हो एवं वहाँ स्थिर पानी जमा रहता हो। चूँकि घोंघे इस रोग का संक्रमण बढ़ाने में सहायक होते हैं, अतः इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। घोंघा को मारने के लिए साधारण नमक एवं तुतिया का हल्का घोल प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ इस पर की कृमि से बचाव हेतु हेक्साक्लोरोथेन का 10 से 15 मिलीग्राम छोटे पशुओं में एवं 75 से 100 ग्राम बड़े पशुओं में देने से लाभ होता है। इसके अलावा ऑक्सीक्लोजानाइड की 10 से 15 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर एवं रेफ्लेक्सोनाइड की 7.5 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर देने से लाभ होता है। इन दवाओं में से किसी एक दवा को नियम पूर्वक साल में 2 बार देने से ट्रिमाटोडा या चपटे कृमि से आप अपने पशुओं को बचाए रख सकते हैं। सिस्टोडा या फीता कृमि समूह के कृमि लंबा एवं फीता के समान होते हैं। यह अधिकतर गाय, भैंस के बछड़े, भेड़ बकरियों के मेमने एवं कुत्तों के छोटी आंत में पाए जाते हैं। सिस्टोडा वर्ग की कृमियों में टीनिया, एकाइनोकोकस तथा मल्टीसेप्स प्रमुख हैं, जिनसे क्रमशः टीनियसिस, एकाइनोकोकोसिस या हाइडेटिडोसिस एवं गिड या भेड़ बकरियों में चक्कर नामक रोग होते हैं। इस रोग से बचाव हेतु मांसाहारियों को खूब पका हुआ मांस देना चाहिए। एकाइनोकोसिस एवं गिड होने पर शल्य चिकित्सा द्वारा ही उपचार संभव है, परंतु टीनियसिस या फीता कृमि से बचाव हेतु हेक्सोक्लोराथेन नामक दवा का 2 ग्राम छोटे पशुओं में, निक्लोसामाइड नामक दवा का 30 से 100 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर तथा बुनामाइडिन ग्रुप की दवा का 100 से 200 मिलीग्राम खाली पेट में छोटे पशुओं को देने से लाभ होता है। निमाटोडा या गोल कृमि लंबा गोल कृमि गाय, भैंस, बकरियों, कुत्तों, सूकरों, घोड़ों एवं ऊंट इत्यादि के आमाशय एवं आंत में पाया जाता है। इस वर्ग के कृमि से आमाशय एवं आंत में खरोच हो जाता है तथा पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। अतिसार, पेट दर्द, दुर्बलता, रक्तहीनता इत्यादि निमाटोड या राउंड वर्म से ग्रसित पशुओं के अन्य लक्षण हैं। इस वर्ग की कृमियों में हिमोंकस, एस्केरेसिस, डिक्टोकोलस, ओसोफेगोस्टोमम, ट्राइचुरिस, एकाइनोकोलोस्टोमम, स्ट्रंगाइल्स एवं ऑक्सीयूरिस इत्यादि प्रमुख हैं, जिनसे क्रमशः हिमोंकोसिस, एस्केरेसिस, पैरासिटिक ब्रोंकाइटिस इत्यादि रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं इनके बच्चे में होते हैं। हुकवर्म से एकाइनोस्टोलोमियसिस या हुकवर्म तथा घोड़ों में स्ट्रंगोलोसिस एवं ऑक्सीयूरिसिस या पिनवर्म नामक बीमारियां होती हैं। पशुओं के मल की जांच से इस प्रकार के कृमियों का पता लगाया जा सकता है। इस वर्ग के कृमि से बचाव हेतु समय समय पर गोबर की जांच करवाना आवश्यक है। इस वर्ग के कृमि रोगों से थायोबेंडाजोल ग्रुप की दवा का 50 से 100 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर, एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल ग्रुप की दवा का 5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर या थायोफिनेट 15 से 30 मिलीलीटर प्रति 45 किलो शरीर भार पर या मोरेंटल टार्ट्रेट ग्रुप की दवा का 5 से 25 मिलीलीटर प्रति 50 किलो शरीर भार पर देने से लाभ होता है। इन जानकारियों के बाद अंत में मैं पशुपालकों को कुछ सलाह देना चाहूँगा जिस पर अमल करके पशुपालक भाई अपने पशुओं को अंतः परजीवी या कृमि से बचाव कर सकते हैं। पशुओं के साफ सुथरा रहने के स्थान को साफ सूखा हुआ एवं साफ सुथरा रखें। पशुओं के खाने के नाद को जमीन की सतह से ऊपर रखें। पशुओं को स्वच्छ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। साल भर में कम से कम दो बार बरसात शुरू होने के पहले एवं बरसात के बाद एल्बेंडाजोल या फेंडबेंडाजोल की टिकिया 5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर देना चाहिए। गाय एवं भैंस के बछड़ों को एल्बेंडाजोल या फेंडबेंडाजोल की 150 मिलीग्राम की टिकिया पहले महीने में 1, दूसरे महीने में 2 गोली, तीसरे महीने में 3 एवं चौथे महीने में 4 टिकिया देना चाहिए तथा इसके बाद प्रत्येक वर्ष में 2 से 3 बार कृमिनाशक दवा देना चाहिए। इस प्रकार इन बातों को अगर आप अमल में लाएंगे तो अपने पशुओं को कृमि से बचाए रख सकते हैं।
1: बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी। और देखिए, पशुधन है तो हमारा बहुत कुछ उससे जुड़ा हुआ कारोबार है। चलिए, हम लोग अब समय को ध्यान में रखते हुए एक कृषि गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, बस आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने और अपनों का ध्यान रखें और दें अपने शंकर को विदा। नमस्कार।
1: सबका मनोज भी नमस्कार।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल किया। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इधर नीट परीक्षा को लेकर रांची समेत राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तैयारी की गई है। रांची में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। इस बीच झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के SP को हाई अलर्ट जारी किया है। नीट परीक्षा को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। SDPO रूपक कुमार ने बताया कि जांच अभियान चलाकर विभिन्न होटलों में ठहरे हुए व्यक्तियों का सत्यापन और जांच की गई।
1: नीट परीक्षा जो की दिनांक 21/6/2026 को प्रस्तावित है, उसके मद्देनजर हम लोग विभिन्न होटलों में चेकिंग कार्यक्रम चला रहे हैं, संदिग्धों पर नजर रख रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के गड़बड़ी की आशंका न रहे परीक्षा में। संदिग्ध लोगों पर नजर रख रहे हैं जो परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

0: के रवि कुमार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ और एईआरओ को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के कार्यों का सत्यापन कर उन्हें मूर्त रूप देने में ईआरओ एवं एईआरओ की भूमिका महत्वपूर्ण है।
1: फॉर्म भरने की प्रक्रिया तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन पर विस्तार से जानकारी दी गई। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के लोक भवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में रह रहे पश्चिम बंगाल वासियों को संबोधित करते हुए विविधता में एकता को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और भावनात्मक एकता को मजबूत कर रही है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कल यानी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य के सभी 24 जिलों में उत्साह का माहौल है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती दीक्षांत मंडप में सुबह 6 बजे से योग दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे और योग के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। इधर साहिबगंज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम फूलो झानो इंडोर स्टेडियम में कल आयोजित होगा। साहिबगंज के जिला आयुष पदाधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने लोगों से निरोग रहने के लिए योग अपनाने की अपील की।
3: जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, बढ़ती उम्र में हम इस योग का प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। योग का मतलब जोड़ना, कैसे हम जुड़े, कैसे हम अच्छाई की तरफ बढ़े। सब योग केवल रोग को नहीं ठीक करता, वो मन को भी ठीक करता।
1: उधर हजारीबाग जिला आयुष समिति और आयुष विभाग द्वारा लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली गई और कल होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई। वहीं गोड्डा में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर सरायकेला खरसावां जिले में योग दिवस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों में कुल 33 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां 75 प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों द्वारा लोगों को योगाभ्यास कराया जाएगा। राजधानी रांची स्थित संत पॉल कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रांची के CTSP पारस राणा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेले गए मैच में भारत ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया। भारतीय टीम की कप्तान और झारखंड की बेटी सलीमा टेटे को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टीम में झारखंड की निकी प्रधान और दीपिका सोरेंग भी शामिल है। फाइनल में अब भारत का सामना मेजबान न्यूजीलैंड से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। देश भर के 9,44,00,000 किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए की वितरित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विधानसभा क्षेत्र के

ईआरओ और एईआरओ को दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल रांची समेत राज्य भर में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पूरी। हजारीबाग गोड्डा समेत कई जिलों में निकाली गई जागरूकता रैली। और FIH महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारत ने चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। कप्तान सलीमा टेटे बनी प्लेयर ऑफ द मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर पर शाम के 7:11 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कन्हैया प्रसाद गुप्ता के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ में इनसे सुनिए एक झूमर।

लोक गीतों के कार्यक्रम में अभी आप कन्हाई प्रसाद गुप्ता को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:25 होने को है। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 73 लाख किसानों समेत देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि अंतरित की। प्रदेश भर के 331 केंद्रों पर कल नीट यूजी पुनर्परीक्षा का होगा आयोजन। एनटीए के निर्देश पर आज सभी केंद्रों पर हुआ मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के शाहपुर में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी। श्रद्धा पांडे बनी टॉपर, शशांक गौरव को दूसरा स्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी की। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि अंतरित की गई है। इस अवसर पर पटना के बामेती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया गया। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत राज्य के प्रमुख केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन की तैयारियों को परखा गया। इसे लेकर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इधर राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग विशेष बसों का परिचालन करेगा। साथ ही रेलवे की ओर से नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। कई मार्गों पर वन वे ट्रैफिक लागू रहेगा। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर डाइवर्जन भी लागू किया जाएगा।
1: जो बापू परीक्षा सेंटर खास करके है, जहाँ पर जाम की समस्या प्राय हो जाती है, उसके मद्देनजर हम लोग कल ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ डाइवर्जन प्लान बनाए हैं। जो धनकी के तरफ से, चाहे जो पहाड़ी के तरफ से जितने पिकअप हैं, टेम्पो हैं, ई रिक्शा हैं, 8 बजे के बाद हम उसको डाइवर्ट किए हैं। अगर उनको टाउन में आना ही है तो बिस्कुमान ऊपर है, बिस्कुमान से होके जो कुम्हरार वाला पुल है उससे फिर जा सकते हैं टाउन में। जो भी बस धनकी पर आएंगे, जो गांधी सेतु की तरफ से आते हैं, चाहे जो पूर्वी दिशा से टोल प्लाजा की ओर से आते हैं, न्यू बाईपास होकर, मीठापुर होकर, गांधी मैदान, चाहे कहीं भी अन्यत्र जाना है तो जाएंगे। धनकी से या बिस्कुमान से कोई भी बस नीचे, चाहे कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, जब तक एग्जाम होगा उस पीरियड में जाने की अनुमति नहीं होगी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक जाँच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जाँच सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत तिवारी नाम के एक व्यक्ति की कथित पुलिस मुठभेड़ के बाद मौत हो गई थी। पुलिस ने अपने बयान में मृतक युवक के आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात कही थी, जिससे आक्रोशित मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 2027 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने आज परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि 593 अंक प्राप्त कर श्रद्धा पांडे टॉपर बनी हैं। वहीं 592 अंकों के साथ शशांक गौरव सेकंड टॉपर बने हैं, जबकि आयुष विजय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024 में आयोजित 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के पीटी में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जनता दल यूनाइटेड की राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक कल पटना में आयोजित की जाएगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बैठक में जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्री, सभी सांसद, विधायक और MLC मौजूद रहेंगे।
2: यहाँ जो है बिहार प्रदेश जनता दल के पहले में राष्ट्रीय परिषद का राज्य परिषद का बैठक होने जा रही है, उसको लेकर हम लोग काफी उत्साहित सब हमारे पार्टी के जो भी प्रदेश के स्तर के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी उत्साहित थे कि बिहार में पहली बार इसके पहले भी हुआ है लेकिन बिहार में जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। परिषद के सभी डेलीगेट सभी प्रदेश से आ रहे हैं, उनको यहाँ गर्मी से स्वागत किया जाएगा।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी की। नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव और 6 सचिव बनाए गए हैं। मधुबनी से विधायक माधव आनंद को एक बार फिर प्रधान महासचिव बनाया गया है। अरविंद वाजपेयी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि नई टीम सामाजिक न्याय, सुशासन और विकास के एजेंडे को संकल्प के साथ आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में अपने विभाग से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए 3 मंत्रियों को अधिकृत किया है। इनमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नीतीश मिश्रा के नाम शामिल हैं। श्री चौधरी ने गृह विभाग के सवालों का जवाब देने के लिए विजय कुमार चौधरी को कार्मिक विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय और सिविल विमानन विभाग से संबंधित सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को दी है। वहीं निगरानी विभाग और निर्वाचन विभाग से जुड़े सवाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं का जवाब नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा देंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। वहीं

0: स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा।
1: इधर प्रदेश भर में कई स्थानों पर योग शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। विभिन्न योग संस्थानों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों, सभी सरकारी और निजी स्कूलों समेत विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया जाएगा। राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने नवादा और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के मध्य एवं पश्चिमी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के नवादा एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: इधर राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत संसार पोखर के पास खुदाई में मिले काले पत्थर की दुर्लभ प्रतिमा को संग्रहालय में स्थानांतरित किया गया है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह सहायक संग्रहालय अध्यक्ष मृणाल रंजन को आज प्रतिमा सौंप दी गई। 2 फीट ऊंची अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ प्रतिमा 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पाल काल से जुड़ी मानी जाती है। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 157 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिले की पुलिस ने FCI थाना क्षेत्र से छिनतई मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले की एक स्थानीय अदालत ने अपनी मां की हत्या के मामले में दोषी पुत्र लाल बाबू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 22,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। 18 अगस्त 2024 को हरलाखी थाना क्षेत्र में इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया था। सीवान के प्रसिद्ध व्यवसायी सुनील कुमार श्रीवास्तव ब्लड डोनर क्लब के संरक्षक बने हैं। श्री श्रीवास्तव को दधीची देहदान समिति की जिला इकाई का भी संरक्षक मनोनीत किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 73 लाख किसान समेत देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि अंतरित की। प्रदेश भर के 331 केंद्रों पर कल NEET UG पुनर्परीक्षा का होगा आयोजन। NTA के निर्देश पर आज सभी केंद्रों पर हुआ मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के शाहपुर में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 70वीं BPSC संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी। श्रद्धा पांडे बनी टॉपर, शशांक गौरव को दूसरा स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: Akashwadi at 90.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन।
2: जिले में कल 12 परीक्षा केंद्रों पर नीट पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के प्रवेश का अंतिम समय अपराह्न 1:30 बजे तक निर्धारित है। NTA के निर्देश पर आज विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला अधिकारी अंशुल कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में नीट पुनर्परीक्षा 2026 से संबंधित केंद्र अधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोलन दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा के आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुभवी पदाधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र बल के साथ स्टैटिक दंडाधिकारी सह परीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों को जोनल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। जिला पदाधिकारी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV और वीडियोग्राफी के द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी। वहीं सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक व जैमर का इंतजाम भी किया गया है। जिला साइबर सेल भी सोशल मीडिया पर लगातार कड़ी नजर रख रही है। केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने जिले के सहारा वृद्धाश्रम का विशेष निरीक्षण किया और संवाददाता कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने आवासीय कक्ष, भोजनालय, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र एवं मनोरंजन कक्ष समेत वृद्धा आश्रम के विभिन्न भागों का अवलोकन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सभी वृद्धजनों को सम्मान स्वरूप शॉल भेंट किया और उन्हें फल एवं अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट प्रदान किए। श्री सिंह ने कहा कि वृद्धजन समाज की अमूल्य धरोहर है और उनकी सेवा करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री लेसी सिंह, कस्बा विधायक नीतीश कुमार सिंह, वरिष्ठ पदाधिकारी समेत गणमान्य लोग मौजूद थे। आपदा प्रबंधन मंत्री सह पूर्णिया जिला के प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संभावित बाढ़, सुखाड़ की पूर्व तैयारी, जल जीवन हरियाली और 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और सभी 7 विधानसभा क्षेत्र के विधायक उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने आपदा में मृत लोगों के परिजनों को चेक प्रदान किया। उन्होंने दिव्यांग लोगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया। श्री सदा ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को जिले में सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अधिकरण पूर्णिया की ओर से 1 दिवसीय जिला स्तरीय शारदीय महाअभियान सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि हितकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उन्हें लाभान्वित करना है और खरीफ मौसम में नवीन कृषि तकनीकों एवं नवाचारों को बढ़ावा देना है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने किसानों से कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी खेती बचाओ अभियान से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुशंसा के अनुरूप उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर अधिक लाभ ले सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रखंडों में 10 जून से 22 जून तक प्रखंड स्तरीय शारदीय महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 11 जून से 30 जून तक कृषि जन कल्याण चौपाल सह खेत बचाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 9 जून को जिला अस्पताल से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित शिविर में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच किया गया। लाभार्थियों को चिकित्सकीय सहायता भी दी गई। इसे लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार कनौजिया ने बताया कि 2016 में शुरू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध प्रसवपूर्ण जांच सेवाएं उपलब्ध कराया जाता है। पूर्णिया जिले में लगातार आंधी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश और तेज आंधी से कई स्थानों पर बड़े पेड़, घर और बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन।
3: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। 7:53 और 22 सेकेंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं कुमारी सुवर्णा घोष। आरंभ में इनसे सुनिए एक गीत, रचना रमानाथ अवस्थी की है।

0: सुडलरी कार्यक्रम में अभी आप कुमारी सुवर्णा घोष को सुन रहे थे। ये उड़ान की अगली कड़ी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के बीच आ गया। अति उत्साहित हूँ, हाँ, क्योंकि पिछले सप्ताह जो कार्यक्रम बजा था उसमें ढेर सारे फोन कॉल इस बार आए हैं उसको सुनने के बाद। क्या बक्सर, क्या भागलपुर, क्या बेतिया और क्या कटिहार, क्या आरा, पटना, छपरा, सिवान, हर जगह से हाँ फोन कॉल आए और उन्होंने कहा कि इंतजार था आपके इस कार्यक्रम का। जब आपका कार्यक्रम सुनते थे तो उस वक्त हमने इंटरमीडिएट नहीं किया था और आज आपने आकर हमें फिर से मार्गदर्शन किया। एक ही बात कहना चाहता हूँ पूरे बिहार वालों कि भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर टेक्निकल पढ़ाई किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपने कर लिया, हाँ, जिसमें कि BCA और BBA, कंप्यूटर से और मैनेजमेंट से BCA और BBA की पढ़ाई जो आपने कर ली तो रास्ता सहल हो जाता है। और अच्छा संस्थान इसलिए कहा कि वैसा संस्थान जिसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टीचर अच्छे हों, जॉब प्लेसमेंट अच्छा हो, किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो। तो आपको जैसा कि हम हमेशा बताते रहे कि आर्किड बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना में जो संस्थान है जिसके तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है और 27 वर्षों से ध्यान से सुनिए,

0: आप युवाओं के साथ इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। सगुना मोड़ हो या राजेंद्र नगर आर्य कुमार रोड, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना विहंगम कंप्यूटर लैब और बहुत ही उत्तम शिक्षक की व्यवस्था है। और जो डायरेक्टर हैं, हाँ, आशीष आदर्श जी, हमेशा उनसे आप मिल सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम नंबर बता रहे हैं, अगर बीसी और बीबीए करना होना तो कम से कम आर्केड बिजनेस कॉलेज में एक बार फोन जरूर कर लीजिएगा। नंबर है 7520800800। अगर ऐसे कहें 7520800800, वाह वाह क्या बात है, 7520800800, ये याद हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से बताते हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ये एकमात्र संस्थान है जिसे बीसी और बीबीए के लिए स्थायी मान्यता दी गई है।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
0: और अब बुलाते हैं आशीष आदर्श जी से और थोड़ा बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं। पीसीएम जो करते हैं ना, खास करके लड़के, उनकी पहली इच्छा होती है कि हम इंजीनियरिंग करें। लेकिन आज सवाल पूछते हैं आशीष जी से कि उनके लिए क्या बेहतर होगा। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप हमें बताइए, इंजीनियरिंग के अलावा, क्योंकि पीसीएम से पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, युवा जो है ना, वो सोचते हैं कि 4 साल में हम इंजीनियरिंग कर लेंगे और उसके बाद हमको नौकरी मिल जाएगी। उनके माता पिता भी यही सोचते हैं और आगे क्या होता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और उनको भी पता चलता है। तो क्या इंजीनियरिंग के अलावा भी पीसीएम के युवा साथियों के लिए बीसीए, बीबीए या इस तरीके के कोई और कोर्सेज हैं, या आपका एक्सपीरियंस यानी 27 वर्षों का अनुभव क्या कहता है?
3: देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक डेटा, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, आज के डेट में एक डेटा कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि आज हमारे देश में जो इंजीनियर्स की जो संख्या, इंजीनियर्स की जो संख्या है वो लगभग 14 लाख के आसपास में है। मैं ये 14 लाख उनको बोल रहा हूँ जिनके पास बीटेक की डिग्री है। इस 14 लाख में से मात्र 4 लाख के पास जॉब है, मात्र 4 लाख के पास। उसके अतिरिक्त 3 लाख ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसके बाद वो कहीं बैंक में काम कर रहे हैं या कोई इंश्योरेंस बेच रहा है कहीं, या किसी ने बिजनेस कर लिया। और बाकी 7 लाख लोग निकल गया, बाकी 7 लाख आज भी रोड पर जॉब के लिए ढूंढ रहे, घूम फिर रहे, इधर उधर जा रहे हैं, वो टहल रहे हैं, उतना पैसा लगा करके, इतना समय लगा करके। मेरा यही कहना है, यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है तो केवल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए इंजीनियरिंग मत कीजिए। उसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपकी, आपका जो जो टैलेंट है वो एवरेज है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स मैं बताता हूँ, जिस कोर्स को आप ज़रूर करिए और आप देखिए उसका कितना फ़ायदा आपको मिलता है। उस कोर्स का नाम है BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल आप MCA कहीं से कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितने सारे एवेन्यूज। MCA करने के बाद में बैंक से लेकर के, इवन के जो IT कंपनी से लेकर के, जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं, आप TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का या विप्रो का विज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें लिखा रहता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन MCA, वो MCA आप कीजिए BCA करने के बाद में, या BCA करने के बाद भी इवन बहुत सारी IT कंपनीज वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अब्जॉर्व कर लेती है, जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि BCA एक अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को आप करिए और करने के बाद आपको लगेगा आगे चल करके कि हमने इंजीनियरिंग से बेहतर किया। हाँ, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत है, एकदम आप उसमें टॉपर्स में हैं, तो फिर आपको जरूर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगार इंजीनियरों की भीड़, बीटेक स्टूडेंट्स की भीड़, तो मैं, मुझे लगता है आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को, BCA करने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़, जो बेरोजगारों की भीड़, और इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारों की भीड़। आपको ये लगेगा कि इंजीनियरिंग में बेरोजगारों की भीड़ ज़्यादा है और BCA करने के बाद कम है। तो मेरा समझना यही है कि आप BCA करिए और उसका आप लाभ लीजिए, आगे चल के MCA कीजिए, बाकी सब मतलब बहुत अच्छा होगा।
0: क्या बात है आशीष जी, आपसे बात करना हमेशा एक नया अनुभव होता है। डाटा जो है ना, आंकड़े आपके जुबान पर रहते हैं। 27 वर्षों का आपका अनुभव और 27 वर्षों का आर्केड बिजनेस कॉलेज का अनुभव निश्चित रूप से युवाओं

0: के लिए एक नया रास्ता खोलता है। यदि आप PCM किए हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ आपने किया है इंटरमीडिएट, तो BCA और BBA कीजिए और एक बार जरूर नॉक कीजिएगा हाँ आर्केट बिजनेस कॉलेज को, क्योंकि 27 वर्षों का अनुभव है। आशीष जी खुद एक करियर काउंसलर हैं, हम नंबर बता रहे हैं वही एकदम रिदम में 7520800800 हाँ 7520800800 यानी 7520800800 और ये उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करते हैं आर्केट बिजनेस कॉलेज वाले, समाज में युवाओं को अवेयर करना चाहते हैं। चलिए वापस चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, आपने PCM वालों को तो बता दिया, आर्ट्स वाले जो युवा साथी हैं हमारे जिन्होंने कला क्षेत्र से इंटरमीडिएट किया है, उनके लिए भी अगर थोड़ा मार्गदर्शन कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।
1: देखिए, आर्ट्स से जिसने किया है, वैसे तो देखिए अभी कई विश्वविद्यालय BCA के कोर्स के लिए मैथमेटिक्स जरूरी मांगती है 10+2 में, लेकिन कईयों ने रिलैक्स भी कर दिया है। लेकिन मेरा समझना यही है कि यदि आपने आर्ट्स से अगर 10+2 किया है तो फिर BBA कोर्स, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स बहुत बेहतर हो। तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी ऐसे फील्ड की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर आपका निश्चित जॉब मिले। वैसे स्थिति में BBA कीजिए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद अगर आपने किसी अच्छी जगह से MBA कर लिया तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सेम मैसेज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी देना चाहूँगा जिन्होंने 10+2 कॉमर्स के साथ किया है, क्योंकि कॉमर्स के बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो पेपर्स उनको BBA में फिर से दोबारा पढ़ने पड़ते हैं, तो उनको बहुत सुविधा होगी। कॉमर्स करने के बाद अगर आप BBA करते हैं, उसके बाद MBA करते हैं, तो आपको फिर पीछे मुड़के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: तो आर्ट्स और कॉमर्स वालों, आपके लिए भी आशीष जी ने दो बातें कही है, उस पर सोच विचार करना अब आपकी जिम्मेदारी है। हम तो कहेंगे BCA और BBA बहुत ही वाइब्रेंट है, और इसको हमने देखा है, एक लंबा अनुभव है हमारे पास भी, कि जो युवा BCA और BBA किए किसी अच्छे संस्थान से लाइक आर्केट बिजनेस कॉलेज और इस तरीके से, तो उनका करियर बहुत आगे गया है, उड़ान चल रहा है। उड़ान कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, करियर गाइडलाइन है ये, है ना, और खास करके टेक्निकल पढ़ाई पर एम्फेसाइज करता हूँ, जिससे कि कल को बेरोजगारी नहीं हो, आपको रोजगार मिल जाए। एंड ऑफ द डे, अंत में तो एक ही मोटो होता है, अच्छा पैसा कमाना, और अच्छा पैसा तभी मिलेगा जब अच्छा हाँ रोजगार या नौकरी होगी, और अच्छी नौकरी तभी होगी जब किसी अच्छे संस्थान से आपने टेक्निकल पढ़ाई की होगी, जिसमें BCA और BBA बहुत ही अव्वल है। हम एक बार आर्केट बिजनेस कॉलेज का नंबर बता रहे हैं, वही 7520800800 7520800800। पूरे बिहार में हम ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, आकाशवाणी के 6 केंद्र से इसका प्रसारण हो रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई भी युवा छूट जाए और कल को कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था, तब हम कैसे अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। इसीलिए आप भी फोन कीजिए दिए गए नंबर पर, एडमिशन लेना हो ना लेना हो, जानकारियां लेना ही चाहिए। जी हाँ, और अब आशीष जी एक बात बताइए, अगर BCA और BBA में से किसी एक कोर्स को चुनना होगा तो युवा किसको चुने?
1: देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर आपका 10+2 में PCM रहा है और मैथमेटिक्स अगर आपका ठीक है, अच्छा है, तो फिर आपको BCA करना चाहिए। और अगर आपका ठीक है, आपने PCM भी कर लिया है उसके बाद भी, लेकिन मैथमेटिक्स भी एवरेज है, तो आप BBA चुन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि BCA और MCA करने के बाद एक आप प्रोग्रामर बनते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो आदमी जिसका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जितना बेहतर होता है वो उतना ही अच्छी एनालिसिस कर सकता है, और एनालिसिस अगर आपकी जो आपकी स्किल अगर है तो आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो मेरा समझना यही है कि कुल मिलाकर के अगर आपको खुद आकलन करना है, अब मार्क्स के हिसाब से मैं चलिए बोल देता हूँ, अगर आपको PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स है या 60% से भी ज़्यादा मार्क्स है तो आप BCA ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम है, 60-70% से कम अगर है, तो फिर आपको BBA की तरफ जाना चाहिए। और वैसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी यही थ्योरी में कहूँगा कि अगर आपको आपके अपने सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए कॉमर्स को, तो मैं बोलूँगा कि वो BCA की तरफ ना जाएं, बेहतर है वो BBA ही लें, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका कॉमर्स का एक बैकग्राउंड रहा है और आगे चल करके उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़ने में सुविधा होगी BBA कोर्स में, और फिर आगे MBA में भी वही सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ना होगा उनको।
0: एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल है आशीष जी आपसे।

0: जो बच्चे बीसीए और बीबीए करके आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या रोजगार मिल जाएगा, कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो?
1: देखिए, आप आर्केड बिजनेस कॉलेज में आइए अगर आप ऐसा समझते हो, बेहतर समझते हो तो, और फिर आप केवल अपना समय दीजिए हमें, आपको प्रॉपर आप क्लासेस करिए, आप प्रॉपर जो भी जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं, जो भी अभी मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, उन सबों को अटेंड कीजिए। आपको हम आर्केड बिजनेस कॉलेज में वो चीज़ देते हैं जो नॉर्थ इंडिया में कोई दूसरा नहीं देता। कारण क्या है कि जितने बड़े बड़े जो वर्कशॉप्स होते हैं यहाँ पे, अब जैसे कि अवध ओझा आते हैं, सोनू शर्मा आते हैं, चेतन भगत आते हैं, सारे के सारे, इन सबों के वर्कशॉप को अगर आप दिल्ली जाकर के अगर अटेंड करेंगे तो एक एक वर्कशॉप का 10-10, 15-15 रुपये उसका शुल्क है, जो सब कुछ हम यहाँ पे फ्री आपको देते हैं। मनोज वाजपेयी ये भी बीच में आए थे, उनका सेशन हुआ, फिर अभी बहुत सारे जितने भी सेशंस आप गौड़ गोपाल दास आए, मतलब जो भी इंडिया के जो टॉप जो इंस्टीट्यूशन जो मोटिवेटर्स हैं वो सारे हमारे यहाँ आते हैं बच्चों को कुछ सीख देने के लिए। डॉक्टर किरण बेदी कई बार आ चुकी हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ज़रूर आइए और आकर के यहाँ पे जो भी जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं सबको आप अटेंड कीजिए और आप खुद देखिए कि आप किस प्रकार बन करके 3 साल के बाद यहाँ से निकलते हैं।
0: आशीष जी, पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं बताइए, माता पिता का क्या रोल होना चाहिए?
1: देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स से बेहतर करियर काउंसलर्स और कोई नहीं होते बच्चों के, क्योंकि वो अपने बच्चों की सारी लिमिटेशंस को जानते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं। मैं समझता हूँ कि उनको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और अपने बच्चे को वही ऑप्शन सेलेक्ट करने की छूट देनी चाहिए जो करना चाहता है। देखिए, हमेशा मान के चलिए कि एक थर्ड क्लास इंजीनियर से एक फर्स्ट क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा ज़्यादा बेहतर है, तो जो उसका फील्ड में जिसमें वो जाना चाहता है उसमें ज़रूर जाए और उसके लिए पूरा जो पेरेंट्स का सपोर्ट उसको होना चाहिए।
0: आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, बने रहिए, अगले एपिसोड में आपसे आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल आशीष जी चले गए, आपको बताएं, वैसे युवा साथियों, अगर आपके मन में झिझक है कि मैं गांव का रहने वाला हूं, कैसे क्या कर पाऊंगा, तो आपके लिए बताएं, आर्केड बिजनेस कॉलेज में अलग से क्लासेज यहां लिए जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, क्रेडिट कार्ड से यानी पैसे की समस्या है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो संस्थान है ना आर्केड बिजनेस कॉलेज, जिसके तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं उड़ान, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड, पटना। कॉल करें 7520-800-800, याद रखें 7520-800-800।
0: तो बस आज के लिए, चलने से पहले नंबर है 7520-800-800, 7520-800-800 जरूर डायल करें बीसीए और बीबीए के लिए आर्केड बिजनेस कॉलेज को। नमस्कार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत, कार्यक्रम है रजनीगंधा।

0: The future feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
1: Nexa.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ममता से है, गायिका हैं लता मंगेशकर।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन रहे हैं रजनीगंधा। कार्यक्रम को जारी रखते हुए ये सुनते हैं मोहम्मद रफी को, फिल्म है धरती कहे पुकार के।

आरजू फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब दिल्ली से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: Ritu Sharma. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश,

0: और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
0: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
6: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
7: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
5: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep three-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
9: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
8: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
10: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
8: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He also extended birthday greetings to President Draupadi Murmu and said it was a privilege to visit her native village Paharpur. Later, Prime Minister Narendra Modi took part in Pashchim Bongo Divas celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi also participated in a grand function to celebrate the state day, along with Chief Minister Shubhendu Adhikari. He also launched dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the BJP government has started working at a superfast pace for Bengal's development.
10: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
8: The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is scheduled for tomorrow. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Ahead of the examination, the National Testing Agency NTA has conducted nationwide mock drills as part of preparations for the re-examination. The NTA said it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. More from our correspondent.
4: Over 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed for the secure, transparent and smooth conduct of the examination. A multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification, GPS-enabled vehicles with police escort for the movement of the examination material, and end-to-end secure handling of confidential materials to designated locations under sealed protocols. The NTA is also actively monitoring social media platforms to curb misinformation and prevent malpractice. The examination will be held from 2 p.m. to 5 p.m. tomorrow. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
8: Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other dignitaries were present on the occasion. Addressing a public gathering, Mr. Shah said the Sri Ambabai Temple, located in the historic city of Karvir, is a major center of faith for devotees from across the country. He said the development project will transform the temple precinct into a modern pilgrimage destination while preserving its historical, cultural and spiritual heritage. He added that the project will enhance facilities for devotees and strengthen Kolhapur's position as a prominent religious tourism center. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the government's transformative initiatives driving the vision of an empowered India.
5: Over the last 12 years, the government has driven a structural transformation in India's high-tech landscape. Two of the most significant pillars of empowered India are the development of a semiconductor ecosystem and the explosive growth of space startups. The India Semiconductor Mission was launched in December 2021 with a massive outlay of 76,000 crore rupees. By 2026, the government launched Semiconductor Mission 2.0 with a provision of 1,000 crore rupees. Speaking about the Semiconductor Mission 2.0, Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav highlighted that while Mission 1.0 successfully established the foundational building blocks for this complex industry, Mission 2.0 will focus on deepening the ecosystem.
11: The first mission was to start the industry in our country, and it's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2-nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India. Now, the world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
5: The Indian Space Policy 2023 enables and permits the private entities to carry out end-to-end space activities, including undertaking launches, satellite realization and operations, data acquisitions and dissemination, and ground station. Talking to Akashwani News, Anil Prakash, Director General of the Space Industry Association of India, said that the country is currently home to more than 400 space tech startups.
12: In the last 12 years, India's space sector has undergone significant changes. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the reform of the space sector, the establishment of a space base and the increase in the private participation have started a new revolution. Today, more than 400 space tech startups operate in India, which are innovating in areas such as satellite, launch vehicle, earth observation and data service. India's first space tech unicorns, Skyroot Aerospace, is a proof of this change.
5: Through the breakthrough of the semiconductor mission and a thriving private space sector, India's journey toward a developed nation is being realized today as an empowered India. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
8: at least 5 devotees lost their lives and 40 to 50 others were injured after a portion of a temple structure collapsed in Manvad Taluka of Maharashtra's Parbhani district today. The incident occurred when a large number of devotees had gathered at the temple for darshan. Rescue teams rushed to the spot and launched relief operations immediately. Around 20 to 25 people were rescued from the debris, while nearly 15 injured devotees are undergoing treatment at a nearby hospital. Prime Minister Narendra Modi and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis have expressed their condolences to the families of the pilgrims who lost their lives in the accident. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back, here with us on the news at 9. International Yoga Day 2026, IDY 2026, will be celebrated tomorrow to mark the 12th International Day of Yoga, with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of IDY 2026 will be held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the common yoga protocol. More from our correspondent.
2: The Ministry of Culture is organizing special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
8: Iran's Joint Military Command announced today that the Strait of Hormuz has been closed once again, citing continued Israeli military operations in Lebanon.

0: What it described as U.S. bad faith and a failure to uphold commitments aimed at ending the conflict. In a statement broadcast on state television, the command warned that further measures have been prepared if what it called aggression continues. In cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai today, as Yashasvi Jaiswal smashed an unbeaten century, chasing a modest 219-run target. India raced to victory in just 28.4 overs, losing one wicket. Jaiswal slammed an unbeaten 110 off 86 balls, while Rohit scored 79 off 69 deliveries. In the FIFA World Cup, the Netherlands will take on Sweden today at 10:30 p.m. IST. The match will be played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
1: Light.
2: This is Akashvani. In the program Spotlight on the
0: FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है. खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत लगातार अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है, क्योंकि उसका ये मानना है कि मामलात को ये आलमी मंजरनामे पर भारत के वकार और उसके असर व रसूख को नुमाया अंदाज से बढ़ाया है. ओडिशा के मयूरभंज जिले में राय रंगपुर के मकाम पर जनाब मोदी की मौजूदगी में एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में भारत अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है. ओडिशा में मोहन चरण माझी सरकार के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस तकरीब का अहतमाम किया गया था. मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया के कई खित्तों में टकराव और गैर यकीनी के हालात हैं, भारत ने सिफारती राब्तों और बाहमी मुफाहमत के जरिए तनाज़ात को हल करने की लगातार वकालत की है. जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा की पेशरफ्त को ये कहते हुए सराहा कि रियासत तरक्की के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मशरूकी भारत की नशोनुमा में अहम रोल अदा कर रही है. जनाब मोदी ने कहा कि मरकज के पूर्व उदय नजरिए का मकसद मशरूकी भारत के तेज रफ्तार फरोख के जरिए भारत की तरक्की को रफ्तार देना है.
4: उड़ीसा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
5: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि उन्हें सदर जमहूरिया के आबाई गांव पहाड़पुर में आने का शर्फ हासिल हुआ है। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली जिले में तारकेश्वर के मकाम पर पश्चिम बंगा दिवस तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने 18,880 करोड़ रुपए मालियत की पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त भी जारी की, जिससे मुल्क में 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल का योम तासीस मनाने के लिए मुनक्दा एक शानदार तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, मुल्क के नाम वक्फ किया और कुछ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन शोबों में रेलवेज, ज़राअत, देही तरक्की, माही परवरी और मवेशी परवरी के शोबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बंगाल की तरक्की के लिए सुपरफास्ट रफ्तार से काम शुरू कर दिया है।
4: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
5: योग का बैन अल-अक़वामी दिन कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस साल योग का ये 12वां बैन अल-अक़वामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैन अल-अक़वामी दिन की बड़ी तकरीब मगरबी बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत करेंगे। रेड रोड पर कौमी सतह की तकरीब कल सुबह सवेरे 5 बजे शुरू होगी। वहां हजारों लोग शिरकत करेंगे, जबकि मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोगों के इसमें वर्चुअल वसीले से शामिल होने की उम्मीद है। इस तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
6: सकाफत की वजारत मुल्क भर के 100 सरकर्दा मकामात पर योग की खुसूसी तकरीबात का एहतमाम कर रही है, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे, तारीखी मकामात और योगा की रिवायत को मजबूत करना है। इस पहल के तहत 12 सरकर्दा मकामात पर अहम तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। सकाफती राबतों की भारतीय कौंसिल के साथ इश्तराक में बैरून मुल्क 210 से ज़्यादा भारतीय मिशन दुनिया भर में तकरीबन 2,500 मकामात पर योगा तकरीबात का इनेकाद करेंगे। दिल्ली में अहम आवामी मकामात पर योगा तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जिनमें शांति पथ के लॉन, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, CP सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन शामिल हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
5: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
7: وزیر اعظم نریندر مودی کل کولکتہ میں ملک میں ہی بنائے گئے بھارتی بحریہ کے 3 بحری جنگی جہازوں کو پانی میں اتارنے کی رسم انجام دیں گے. ان میں آئی این ایس دونگیری، آئی این ایس سنشودھک اور آئی این ایس اگرے شامل ہیں. ان کا ڈیزائن بحریہ کے جنگی بحری جہازوں کے بیورو نے تیار کیا ہے اور گارڈن ریچ شپ بلڈرز اور انجینئرز نے انہیں تعمیر کیا ہے. اس کا مقصد مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مستحکم

0: कम बनाना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आपदोज शिकन निजाम को मजबूत बनाना है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
1: गुज़श्ता 12 बरस के दौरान हुकूमत ने मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर ढांचा जाती इकदाम किए हैं। बाख्तियार भारत के दो सबसे अहम सतून सेमी कंडक्टर इको निज़ाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की ज़बरदस्त तरक्की हैं। 76,000 करोड़ रुपये के बड़े अखराज के साथ दिसंबर 2021 में भारतीय सेमी कंडक्टर मिशन का आगाज़ किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमी कंडक्टर मिशन के दूसरे मरहले का आगाज किया, जिसका मकसद सनत की क्यादत में तहकीक, टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए तरबियती मराकज और मुस्तकबिल के लिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तश्कील पर जोर देना है। सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मिशन 1.0 ने इस अहम सनत के लिए बुनियाद फराहम की और मिशन 2.0 इको निजाम को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा।
2: The first mission was to start the industry in our country. It's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2 nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
1: भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत दी गई, जिससे सैटेलाइट को खला में भेजा जाना भी आसान हुआ। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। आकाशवाणी से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमी कंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी और सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: अहलियत और दाखिले से मुताल्लिक कौमी इम्तिहान NEET UG 2026 का कल दोबारा इम्तिहान होगा। कल होने वाले इस दोबारा इम्तिहान में मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। ये इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में होगा। इम्तिहान से कबल इम्तिहानात के इनकाद से मुताल्लिक कौमी एजेंसी NTA ने आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल्स अंजाम दी, जिनके तहत सभी सिस्टम जैमर्स, CCTV, अमले की तलाशी और बायोमेट्रिक की जांच की गई। NTA ने कहा है कि वो बिला रुकावट, मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: मुशाहिदीन, राबता कारों, पुलिस दस्तों और मुंतजमीन समेत 2 लाख से ज्यादा अहलकारों को महफूज, शफाफ और बिला रुकावट इम्तहान के इनाकाद के लिए तैनात किया गया है। मुनसिफाना और शफाफ इम्तहान को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी तरीक़ेकार को बरवेकार लाया जा रहा है। इसमें CCTV से निगरानी, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक और इम्तहानात से मुतालिक सामान की नकलो हमल के लिए पुलिस हिफाजत के साथ GPS वाली मोटर गाड़ियां शामिल है। NTA भी सरगर्मी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कर रही है, ताकि किसी भी तरह की गलत मालूमात और तौर तरीकों की रोकथाम की जा सके। ये इम्तहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। दस्तावेजी अमल को मुकम्मल करने, उसकी तस्दीक और इम्तहान से मुतालिक दीगर जरूरतों को पूरा करने के लिए इजाफी 15 मिनट फराहम किए जाएंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ईरान की मुश्तरका मिलिट्री कमान ने ऐलान किया है कि आबनाई हुरमुज को फिर से

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सुनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते

शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई, जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। यह फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बनेगा,
0: और दूसरा गाना था ये।

0: बदला।
1: सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
0: नाचे मन मोरा मगन टिक दा धिग धिग।
1: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: क्योंकि यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था,
1: वंदना करो अर्चना करो।
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।

पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

0: सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे,
1: रघुवर तुम को मेरी लाज, रघुवर तुम को मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोडूं रे जो।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह, पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। क्योंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये

0: वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

के बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं, और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई
1: फिल्म सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल है वारी जाऊं रे तुम पे। द्वित रचना तीन ताल में है जिसके बोल है चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Rag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Rag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

ये था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो।

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Rag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले दो दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।